मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। आज दिन है शुक्रवार, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:55 और 50 सेकेंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये पहली सभा।

सुबह की पावन बेला और चिड़ियों की चहचहाहट के साथ आइए करते हैं दिन की शुरुआत। तो नमस्कार, लखनऊ में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करता है आकाशवाणी लखनऊ।

श्रोताओं, मीडियम वेव 401.61 मीटर पर इस वक्त आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आइए रुख करते हैं आकाशवाणी दिल्ली की ओर, जहां से अब से बस थोड़ी ही देर बाद यानी 6 बजे से रिले किया जाएगा हिंदी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी।

0: थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। खेती किसानी से जुड़ी जानकारियों के लिए आइए चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा, जिसमें आज लेजर लैंड लेवलर से भूमि समतलीकरण के बारे में जानकारी दे रहे हैं इंजीनियर रमेश चंद्र मौर्य, और आपसे इस विषय पर भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय। आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ उत्पादन की तैयारी में हैं, खरीफ अभियान की तैयारी में। जहां आपकी समतल भूमि नहीं है, वहां भूमि के समतलीकरण की तैयारी में होंगे। आजकल कई तरह के उन्नत कृषि यंत्र आ गए हैं, जिनसे आप अपने खेत को समतल बना सकते हैं, जिससे जो भी आपके संसाधन हैं, पानी का प्रबंधन होगा, आपकी प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। तो लेजर लैंड लेवलर एक नया उन्नत कृषि यंत्र है, जिससे आप अपने खेत को समतल कर सकते हैं। इससे बहुत सारे फायदे हैं। तो लेजर लैंड लेवलर से भूमि समतलीकरण कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र धौरा उन्नाव से वैज्ञानिक इंजीनियर रमेश चंद्र मौर्य साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। मौर्य साहब, ये बताएं, जो भूमि का समतलीकरण है, ये आवश्यक क्यों है?
3: आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो जितने भी कृषि भूमि पर संसाधन है, जैसे पानी, बीज, खाद, ईंधन, इसका उचित ढंग से प्रयोग करना बहुत आवश्यक हो गया है
2: जी।
3: इन सभी संसाधनों का सीमित रूप से उपयोग करके अधिक उत्पादन करना आज के कृषि की मांग है।
2: हाँ।
3: भूमि समतलीकरण से कृषक भूमि पर उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जिससे कृषकों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होता है। यदि किसी कृषक की भूमि असमतल है, यदि उसकी कृषि भूमि का लेवल 2 इंच से ऊपर या नीचे है, तो उसको संसाधनों का उपयोग फसल उत्पादन करने में ज्यादा करना पड़ता है
2: जी। यानी संसाधनों का दुरुपयोग होता है
3: जी जी जी।
2: संसाधन जरूरत से ज्यादा लगते हैं
3: जी, जी जी,
2: और उसमें लागत भी बढ़ती है
3: जी। बिल्कुल, जैसा उसको, जैसे मान लिया कि उसने यदि कोई पानी लगाया अपने खेत पर, तो यदि 2 इंच से भी अगर उपचा नीचा है, तो उसको अपने खेत में 2 लाख लीटर पानी ज्यादा लगाना पड़ेगा। जब ज्यादा पानी लगाना पड़ेगा, तो फिर निश्चित तौर से उसका ईंधन जो है वो ज्यादा लगेगा। और यही नहीं, जब पानी ज्यादा लगता है तो जहाँ पर निचाई है तो वहाँ पर पानी भरेगा, और जहाँ पर ऊंचाई है वहाँ पर पानी जल्दी सूख जाएगा। तो दोनों ही स्थितियों में होता क्या है कि फसल उत्पादन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा
2: और वांछित लाभ भी नहीं मिलेगा, बल्कि नुकसान होगा
3: जी। जी बिल्कुल, नुकसान होगा। इसका एक और नुकसान ये भी रहेगा, जहाँ पर पानी भर गया वहाँ पर खरपतवार बहुत ज्यादा हो जाएगी। खरपतवार ज्यादा होगी तो फसल की जो वृद्धि में उसमें रोक लगेगी, कीट पतंगे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और निश्चित तौर से वो फसल उत्पादन को प्रभावित।
2: और जो बीज और खाद है
3: जी,
2: उसका भी तो असमान वितरण हो जाएगा
3: जी। जी बिल्कुल, असमान वितरण होता है। जहाँ पर नीचा है खेत, वहाँ पर कंसंट्रेट हो जाता है, और जहाँ पर
2: मतलब खाद बह करके चली जाएगी
3: जी जी जी, ऐसी संभावनाएं ज्यादा रहती हैं ऐसी। और जहाँ पर नीचा है, वहाँ पर जो बीज हम रोपित करते हैं, कुछ समय बाद वो काफी गहराई पर रोपित होता है बीज।
2: तो मौर्य साहब, ये जो खेत असमतल हो जाता है
3: जी,
2: ये होता कैसे?
3: देखिए, भूमि असमतल होने के मुख्य कारण तो है यंत्रों का अनुचित ढंग से उपयोग। क्योंकि कृषक जो यंत्रों का उपयोग ट्रैक्टर के माध्यम से करते हैं, तो होता क्या है कि कहीं पर कम आवश्यकता है, लेकिन कृषक क्या है कि खेती को या भूमि को अच्छी दिखने के लिए उसको कई बार चला देता है,
2: जरूरत से ज्यादा चला देता है।
3: जरूरत से ज्यादा चलाने के कारण क्या है कि भूमि का संतुलन बिगड़ जाता है। अगर मान लिया, ये जरूरी है कि कृषक अपने खेत पर जो ट्रैक्टर है वो 5 किलोमीटर से ज्यादा प्रति एकड़ ना चलाए।
2: अगर स्पीड
3: नहीं, उसका रन जो है, ट्रैक्टर का जो रन है 5 किलोमीटर प्रति एकड़, उससे ज्यादा ना चलाए एक बार।
2: अच्छा, अगर उससे ज्यादा चलाया तो कहीं ना कहीं
3: उससे ज्यादा चलाएंगे तो जो भूमि है वो कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है, दबाव हो जाएगी। अब जब पानी डालेंगे या फिर खेत
2: सिंचाई
3: करेंगे या वर्षा ज्यादा हुई, तो पानी जमीन के अंदर नहीं जाएगा, ऊपर से बह जाएगा। जब ऊपर से बह जाएगा तो अपने साथ साथ मिट्टी भी ले जाता है। जब मिट्टी ले जाएगा तो निश्चित तौर से भूमि का समतलीकरण बिगड़ जाएगा।
2: यानी बारिश या सिंचाई जल के साथ जो खेत की मलाई है
3: जी,
2: वो
3: जी,
2: भी
3: जी,
2: बह जाएगी।
3: वो भी बह जाएगी सर।
2: तो असमतल का कारण भी हम लोगों ने जान लिया
3: जी।
2: अब

0: ये बताएं कि अगर खेत समतल होता है तो उसका फसल पर क्या असर होता है?
1: देखिए, जैसे अभी बताया, भूमि समतलीकरण से कृषक लगभग 25-40% जो है पानी की बचत कर लेते हैं,
0: जो सबसे बड़ी बचत
1: है। पानी की बचत होने के कारण उतना ही आप ईंधन की बचत कर लेंगे।
0: हाँ।
1: ठीक है, समतलीकरण से क्या है कि आपका जो खरपतवार है वो 40% तक घट जाती है,
0: अपने आप कम हो जाएगा,
1: अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि भाई जहाँ पर पानी भरेगा वहां पर ज्यादा संभावनाएं होती है खरपतवार होने की, तो वो खत्म हो जाती है। अब जब खरपतवार खत्म होगी तो 10-15% जो है आपका कीट और व्याधि जो है वो खत्म हो जाता है, और इन सब का जो परिणाम रहेगा वो 20% तक फसल उत्पादन में आ जाता है।
0: और खाद की मात्रा भी घटेगी,
1: खाद की मात्रा भी सर 10-15% खाद और बीज, ठीक है, उसकी दक्षता बढ़ जाती है 10-15%।
0: अच्छा
1: जी,
0: तो डॉक्टर साहब, जहाँ खेत असमतल है उसका समतलीकरण कैसे हो सकता है और ये करना कब चाहिए?
1: जी, ये जो दो तरीके हैं, पहले तो देसी कराहे के माध्यम से कृषक भाई
0: करते रहे हैं,
1: लेकिन उसमें क्या है कि सटीकता नहीं आती है,
0: माने 16 आना काम नहीं बन पाता है।
1: लेकिन जो लैंड लेजर लेबलर है वो एक उन्नत कृषि यंत्र है, और उससे बिल्कुल सटीक आपका जो खेत है बिल्कुल बराबर हो जाता है। और यदि कोई कृषक चाहे कि थोड़ा सा हम उसको ढाल दे दें, तो ढाल भी उसमें उस हिसाब से बन जाता है।
0: मतलब आपकी मनचाही जो समतलीकरण है वो हो जाएगा, जैसा चाहेंगे
1: वैसा हो जाएगा। इसमें लैंड लेजर लेबलर चलाने के लिए 55 हॉर्स पावर का जो है ट्रैक्टर चाहिए होता है,
0: यानी 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए,
1: वो जरूरी होता है। लैंड लेजर लेबलर में दो प्रमुख घटक होते हैं, इसको कंप्यूटर कराहा भी बोलते हैं कृषक भाई, तो कंप्यूटर घटक होता है और एक मैकेनिकल घटक होता है। तो कंप्यूटर वाले से जो एक ट्राइपॉड उसमें होता है जो खेत के एक कोने में सेट करते हैं, एक खेत के एक कोने में लगा देते हैं, और वहां से जो है लेजर किरणें जो है वहां से वो लेजर किरणें ट्रांसमिट करता है, और ट्रैक्टर के पीछे जो लगा कराहा है उसमें एक रिसीवर लगा होता है जो उस
0: डिवाइस है,
1: हाँ जी डिवाइस, तो उसको रिसीव करता है। ट्रैक्टर ऑपरेटर के बगल में जो कंट्रोल पैनल होता है उसके माध्यम से वो जो कंप्यूटर कराहा है वो ऊंचा नीचा होने लगता है।
2: लेजर लैंड लेवलर से भूमि समतलीकरण, इस विषय पर अभी इंजीनियर रमेश चंद्र मौर्य जानकारी दे रहे थे और इस विषय पर इनसे भेंट कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि चर्चा अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण, और अब प्रस्तुत है गांधी चर्चा।
3: गांधी चर्चा, गांधी चर्चा में सुनिए बापू के विचार।
4: गांधी जी के अनुसार सा विद्या या विमुक्ते है, यानी जो मुक्ति के योग्य बनाए वो विद्या, बाकी सब अविद्या। अतः जो चित्त की शुद्धि न करे, मन और इंद्रियों को वश में रखना न सिखाए, निर्भयता और स्वावलंबन पैदा न करे, निर्वाह का साधन न बताए और गुलामी से छूटने और आजाद रहने का हौसला और सामर्थ्य न उपजाए, उस शिक्षा में चाहे जितनी जानकारी का खजाना, तार्किक कुशलता और भाषा पांडित्य मौजूद हो, वो शिक्षा नहीं है या अधूरी शिक्षा ही है। गांधी जी का मानना था कि 80-85% लोगों के जीवन की आवश्यकताओं का विचार करने के बजाय मुट्ठी भर मनुष्यों की आवश्यकताओं अथवा राज्य के थोड़े से विभागों की आवश्यकताओं को ही ध्यान में रखकर दी जाने वाली शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा हो नहीं सकती, बल्कि गलत शिक्षा होने से ये अविद्या ही है। उनका मानना था कि ऐसी शिक्षा ने शिक्षित और अशिक्षित के बीच एक गहरी खाई खोद दी है और विद्वानों को जनता का अगुआ, पथ प्रदर्शक और प्रतिनिधि बनाने के बजाय जनता से विलग हो जाने वाला, जनता के जीवन और भावनाओं को न समझने वाला और उनका पक्ष उपस्थित करने के अयोग्य बना दिया है। इस शिक्षा ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए भवनों, साधनों, पुस्तकों, मृग तृष्णा की भांति दूर से लुभावने लगने वाले लाभों की आशाओं और चटक मटक वगैरह का आडंबर रचाकर जनता को कर्ज में डुबो दिया है। गांधी जी का मानना था कि ऐसी शिक्षा ने लोगों के अंदर वहम पैदा कर दिए हैं, जैसे अक्षर ज्ञान और शिक्षा एक ही है और उसके बिना शिक्षा हो ही नहीं सकती। इस शिक्षा ने जनता को धर्म से विमुख किया है और अनेक पीढ़ियों से पोषित धर्म तथा संयम के संस्कारों को मिटा डालने का ही काम किया है। उनका मानना था कि चित्त शुद्धि के महत्व के अंग ईश्वर, गुरु, बड़े बूढ़ों में भक्ति, नीतिमय जीवन का आग्रह और संयम तथा तप में श्रद्धा, इन सभी विषयों में आधुनिक शिक्षा ने पढ़े लिखों को संशक और नास्तिक बना देने की दिशा में यत्न किया है। महात्मा

0: के अनुसार वर्तमान शिक्षा शैली ने भोग और संपत्ति में ही इतनी श्रद्धा उत्पन्न कर दी है कि उनके कम होने के डर से ही शिक्षित व्यक्ति डर जाता है और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले धर्म के आचरण में असमर्थता प्रकट करता है। गांधी जी का ये स्पष्ट मानना था कि शिक्षा से निर्वाह का प्रश्न हल होना चाहिए, अतः उद्योग धंधों की शिक्षा शिक्षण का प्रधान अंग होना चाहिए। लिखने पढ़ने का ज्ञान ना होते हुए भी महात्मा गांधी का मानना था कि मनुष्य गिनना सीख सकता है, अपने उद्योग धंधे संबंधी प्राथमिक विज्ञान प्राप्त कर सकता है, साहित्य समझ सकता है, सुन सकता है, उसे कंठस्थ कर सकता है और शक्तिशाली हो तो उसकी रचना भी कर सकता है। इसके सिवा उसमें सत्य की लगन हो तो ईश्वर का ज्ञान भी वो बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है। गांधी जी का मानना था कि बालकों की शिक्षा का श्री गणेश अक्षर ज्ञान से नहीं बल्कि सफाई की शिक्षा से होना चाहिए। बालक को अक्षर ज्ञान तो दिया ही जाए लेकिन उसे अपने हाथ पांव, नाक, नाखून इत्यादि की साफ सफाई को रखना भी सिखाया जाए। इसके बाद कहानियों और भजनों द्वारा धर्म का ज्ञान उसे दिया जाए। प्रत्यक्ष अवलोकन से पदार्थ विज्ञान, वनस्पतियों और भूमि तथा आकाश का ज्ञान दिया जाए तथा प्रत्यक्ष पदार्थों से गणित में प्रवेश कराया जाए। इस तरह लिखना पढ़ना आने के पहले उसे तीसरी चौथी पोथी तक का ज्ञान करा दिया जाए। अनेक भजन, श्लोक, कविताएं उसे कंठाग्र करा के उच्चारण शुद्धि करा ली जाए और नाना प्रकार के साहित्य बच्चों को कंठस्थ करा दिया जाए। गांधी जी का यही मानना था कि ज्ञान का मूल स्रोत पुस्तकों में नहीं बल्कि अवलोकन, अनुभव, विचार शक्ति में है और इसके भूल जाने से हम पुस्तक के ज्ञानी को बहुत महत्व देते हैं।
1: इसके साथ ही आज की गांधी चर्चा संपन्न होती है।
2: अभी आप सुन रही थी गांधी चर्चा मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण और अब प्रस्तुत है आस्था और प्रार्थना से परिपूर्ण कार्यक्रम आराधना।

हे भोलेनाथ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी माया अपरंपार है, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। यदि प्रभु की कृपा दृष्टि पानी है तो आइए चलते हैं प्रभु के धाम और जपते हैं प्रभु नाम।

हे ईश्वर, हमें सद्बुद्धि दे। तू हमारे रोम रोम में बसा है, बस पहचानने की बुद्धि दे। हमें अपने अंतर्मन पर संयम रखने की क्षमता दे। हमें अपने आशीर्वाद से शीतलता व सहनशीलता प्रदान कर, ताकि हम अपने प्रभु का नाम जीवन भर जपते रहें।

सच्चे मन से प्रार्थना करता है, माता उसे कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटा दी। किस्मत के मारों का माता रानी ही बेड़ा पार लगाती हैं। हे माता, आज आप संपूर्ण जगत की जननी हैं, आपके शिव चरणों में कोटि कोटि नमन।

हमारा जीवन तो बहते पानी के समान है, अगर रास्ते में किसी को शीतलता दे पाए तो हमारा सौभाग्य है। आइए अपने जीवन को जनहित के काम में लगा दें, क्योंकि जो समय व्यर्थ चला जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता।

श्रोताओं, हम सभी पर ईश्वर की कृपा यूं ही बनी रहे और हम सभी का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो, इसी शुभेच्छा के साथ आज का भक्तिमय कार्यक्रम आराधना यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज का संगीतमय प्रसंग।

अवध के राज सिंहासन पर बैठना अस्वीकार करते हुए भरत ने अपने हृदय में धधकती जिस ज्वाला और पश्चाताप की व्यथा कथा गुरुजनों को सुनाई, उससे सबके हृदय में मर्मांतक पीड़ा के साथ एक आनंद का संचार भी हुआ। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से सने भरत के प्रिय वचन सभी के हृदय में दहकती रामविरह की ज्वाला को शांत करने वाले सिद्ध हुए। सबने भरत को मुक्त कंठ से श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मानकर उनके वन जाने के लिए सहमति प्रकट की। भरत के इस निश्चय से जैसे शोक सागर में डूबी अयोध्या नगरी को एक सहारा मिल गया। सबके हृदय में ऐसे आनंद का संचार हुआ जैसे मेघों की गर्जना से चातक और मोर आनंद विभोर हो उठते हैं। भरत का जीवन धन्य है, इस उद्गार के साथ सभी उनके शील और स्नेह की प्रशंसा करते नहीं आघाते।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज का संगीतमय प्रसंग। स्वर थे सुरेश वाडेकर के और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव 401.61 मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
5: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हमारे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। और आज के इस कार्यक्रम में नीना सोनकर हमें बताने जा रही हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रकृति के संग स्वास्थ्य के रंग, इस विषय पर। आइए सुनते हैं।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम एक ऐसे दिन की बात करेंगे जो हर साल पूरी दुनिया को एक जिम्मेदारी की याद दिलाता है, वो जिम्मेदारी जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आज है 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस। ये सिर्फ पेड़ों, पानी या जानवरों के संरक्षण का दिन नहीं है, बल्कि एक ऐसा अवसर है जब हमें अपने जीवन की उस जड़ की ओर ध्यान देना होता है जिससे हमारी हर सांस हर कदम जुड़ा है, यानी कि हमारी प्रकृति। जब हम सेहत की बात करते हैं तो अक्सर ध्यान शरीर पर होता है, खाना क्या खाएं, व्यायाम कितना करें, नींद कितनी लें, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जिस धूप और छाया में हम पलते हैं, वही हमारे स्वास्थ्य की सबसे पहली कड़ी है। अगर हमारी धरती बीमार हो रही है तो हम भी कितनी ही दवाइयां क्यों ना लें, पूरी तरह से स्वस्थ कभी नहीं हो सकते। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का उद्देश्य भी यही है, हमें ये समझाना कि हमारा स्वास्थ्य हमारी प्रकृति की सेहत से जुड़ा है। हवा में जहर होगा तो हमारे फेफड़े भी थकेंगे, पानी दूषित होगा तो शरीर में बीमारियां घर करेंगी, मिट्टी कमजोर होगी तो अन्न में पौष्टिकता घटेगी। ये एक सीधा संबंध है प्रकृति और शरीर का, पर्यावरण और स्वास्थ्य का। आज हम जब चारों ओर बढ़ते तापमान, अनियमित बारिश, प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों की चर्चा करते हैं तो ये सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि चेतावनी भी है। खेतों की मिट्टी सूख रही है, तालाबों का पानी घट रहा है और हवा में सांस लेना दिन ब दिन मुश्किल हो रहा है। शहरों में तो सुबह की हवा भी शुद्ध नहीं रही और ये बदलाव न केवल हमारे आसपास के दृश्य को बदल रहे हैं बल्कि हमारे शरीर की भीतरी दुनिया को भी प्रभावित कर रहे हैं। बच्चों में अस्थमा, बड़ों में हाई ब्लड प्रेशर, बढ़ती एलर्जी, तनाव और थकावट, ये सब सिर्फ खान पान की वजह से ही नहीं है, एक बड़ा कारण वो पर्यावरण है जिसमें हम दिन भर सांस लेते हैं। यही वजह है कि अब सेहत की चर्चा में पर्यावरण को शामिल करना अनिवार्य हो गया है। अगर हम पौधों की बात करें तो ये केवल ऑक्सीजन देने वाले जीव नहीं हैं, इनकी उपस्थिति हमारे मन को शांति देती है, हमारी आंखों को आराम देती है और हमारे घरों को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। एक छोटा सा तुलसी का पौधा, एक मनी प्लांट या एक नीम का पेड़, ये सभी हमारे स्वास्थ्य की दिशा में बड़ा योगदान देते हैं। और जब ये पौधे मिलकर एक हरित वातावरण बनाते हैं तो ये न केवल प्रदूषण को कम करता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है। अब सवाल उठता है, हम क्या कर सकते हैं, इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम पर्यावरण की सेवा कैसे करें? इसका उत्तर है, छोटे छोटे कामों से शुरुआत करें। प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। अपने घर में एक छोटा किचन गार्डन बनाएं। हर साल एक पेड़ लगाएं। गाड़ी की जगह कभी कभी साइकिल चलाएं और बच्चों को भी प्रकृति से जोड़ने वाले खेतों की ओर प्रेरित करें। ये छोटे प्रयास मिलकर बड़ा परिवर्तन लाते हैं। इस पर्यावरण दिवस पर ये भी जरूरी है कि हम प्रकृति को उपभोग की चीज नहीं बल्कि जीवन दायिनी साथी के रूप में देखें। जैसे हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं वैसे ही प्रकृति की भी करनी होगी, क्योंकि वो भी हमें बिना किसी शर्त के जीवन देती है। अगर हम आज उसके आशीर्वाद को सहेजेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ, सुरक्षित और संतुलित जीवन जी पाएंगी। आज की स्वास्थ्य चर्चा में मैं आपको ये सोचने को आमंत्रित करती हूँ कि अगली बार जब आप किसी पेड़ के नीचे बैठें, किसी साफ झरने का पानी पिएं या सुबह की ताजी हवा में सांस लें तो प्रकृति को धन्यवाद जरूर कहें और साथ ही ये संकल्प भी लें कि हम अपने जीवन में ऐसे कार्य करेंगे जिससे प्रकृति को बल मिले और हमारी सेहत को सार्थक आधार। श्रोताओं विश्व पर्यावरण दिवस सिर्फ एक दिन नहीं है, ये एक दिशा है, एक सतत चेतना। अगर हम इस दिशा में बढ़ेंगे तो आने वाला हर पल हमारे लिए और इस धरती के लिए एक नई सुबह बन सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक प्रकृति को अपनाइए और स्वास्थ्य को सजाइए। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति, सभी को नमस्कार।

प्रकृति के संग स्वास्थ्य के रंग। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अभी आप सुन रहे थे नीना सोनकर से ये जानकारी स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। अब आइए डालते हैं एक नजर आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। रात्रि 11:10 पर हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे महिला सशक्तिकरण अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री इस विषय पर। न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का अनुप्रसारण समय रहेगा 10:10 का। जिले की हलचल आप सुन सकते हैं 9:15 से, जिसमें आज आप सुनेंगे अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। 9:30 का वक्त होगा उर्दू कार्यक्रम का। आज की पेशकश होगी आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से, जिसमें आज बदलता मौसम बढ़ती बीमारियां के मुतालिक गुफ्तगु होगी। आज के मेहमान होंगे डॉक्टर जगदम्बा दुबे और डॉक्टर मोहम्मद अहमद। समनुदेशिति होगी सैयद मोहम्मद उमेर की। विश्व पर्यावरण दिवस इस विषय पर विविधा प्रोग्राम में 7:10 से आपके साथ होंगी सीमा शाही।

महिलाओं के लिए अपराजिता कार्यक्रम के अंतर्गत आज दोपहर 1:15 से चर्चा होगी विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाली है तो खुशहाली है इस विषय पर। साथ ही महिलाएं सुनेंगी पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर केंद्रित बोएं उम्मीद के बीच और बचाएं अमृत सा पानी इस विषय पर। मंजरी उपाध्याय से प्रशंसा गुप्ता द्वारा की गई बातचीत आज इसी कार्यक्रम में महिलाएं सुनेंगी। रात्रि 8 से हम लेकर हाजिर होंगे हिंदी कार्यक्रम जिसमें आज प्रसारित की जाएगी विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय रहेगा जलवायु के लिए वर्तमान समय।

शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे किसान भाई सुनेंगे कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी, आलेख एवं वाचन अमरेंद्र सहाय अमर का और संपादन होगा डॉक्टर सुशील कुमार रायगाम। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रात्रि 10:30 से आज आप आनंद लेंगे पंडित राजेंद्र प्रशंसा के बांसुरी वादन का, राग होगा मारवा।

तो श्रोताओं, ये थी हमारी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और श्रोताओं नमस्कार, लखनऊ के इस खास सेगमेंट में अब प्रस्तुत है विविधाम।

नमस्कार। लखनऊ के इस खास सेगमेंट में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आभार। विविधा, ये खास प्रोग्राम लेकर आज हाजिर हूँ मैं सीमा शाही। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल हमारे वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। विषय है विश्व पर्यावरण दिवस।

0: मेरा।
1: जी हाँ, हर साल 5 जून को पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये दिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है। जी हाँ, पर्यावरण केवल हमारे आसपास का वातावरण ही नहीं है, बल्कि ये वो आधार है जिस पर संपूर्ण जीवन टिका हुआ है।

पृथ्वी पर मौजूद वायु, जल, वन, मिट्टी, पर्वत, नदियाँ और जैव विविधता मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यही प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के साथ साथ सभी जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अस्तित्व का आधार है। इसीलिए कहा जाता है कि पर्यावरण की सुरक्षा केवल एक आवश्यकता नहीं बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है।

आज विज्ञान और तकनीक के इस युग में विकास की गति लगातार बढ़ रही है। बड़े बड़े उद्योग, बड़ी जनसंख्या, शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पर्यावरण के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी कर दी गई हैं। वनों की कटाई, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुकी हैं। दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव सिर्फ प्रकृति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। दूषित वायु श्वास संबंधी रोगों को बढ़ाती है, वहीं प्रदूषित जल अनेक बीमारियों का कारण बनता है और लगातार बदलता जलवायु चक्र कृषि और जीवन दोनों को प्रभावित करता है।

दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस हमें ये सोचने का अवसर देता है कि हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे कौन से छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं जिनसे पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया जा सके। तो आइए इस विषय पर गौर करते हैं। अगर हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, पानी की बचत करें, बिजली का सोच समझ कर उपयोग करें, प्लास्टिक का कम प्रयोग करें और साथ ही स्वच्छता को अपनाएं, तो हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्यों, सही कहा ना? भारत की संस्कृति में प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने वृक्षों, नदियों और पर्वतों को सम्मान देने की परंपरा विकसित की है। पीपल, बरगद, तुलसी और नीम जैसे वृक्षों को सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है कि हम प्रकृति को माता के समान मानकर उसका सम्मान करें। और दोस्तों,

हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी हमारे पूर्वजों की विरासत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। और इस अमानत को बचाने के लिए यदि आज हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो भविष्य में प्राकृतिक संसाधनों का संकट और अधिक गहरा हो सकता है ना? तो दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस का संदेश केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि ये हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण को अपना कर्तव्य समझेगा तभी एक स्वच्छ, हरित और सुरक्षित भविष्य का निर्माण संभव होगा।

अंत में चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रकृति की रक्षा ही मानवता की सुरक्षा है। आइए हम सभी ये संकल्प लें कि पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और बहुत ही सुंदर पृथ्वी छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इसी प्रेरणादायक विचार के साथ आज के विविधा कार्यक्रम से सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

विविधा। अभी आप सुन रहे थे नमस्कार लखनऊ का ये खास प्रोग्राम विविधा। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अब से बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे गोरखपुर केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएसी, एसडीआरएफ और यूपीएसएसएफ के साथ आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और भावी कार्य योजनाओं सहित कई बिंदुओं को लेकर की समीक्षा बैठक। सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक व्यावहारिक व तकनीक आधारित बनाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली। अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो गई। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है।
1: तो बैठक में जो मेन मुद्दे हैं कि कहाँ पे जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो हमारे आर्टिसंस हैं, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनको कैसे हम आपस में कोलैबोरेट करा के जो हमारे मेंबर कंट्रीज की अर्थव्यवस्था है उसमें उनका योगदान बढ़ा सकते हैं। जो नए चैलेंजेस हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, उसको कैसे हम सबको मिलके उस पर काम करना है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रांतीय आर्म्ड कांस्टेबुलरी पीएसी, एसडीआरएफ और उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ के आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार, प्रशिक्षण और संरचना विकास एवं भावी कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पीएसी, एसडीआरएफ और यूपीएसएसएफ को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया जाए और सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक व तकनीक आधारित बनाया जाए। श्री योगी ने महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से पीएसी की महिला बटालियनों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर स्थित महिला पीएसी बटालियन परिसरों में क्रमशः वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना उदा देवी और वीरांगना झलकारी बाई की अश्वरोही प्रतिमा स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आगामी मानसून के दृष्टिगत बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही एसडीआरएफ को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से खोज एवं बचाव कार्यों के लिए ह्यूमन लिफ्टिंग ड्रोन की उपयोगिता पर विचार करने को कहा। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में पर्यटन विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की।
3: समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा और ज्ञान विरासत का प्रदेश है। बैठक में भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण से जुड़े ज्ञान भारतम मिशन की भी समीक्षा की गई। श्री योगी ने कहा कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियां हमारी सभ्यता, दर्शन, विज्ञान और सांस्कृतिक चेतना की अमूल्य धरोहर हैं। पर्यटन नीति 2022 में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को निवेश, नवाचार और अनुभव आधारित पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाया जाए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में पौधारोपण कर प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश के 17 नगर निगमों, 825 विकास खंडों, 762 नगर निकायों समेत सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान पूरे दिन चलेगा। वन विभाग के साथ ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, उद्यान आदि विभागों के सहयोग से अमृत सरोवरों, तालाबों, सड़कों, एक्सप्रेसवे, नदियों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे।

0: इसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों की भी सहभागिता होगी। पौधरोपण अभियान के तहत लखनऊ मंडल में 62 लाख, वहीं बरेली और प्रयागराज में करीब 32 लाख पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। दौरे के पहले दिन वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज लखनऊ में बायो युग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ करेंगे। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है।
2: रक्षा मंत्री आज पूर्वाहन 11:05 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अपराहन 12:15 विश्व पर्यावरण दिवस पर कैंट स्थित कस्तूरबा पार्क में एक पेड़ माँ के नाम रोपित करेंगे। अपराहन 12:40 पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के आवास पहुंचकर उनके पति के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। शाम को 4:00 दिलकुशा लॉन में आयोजित बायो युग ग्रीन कमांड कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रतिभाग करेंगे। 6 और 7 जून को भी श्री सिंह लखनऊ में विभिन्न लोगों से मुलाकात करेंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करने के साथ प्रबुद्ध नागरिकों से भी मिलेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। इस प्रणाली के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जिस उम्मीदवार की फोटो अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देने आया हो। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
3: 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस JEM की शुरुआत की गई। JEM पर अब तक कुल 18,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें ऐसी छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PSC, SDRF और UPSSF के साथ आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और भावी कार्ययोजनाओं सहित कई बिंदुओं को लेकर की समीक्षा बैठक। सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक व्यवहारिक व तकनीक आधारित बनाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और संघ

0: सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ। श्रोताओं, सुबह के 7:31 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसमें आइए आपको सुनवाते हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का गायन। राग है तोड़ी।

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का गायन, राग था तोड़ी। इसी के साथ कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। सुबह के 8 बजने को हैं, अब से बस थोड़ी देर में रिले किया जाएगा समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है।
1: कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप

0: प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमरीका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
2: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
1: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
4: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने

0: देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
1: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to

0: उन्होंने भारत को एक काबिल भरोसा साझेदार करार दिया है। और जापान में आज 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सूरत जा रहे हैं, जहां वो सड़कों, बिजली और सनती शोबों में 18,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। जनाब मोदी पहले हाजिरा जाएंगे और सनती और बुनियादी ढांचे के मौजूदा प्रोजेक्टों का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म दोपहर को एक बड़े जलसायाम से खिताब करेंगे। जनाब मोदी शाम को दमन जाएंगे और तकरीबन 2,970 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इलाकाई बुनियादी ढांचे को खास तौर से फरोग देने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज 8 लेन वाले वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के दरमियान कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वज़ीर आज़म कबायली खित्तों और मुजस्मा इत्तेहाद तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए कौमी शाहरा 56 पर अहम हिस्से को 4 लेन बनाने का संगे बुनियाद भी रखेंगे। अवामी फलाह बहबूद की खातिर वो सूरत में एक जदीद 200 बिस्तर वाले ESIC अस्पताल का भी इफ्तिताह करेंगे, जो 24 घंटे इमरजेंसी और ट्रामा खिदमात फराहम करेगा। इसके अलावा मुख्तलिफ अहम और सनती बुनियादी ढांचे से मुतालिक प्रोजेक्टों का भी आगाज़ किया जाएगा, जिनमें गुजरात में तरसीली निज़ाम की तौसी और वलसाड़ में बिजली की तकसीम की जदीद कारी शामिल है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी योग आसन चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो जब अपने अपने वतन वापस जाएं तो आयुष वजारत की योग 365 मुहिम के सफीर बने। अहमदाबाद में चैम्पियनशिप की इफ्तिताही तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आयुष की वजारत ने योग के साथ पूरे साल सरगर्मियों की हौसला अफजाई करने और सभी तबकों में सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए योग 365 का आगाज किया है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: वज़ीर आज़म ने कहा कि ये चैंपियनशिप खेल मुकाबले से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर है और इससे दुनिया भर में योग के वसीतर पैगाम की तशहीर का मौका फराहम हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपने 2 माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में माली पॉलिसी कमेटी की जानिब से किए गए फैसलों का ऐलान करेंगे। 6 अरकान पर मुश्तमिल माली पॉलिसी कमेटी ने बुध के रोज 3 रोजा तबादले ख्याल का सिलसिला शुरू किया था। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने अपनी अहम पॉलिसी शरह में कोई तब्दीली नहीं की थी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: सरकार ने इफराद जर की शरह पर मबनी अशिया सारफीन की कीमतों का इशारिया 4% तय किया है। मरकजी बैंक के लिए इसकी बालाई हद 6% और निचली हद 2% रखी गई है। अप्रैल के महीने में अशिया सारफीन की कीमतों का इशारिया मामूली बढ़कर 3.48% हो गया और ऐसा सोने और चांदी के जेवरात के साथ साथ रसोई की कुछ अशिया की कीमतें बढ़ने की वजह से हुआ। चूंकि अशिया सारफीन की कीमतों का इशारिया तय की गई हदूद के अंदर है, लिहाजा इक्तसादी माहिरीन ये उम्मीद कर रहे हैं कि अहम शरह सूद 5.25% की सतह पर ही बरकरार रहेगी। उनका यह भी कहना है कि मगरबी एशिया महास आरआई की वजह से इफरात जर की शरह और माशी तरक्की को लाहक चैलेंजेस के तनाजुर में रिजर्व बैंक मोहतात रवैया अख्तियार करेगा। मुंबई से जीवन भावसार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में इंतकाल हो गया। वो 97 साल के थे और तवील अरसे से बीमार थे। डॉक्टर कश्यप साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सरबराही वाली आला सतह की उस कमेटी में शामिल थे जो एक साथ इंतखाबात कराए जाने के बारे में कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए तश्कील दी गई थी। वो 1983 से लेकर 1990 तक लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर फायज रहे। डॉक्टर कश्यप 100 से ज्यादा किताबों के मुसन्न

0: बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर तरुण कपूर की वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुशीर की हैसियत से मुद्दत कार में एक साल की तौसी को मंजूरी दे दी है। अमले और ट्रेनिंग के महकमे ने मुत्तला किया है कि वजीर आजम के दफ्तर में जनाब कपूर की तौसी शुदा मुद्दत कार एक साल के लिए इस माह की 10 तारीख से शुरू होगी। तकरीरियों से मुतालिक काबीना कमेटी ने वाशिंगटन में आलमी बैंक हेडक्वार्टर में नीलकंठ मिश्रा की बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तकरीरी को मंजूरी दे दी है, जिसकी मुद्दत कार 3 साल होगी। अमले और ट्रेनिंग के महकमे ने मुत्तला किया है कि जब तक नए अहदेदार जिम्मेदारी नहीं संभालते हैं तब तक परमेश्वरन अय्यर की मुद्दत कार में तौसी भी दी गई है। आंध्र प्रदेश में एनडीए इत्तेहाद ने राज्यसभा की 4 खाली सीटों में से 3 तेलुगु देशम पार्टी को और 1 जनसेना पार्टी को देने का फैसला किया है। कल रात अमरावती में एनडीए के इत्तेहादियों के साथ मीटिंग के बाद वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस फैसले का ऐलान किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रूस की कलीदी साझेदारी की सताइश की है और जोर देकर कहा है कि रूस के साथ अपना इश्तराक कम करने के लिए भारत पर दबाव डालने की मगरबी मुल्कों की कोशिशें लाहासिल हैं और इनसे आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंच रहा है। सरकर्दा आलमी खबर रसा एजेंसियों के सरबराहों के साथ गुफ्तगू में सदर पुतिन ने भारत की मुआशी तरक्की और उसकी आजादाना खारजा पॉलिसी को सराहा और कहा कि रूस भारत के साथ अपने इकतसादी राबतों को वसत देने का पाबंद है। सदर पुतिन ने कहा कि भारत की मुआशी तरक्की उस मेहनत का नतीजा है जो भारत सरकार वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कर रही है। रूस के सदर ने यह भी कहा कि अमरीका के साथ भारत के सिफारती राबतों से रूस के साथ वक्त की कसौटी पर खरे उतरने वाले उसके रिश्तों में कोई खलल नहीं पड़ता और ना ही ये कमजोर होते हैं। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक काबिल भरोसा साझेदार मानता है और किसी दूसरे मुल्क के साथ भारत के बाहमी ताल्लुकात की वजह से किसी तरह के मनफी मुजमरात की कोई बात नहीं है। सदर पुतिन ने मजीद कहा कि भारत एक अजीम मुल्क और अजीम जमहूरियत है और रूस के साथ अपने ताल्लुकात को वसत देता रहेगा। आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कुरे अर्ज पर जिंदगी बचाने के लिए बेदारी पैदा करने की खातिर माहौलियात से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 1973 से हर साल 5 जून को यह दिन मनाया जाता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: फितरत और कुर्राए अर्ज़ के तहफ़ के लिए माहौलियात के एतबार से मुस्बत इकदाम करने के लिए बेदारी बढ़ाने की खातिर ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर माहौलियात जंगलात और आबो हवा की तब्दीली महकमे के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत कौमी राजधानी में मैदान गढ़ी के मकाम पर नमो ऑक्सीजन पार्क में दरख्त लगाने के लिए एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ रियासतों में कई मरकजी वजीर वज़राए आला अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली माहौलियात के आलमी दिन की तकरीबात में शामिल होंगे। मुख्तलिफ मुहिम तकरीबात और इकदामात के ज़रिए ये दिन लोगों और मुख्तलिफ तबकों को इस बात की तरगीब देता है कि वो पायदार मुस्तकबिल की खातिर माहौलियाती चैलेंजों से निमटने के लिए तब्दीलियां करें। दिल्ली से अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने सभी की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो ज्यादा साफ, ज्यादा सरसब्ज़ शादाब और ज्यादा पायदार मुस्तकबिल के लिए काम करें। माहौलियात जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के महकमे के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने सभी लोगों पर जोर दिया है कि वो आबो हवा और मुस्तकबिल की खातिर फितरत से तहरीक हासिल करते रहने के अहद का इयादा करें। जम्मू कश्मीर के भदरवा में कल मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह दो रोज़ा लेवेंडर फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे, जिसका मौजू लेवेंडर गोज ग्लोबल है। चौथा लेवेंडर फेस्टिवल 6 और 7 जून को डोडा जिले के भदरवा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मुनक्किद किया जा रहा है। CSIR IIIM की जानिब से मुनक्किदा इस फेस्टिवल का मकसद जम्मू कश्मीर में पर्पल इनकलाब और लेवेंडर पर मबनी देही कारोबार की मुसलसल कामयाबी का जश्न मनाना है। समुद्री अशिया की बरामदात पर दो रोज़ा कौमी वर्कशॉप आज से विशाखापट्टनम में शुरू हो रही है, जिसका मकसद भारत की समुद्री अशिया की बरामदात में इजाफा करना और मुल्क भर में इस शोबे को मुस्तहकम करना है। इस वर्कशॉप में बेहतर बुनियादी ढांचे, कदर में इजाफे और पॉलिसी मदद के जरिए समुद्री अशिया की बरामदात में बेहतरी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी।

आशिके। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे रानी मलिक ने और संगीत था अनु मलिक का। तो श्रोताओं, इस गीत की फरमाइश का मेल हमें आया था ऊंच गांव भेल अमेठी से। जी हाँ, हमारे लिखने वाले श्रोता हैं भैया मोनू सेठ। तो मोनू जी, आपकी फरमाइश पर हमने आपको सुनवाया आशिके फिल्म का ये गीत। और मोनू जी कुछ लिखते भी हैं जो पर्यावरण दिवस से संबंधित है। आइए पढ़ते हैं। पौधे तो हमने बहुत लगाए हैं, पर कुछ पौधे चल पाए, कुछ सूख गए, कुछ को जानवर खा गए। रही पानी बचाने की बात, तो हम झगड़ा भी कर लेते हैं पानी की बर्बादी पर। एक तो हर घर जल

0: योजना में लोग बहुत पानी बर्बाद करते हैं, और शादी विवाह में भी बोतल में आधा पीते हैं आधा बहाते हैं। बहुत बहुत सही बात कही आपने मोनू जी कि पानी की बर्बादी और ये जो पर्यावरण से रिलेटेड जो चीज़ें आपने कही, बहुत अच्छी बात कही कि ये बर्बादी हम ही को कम करनी पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने मोनू जी, और आपकी फरमाइश का गीत हमने शामिल किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मेल किया। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लीजिए ये सुनते हैं।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: तो श्रोताओं, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं अपनी फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, आपके पत्र आपके गीत। तो आपके मेल हमने शामिल किए हैं, तो आइए पढ़ते हैं अपना अगला मेल। किसने हमें भेजा है मेल? ग्राम पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरु नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद और मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान, आप सब ने हमें मेल किया है आज के इस कार्यक्रम में और कहा है कोई भी गीत सुनवा दें। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का ये गीत, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: जी हाँ, साजन फिल्म में अभी आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में ये गीत। गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था नदीम श्रवण का।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण धड़कन देश की, और आप इस वक्त चल रहा है कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। तो आइए आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत और जानते हैं इस गीत की फरमाइश का मेल हमें कहाँ से आया है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं ये मेल। ये मेल हमें आया है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से। लिखने वाले हमारे श्रोतागण हैं अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, ज़ियाउल हक, मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे। और इसी गीत के फरमाइश का ये मेल भी हमें आया है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, भाटापारा छत्तीसगढ़ से, और इसे लिखा है सोहन जोशी ने और साथ ही पायल जोशी ने। तो आपका मेल हमने शामिल कर लिया है। अब आपको सुनाते हैं हम आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत इम्तिहान फिल्म से।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: घर आंगन में है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
2: आपके मेल आपके गीत, आकाशवाणी लखनऊ का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस वक्त, और कार्यक्रम में आइए अपना अगला मेल शामिल करते हैं। ये मेल हमें आया है ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हमारे श्रोतागण हैं राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें मेल करने के लिए। और आपने सुनना चाहा है राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये प्यारा सा गीत, आइए आपको सुनवाते हैं। तो ये गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत है हसरत जयपुरी का और संगीत है रविंद्र जैन का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राम तेरी गंगा मैली फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। इसी के साथ आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र धड़कन देश की। तो अब प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का।
2: राम मंदिर परिसर स्थित नवनिर्मित मां भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी रितंबरा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच धर्म ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ ही मातृ शक्ति भी मौजूद रहीं। दोनों साध्वियों ने इसे राम मंदिर आंदोलन के लंबे संघर्ष, त्याग और सनातन स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा का प्रतीक बताया। ध्वजारोहण के साथ पूरा परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। रामनगरी अयोध्या को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी सौगात दी है। जिले के मौसीवाला क्षेत्र में 17.72 करोड़ रुपए की लागत से लौकुश पार्क विकसित किया जाएगा। कचरे से कला थीम पर बनने वाले इस पार्क में स्क्रैप सामग्री से रामायण के प्रमुख प्रसंगों को 3D इंस्टॉलेशन के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। आधुनिक साउंड लाइट शो, डिजिटल तकनीक और इंटरएक्टिव मॉडल के जरिए श्रद्धालु रामायण काल के विभिन्न प्रसंगों से साक्षात कर सकेंगे। पार्क में आकर्षक उद्यान, वॉकवे, बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। नगर आयुक्त जैन

0: कुमार ने बताया कि
1: अयोध्या नगर निगम के द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी अंतर्गत 17.72 करोड़ का लकुश पार्क फेज टू अंडर पार्क स्वीकृत हुआ है।
0: अयोध्या में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। सिविल लाइन ईदगाह सहित सभी मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज सकुशल संपन्न हुई। डीएम शशांक त्रिपाठी और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने स्वयं व्यवस्थाओं की निगरानी की। सुरक्षा व्यवस्था के तहत ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई और पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। नमाज के दौरान देश दुनिया में अमन शांति और भाईचारे की दुआ मांगी गई। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने अयोध्या में विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और नकल विहीन बताया। मंत्री ने कहा कि करीब 54 लाख विद्यार्थियों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में हिस्सा लिया और पूरे प्रदेश में कहीं भी पेपर लीक जैसी घटना सामने नहीं आई। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित भव्य पासिंग आउट परेड के 7वें बैच के 835 अग्निवीरों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना में कदम रखा। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण अवधि में जवानों को आधुनिक युद्ध कौशल, शारीरिक दक्षता और सैन्य मूल्यों का प्रशिक्षण दिया गया। परेड की समीक्षा ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने की और जवानों के उज्ज्वल भविष्य की कामना। ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने कहा,
2: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में ज्वाइन करेंगे।
0: अयोध्या नगर निगम ने विशेष सफाई अभियान शुरू किया है। राम की पैड़ी और नया घाट से अभियान का शुभारंभ हुआ। नगर निगम क्षेत्र के लगभग 400 स्थानों पर एक साथ सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें हजारों सफाई कर्मियों सभी वार्डों के पार्षद शामिल हुए। नगर निगम ने शहर वासियों से भी स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने आह्वान किया कि निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में इक्ष्वाकु वंश की विशेष हाईटेक गैलरी बनाई जाएगी। डिजिटल तकनीक के माध्यम से भगवान श्री राम की 63 पीढ़ियों का इतिहास दर्शाया जाएगा। दर्शक डिजिटल प्रतिकृतियों के जरिए राजाओं के शासनकाल, धार्मिक महत्व और वंश परंपरा की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह गैलरी नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। राम मंदिर निर्माण के बाद अब अयोध्या में निवेश का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। अमिताभ बच्चन के बाद अब अभिनेता रणबीर कपूर ने भी विगत दिन तिहरा मांझा क्षेत्र में 2.42 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। बताया जा रहा है कि यह भूखंड राम मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है। इससे अयोध्या में रियल इस्टेट और निवेश गतिविधियों को और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। गंगा दशहरा और बड़े मंगल के अवसर पर अयोध्या के सरयू घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान कर पूजा अर्चना और दान पुण्य किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के दिन स्नान और पूजा करने से पापों का नाश होता है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। पर्व को लेकर घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी करता रहा। अयोध्या में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। श्रद्धालुओं और आम लोगों की सुविधा के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर जल प्याऊ और ORS वितरण के केंद्र स्थापित किए गए हैं।
3: अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का।
4: म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग लाइंग ने गौतम बुद्ध नगर के NTPC लिमिटेड की अनुसंधान एवं विकास इकाई NTPC एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च एलायंस का दौरा किया, जिसमें म्यांमार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। इस मौके पर NTPC लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह तथा NTPC नेट्रा के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक ने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति एवं प्रतिनिधि मंडल को NTPC की विकास यात्रा, म्यांमार में कंपनी की पूर्व गतिविधियों तथा वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को समर्थन देने वाली अनुसंधान, नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी से जुड़ी पहलों के बारे में जानकारी दी गई। प्रतिनिधि मंडल ने नेट्रा की अत्याधुनिक इन हाउस पायलट सुविधाओं का भी अवलोकन किया, जिसमें बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, ग्रीन हाइड्रोजन हब तथा कृषि एवं नगर ठोस अपशिष्ट गैसीकरण से विद्युत संयंत्र शामिल था। राष्ट्रपति ने NTPC की स्वच्छ ऊर्जा पहलों में विशेष रुचि दिखाई। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा स्थित बैटरी पुनर्चक्रण एवं महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षेत्र की कंपनी लोहम के अत्याधुनिक संयंत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी की तकनीकी क्षमताओं, बैटरी रिसाइकलिंग प्रक्रियाओं और भारत में हरित ऊर्जा एवं सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका की सराहना की। दौरे के दौरान मंत्री ने लिथियम आयन बैटरी के पुनः

0: की रिकवरी तथा ऊर्जा भंडारण समाधानों से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं का अवलोकन किया। कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें अत्याधुनिक तकनीकों, उत्पाद क्षमता और भविष्य की विस्तार योजनाओं की जानकारी दी। श्री बैसरो ने कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बैटरी रिसाइकिलिंग और महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति देश की आत्मनिर्भरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की नवाचार आधारित कंपनियां भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। दौरे में मंत्रालय और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, बैटरी आपूर्ति श्रृंखला तथा उभरती प्रौद्योगिकी के विकास पर भी चर्चा हुई। गर्मी की छुट्टियों में जनपद गौतम बुद्ध नगर में बच्चों में शिक्षा के साथ खेल प्रतिभा को निखारने के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन कर युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। जिलाधिकारी ने प्रतिभागी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि शतरंज मानसिक विकास, धैर्य, एकाग्रता एवं रणनीतिक सोच को विकसित करने वाला महत्वपूर्ण खेल है। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न विद्यालयों एवं संस्थानों से खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी दिनों में अलग अलग स्थानों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
1: इस गर्मियों की छुट्टियों में विभिन्न हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट द्वारा अरेंज किए जा रहे हैं एंड सभी बच्चे आमंत्रित हैं। पूरे गौतम बुद्ध नगर के सभी बच्चों के लिए काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स हैं एंड पार्टिसिपेट करें एंड इसमें गर्मी का भी विशेष रूप से हम लोगों ने ध्यान रखा है।
0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एफ काम होल्डिंग लिमिटेड और एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज के साथ त्रिपक्षीय साझेदारी हुई। इस समझौते के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर कार्गो संचालन को विकसित और विस्तारित किया जाएगा, जिससे उत्तर भारत में एयर कार्गो कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस साझेदारी के तहत AF काम अपने मालवाहक विमानों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बेस करेगा और यहां से फ्रेटर सेवाओं का संचालन करेगा। इससे एयरपोर्ट को उत्तर भारत के प्रमुख लॉजिस्टिक और कार्गो हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। समझौते के दायरे में

0: कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल, अभी आप सुन रहे थे अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर जिलों के हलचल। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र।
3: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
4: तुमने दी आवाज, दिलों में आ गया।
3: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
2: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब आइए डालते हैं एक नजर आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। रात्रि 11:10 पर हमारी दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे महिला सशक्तिकरण, अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री इस विषय पर। अंग्रेजी कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 7:31 का, जिसमें आज आप सुनेंगे IIT रुड़की की गोल्ड मेडलिस्ट मीना अग्रवाल से डॉक्टर शिबा

राकेश द्वारा की गई बातचीत। इस बातचीत का विषय रहेगा वाटर एवरीवेयर वी विल नीड मोर टू ड्रिंक। न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का अनुप्रसारण समय रहेगा सुबह 10:10 का। महिलाओं के लिए अपराजिता कार्यक्रम के अंतर्गत आज दोपहर 1:15 से चर्चा होगी विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाली है तो खुशहाली है इस विषय पर। साथ ही साथ महिलाएं सुनेंगी पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर केंद्रित बोई उम्मीद के बीज बचाएं अमृत सा पानी। इस विषय पर मंजरी उपाध्याय से प्रशंसा गुप्ता द्वारा की गई बातचीत। रात्रि 8 से हम लेकर हाजिर होंगे हिंदी कार्यक्रम जिसमें आज प्रसारित की जाएगी विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय रहेगा जलवायु के लिए वर्तमान समय। इस विषय पर प्रोफेसर राम लखन सिंह से भेंट करेंगे डॉक्टर नागेंद्र सिंह रघुवंशी। वाचन एवं संपादन रहेगा सुरेंद्र राजेश्वरी का। तो ये थी रूपरेखा हमारे आज शेष कार्यक्रमों की। अब आइए सुनते हैं देश गान।

0: अभी आप सुन रही थी देश गान। मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। अब वक्त हो चला है उर्दू कार्यक्रम का। आज की पेशकश आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से। इसमें आइए सुनते हैं बदलता मौसम बढ़ती बीमारियों के मुतालिक गुफ्तगु। आज के मेहमान हैं डॉक्टर जगदम्बा दुबे और डॉक्टर मोहम्मद अहमद। समनुदेशिती है सैयद मोहम्मद उमैर की। आइए सुनते हैं
1: आज की उर्दू बज्म लेकर मैं आपका मेजबान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब, कबूल फरमाएं। सामीन, बदलते मौसम के साथ इंसानी सेहत पर मुख्तलिफ असरात मुरतब होते हैं। कभी शदीद गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश और कभी हवा में बढ़ती आलूदगी मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देती है। मौजूदा दौर में मौसमी तब्दीलियां न सिर्फ माहौल बल्कि इंसानी जिंदगी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही हैं। नज़ला, जुकाम, बुखार, डेंगू, मलेरिया, एलर्जी और सांस की बीमारियां ऐसे ही मसाइल हैं जो मौसम की तब्दीली के साथ तेजी से फैलते हैं। दोस्तों, आज की मसरूफ तर्ज जिंदगी में लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में गफलत बरतते हैं, जिसके नतीजे में बीमारियां ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक

0: होता है।
1: दरख्त के साये से डामर की सड़कें कम गर्म होती हैं और अर्बन हीट का असर कम होता है। इसके साथ ही साथ दरख्त धूल मिट्टी और जहरीली हवाओं को सोख लेते हैं। ये दरख्त काफी हद तक गाड़ियों के शोर को भी कम करते हैं और ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हवा में नमी बनाए रखते हैं। सड़क के किनारे कतार में लगे दरख्त पैदल और साइकिल से चलने वालों को धूप और बारिश से भी बचाते हैं।
2: बहुत अच्छा कहा आपने कि दरख्त पार्क और छतों पर बागवानी माहौल को ठंडा रखने, आलूदगी कम करने, ऑक्सीजन बढ़ाने और अवामी सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। लिहाजा खूब ज्यादा दरख्त लगाएं और छतों के ऊपर बागवानी की जा सकती है। यहाँ पर एक सवाल डॉक्टर साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि घरेलू टोटके बहुत होते हैं, बीमार कोई पड़ गया तो कोई ना कोई टोटका इख्तियार कर लिया, तो ऐसे में देसी इलाज और घरेलू टोटके मौसमी बीमारियों में मौसी साबित हो सकते हैं या डॉक्टर्स हजरात से रुजू करना बहुत जरूरी है, इस पर आप क्या कहते हैं?
3: जब मौसम बदल रहा होता है तब उस वक्त हम लोगों को बहुत परहेज

0: आपसे करेंगे। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि घरेलू टोटके बहुत होते हैं, बीमार कोई पड़ गया तो कोई ना कोई टोटका इख्तियार कर लिया, तो ऐसे में देसी इलाज और घरेलू टोटके मौसमी बीमारियों में मौसी साबित हो सकते हैं, या डॉक्टर्स हजरात से रुजू करना बहुत जरूरी है, इस पर आप क्या कहते हैं?
1: जब मौसम बदल रहा होता है तब उस वक्त हम लोगों को बहुत परहेज करने की ज़रूरत है। किसी ने कहा है कि परहेज इलाज से बेहतर है, तो हम अपने आप की अंदर की इम्यूनिटी को इतनी मजबूत कर दें कि किसी भी तरह की बीमारी के लिए कोई बैक्टीरिया या वायरस जो है हमारे अंदर आ ही ना पाए। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को हाइड्रेट करें, पानी खूब पिए, और खाना एक वक्त में ज़्यादा खाने के बजाय कई बार में थोड़ा थोड़ा करके खाएं, और पीने के लिए साफ पानी, और खाने में सलाद का इस्तेमाल जरूर करें। सलाद और हरी सब्जियों का इस्तेमाल, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। और इसके साथ साथ नींबू पानी का भी इस्तेमाल करें, और इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी ये एक देसी इलाज है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और अगर बीमारी आ ही जाती है तो उसके लिए आप डॉक्टर से रابطہ कायम करें।
0: बहुत अच्छा कहा आपने कि मामूली मौसमी बीमारियों में बाज घरेलू टोटके फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन शदीद अलामात मुसलसल बुखार या सांस की तकलीफ की सूरत में डॉक्टर्स से रुजू करना बहुत जरूरी हो जाता है, इस तरफ तवज्जो देने की खास जरूरत है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि आज के वक्त में प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो एक सवाल आपसे इसी के ताल्लुक से करेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसानात और बढ़ते हुए प्लास्टिक के कचरे के पेश नज़र आम इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे कौन से इकदाम कर सकता है जिनसे इन कचरों की रोकथाम मुमकिन हो सके, जैसे हम प्लास्टिक के बजाय कपड़े के थैले का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर आप क्या कहते हैं?
2: बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सिंगल यूज प्लास्टिक माहौल के लिए निहायत नुकसानदेह है
0: जी।
2: इससे ज़मीन, पानी और हवा आलूदा हो जाती है। आम इंसान कपड़े के थैले इस्तेमाल कर सकता है, प्लास्टिक की बोतलों की बजाय स्टील या शीशे की बोतलें इस्तेमाल कर सकता है, और काबिले इस्तेमाल अशिया को दोबारा इस्तेमाल कर सकता है
0: जी।
2: प्लास्टिक को इधर उधर फेंकने के बजाय मुनासिब जगह पर डालना चाहिए। ये हजारों साल तक मिट्टी में नहीं सड़ता और जस का तस बना रहता है। इसको जलाने से जहरीली गैस निकलती है। प्लास्टिक के टुकड़े मिट्टी में पानी और हवा के बहाव को रोकते हैं
0: जी।
2: सिंगल यूज प्लास्टिक के बारीक जर्रे खाने और पानी के जरिए हमारे जिस्म में भी दाखिल हो रहे हैं, जिससे गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं। अगर हर फर्द अपनी रोजमर्रा आदत में मामूली तब्दीली लाए तो प्लास्टिक के कचरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
0: बहुत अच्छा कहा डॉक्टर साहब आपने कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी, कपड़े के थैलों का इस्तेमाल, प्लास्टिक की रिसाइकिलिंग और गैर जरूरी प्लास्टिक अशिया से गुरेज कचरे की रोकथाम में मददगार साबित हो सकते हैं, लिहाजा इस तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। बहुत उम्दा आपने बात कही। एक सवाल डॉक्टर साहब से करेंगे, डॉक्टर अहमद साहब, के फिजाई आलूदगी और माहौलियाती तब्दीली मौसमी बीमारियों में किस हद तक इजाफा कर रही है? नीज बदलते मौसम में पानी और गजा की सफाई कितनी अहमियत रखती है, इसकी वजाहत फरमाए।
1: भारत एक ऐसा देश है जिसकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, और कुछ ही सालों में हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब रहने की जगह तो सीमित है, लेकिन उस जमीन को तो बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन रहने के लिए पेड़ पौधों को कटाई की जा रही है, जिससे पेड़ पौधे की आप संख्या कम होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक प्रमुख पोल्यूटेंट है हवा में पाया जाने वाला, और ये जो पेड़ पौधे होते हैं तो इनको कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेके बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वातावरण जो सही होता है, वातावरण में प्योरिटी होती है। और पेड़ पौधों की कटाई होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वातावरण का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए अगर हमें इससे पर होना है तो हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे।
0: बिल्कुल। तो फिजाई आलूदगी और माहौलियाती तब्दीली सांस और एलर्जी की बीमारियों में इजाफा करती है, जैसे अभी आपने कहा, जैसे कि पेड़ पौधों का भी डॉक्टर सामने तस्करा किया, तो एक सवाल डॉक्टर तोफे साहब से करेंगे कि ऐसे कौन से दरख्त और पौधे हैं जो साया फराहम करने के साथ साथ फिजाई आलूदगी को कम करने में भी मौसर साबित होते हैं, इस पर आप क्या कहते हैं?
2: बहुत उम्दा सवाल किया आपने। नीम, पीपल, बरगद, अशोक, तुलसी, एलोवेरा और अमलतास जैसे दरख्त हवा को साफ करने में बहुत मौसर हैं।
0: जी।
2: नीम अपनी दवाओं जैसी खसूसियात के लिए मशहूर है, तो पीपल और बरगद ज्यादा मकदार में ऑक्सीजन फराहम करने के लिए मशहूर है
0: जी।
2: तुलसी

0: सिर्फ माहौल को साफ करती है बल्कि सेहत के लिए भी वो फायदा मंद है। एलोवेरा कम धूप वाली जगह पर अच्छी तरह पनपता है और घर के टेम्परेचर को कम रखता है। इसके जेल को इस्तेमाल करने से जिस्म और बालों के लिए मुफीद है। इसी तरह पुदीना के पत्ते का इस्तेमाल हमारी सेहत को बेहतर रखता है और करी पत्ता का इस्तेमाल खाने का जायका बढ़ाने और अच्छी सेहत के लिए किया जाता है, इसलिए ये दरख्त हमारे लिए बेहद मुफीद है।
1: तो बहुत उम्दा आपने कहा कि नीम, पीपल, बरगद, अर्जुन, अशोक और दूसरे तमाम ऐसे दरख्त जिनके नाम अभी आपने लिए, साया फराहम करने में या फिजाई आलूदगी को कम करने में मौसर साबित होते हैं, लिहाजा इनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना या इनको ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में बागबानी के लिए लगाना बहुत अहम साबित हो सकता है। अब यहाँ पर एक आखिरी सवाल डॉक्टर अहमद साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम के पेश नज़र हमारे सामीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि वो बदलते मौसम में अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सके?
2: इस बदलते मौसम में अपने आप को चुस्त और दुरुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए हमें खान पान और अपने आसपास की साफ सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा और हमारी इम्यूनिटी जो है मजबूत रहे और जो वेक्टर हैं जैसे डेंगू है और मलेरिया है जहाँ पे ये इनका रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद अंडे जो देती है ये पानी में देती है, और अपने घर के आसपास पानी को ना इकट्ठे होने दिया जाए। जैसे कूलर में पानी इकट्ठा है तो उसको हटा दे, या नाली है तो उसको साफ सफाई रखें, उसमें समय समय पे मिट्टी का तेल डालते रहे जिससे इनके मच्छर के लार्वे जो है सांस नहीं ले पाएंगे और ये मर जाएंगे।
1: तो बहुत उम्दा आपने पैगाम दिया कि मौसम की तब्दीली के दौरान मुतवाजिन गिजा, मुनासिब पानी, सफाई, वर्जिश और बर वक्त तिब्बी मशवरे को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाए ताकि सेहतमंद रहा जा सके। और अब हम अपने दोनों खुसूसी मेहमान जनाब डॉक्टर जगदम्बा दुबे साहब और जनाब डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब के बे इंतहा ममनून और मशकूर हैं कि आप हजरात ने हमारे सामीन के लिए बहुत ही उम्दा मालूमात फराहम की। सामीन, अब हम बज्म के माहौल को तब्दील करते हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक नात।

जियरा आनंद होई जाए हो जहां उतरे भवानी। जी हां, ये देवी गीत अभी आप सुन रहे थे मीनू वाजपेयी की आवाज़ में। जी हां, कार्यक्रम चल रहा है लोक रंग और हमारी आज की फनकार हैं मीनू वाजपेयी। तो आइए अब सुनते हैं इनके स्वरों में ये लोक भजन।

मीनू वाजपेयी के गाय अवधि लोकगीत अभी आपने सुने लोकरंग कार्यक्रम के अंतर्गत। इनके साथ संगत करता थे नाल पर सत्यम शिवम सुंदरम सिंह, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर मुकेश कुमार और साइड रिदम था गौरव गुप्ता का। इसी के साथ लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र, धड़कन देश की। श्रोताओं, सुबह के 10 बज चुके हैं और अब वक्त है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में दिल तो पागल है इस फिल्म का गीत। उत्तम सिंह का संगीत और गीत है आनंद बख्शी का।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
2: कुछ करिए बस बस बड़ा पौधे, अब कुछ करिए।
1: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहे, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज़।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।

श्रोताओं, मैंने प्यार किया फिल्म के गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अब से बस थोड़ी ही देर में विश्व दर्पण प्रसारित किया जाएगा, न्यूज़ बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को एक विश्वसनीय साझेदार बताया। कहा, अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: श्री मोदी

0: कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का एक अवसर है।
1: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं।
2: प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमेरिका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रूस ने भारत को पांचवी पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। श्री पुतिन ने भारत की आर्थिक वृद्धि और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि रूस भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा किए गए अथक परिश्रम का परिणाम है। श्री पुतिन ने कहा कि भारत एक महान राष्ट्र और लोकतंत्र है और रूस उसके साथ संबंधों का विस्तार करना जारी रखेगा। विश्व दर्पण के लिए आकर्षिता सिंह।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव यवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है।
3: दोनों नेताओं ने आर्थिक और व्यापार समझौते के शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। साथ ही AI और महत्वपूर्ण खनिजों सहित भारत ब्रिटेन प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल के अंतर्गत विभिन्न पहलों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में उन्होंने दोनों देशों के प्रशिक्षण संस्थानों में सैन्य प्रशिक्षकों के आदान प्रदान सहित नई प्रगति का स्वागत किया। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने हरित विकास पर भारत ब्रिटेन जलवायु वित्त पहल सहित भारत ब्रिटेन जलवायु साझेदारी के महत्व को भी स्वीकार किया। यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्रालय ने लिवरपूल विश्वविद्यालय को बंगलुरु परिसर खोलने के लिए स्वीकृति पत्र सौंप दिया। इसके साथ ही यात्रा के दौरान किंग्स कॉलेज लंदन और राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन के बीच क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन का भी आदान प्रदान किया गया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: विश्व दर्पण समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
5: विश्व पर्यावरण दिवस का

0: उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस अवसर पर देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। फाइनल में पहुंचने वाली टीम का सामना जापान या पूल बी की शीर्ष टीम से होगा। भारत का पूल ए में 9 अंकों के साथ दूसरा स्थान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रूस के राष्ट्रपति ने भारत को एक विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे नए फिल्मी तराने। तो चलिए

0: दिल धड़कने दो, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। यशिता शर्मा, मनीष कुमार, शंकर महादेवन और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।
1: सपनों को देना है नई रफ्तार तो सुनिए आकाशवाणी प्राइमरी चैनल का बेहतरीन प्रोग्राम। यूथ के लिए जरूरी जानकारी, सामयिक चर्चा, फील्ड से ओबी रिपोर्ट्स और गीत संगीत का परफेक्ट मिक्स, सब कुछ एक ही मंच पर। हर दिन शाम 5:45 पर रेडियो ऑन रखिए और जुड़िए नई उड़ान से।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट से, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं नई फिल्मी तराने। लेकिन अगले गाने से पहले श्रोताओं एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रसार भारती द्वारा कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी हेतु नोटिस इनवाइटिंग प्रोग्राम प्रपोजल यानी NIPP की अंतिम तिथि 31 मई 2026 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.prasarbharti.gov.in/NIPP/ अथवा www.akash

श्रोताओं, मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट से, और कार्यक्रम में आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं बैंड बाजा बारात इस फिल्म से। सलीम मर्चेंट का, सलीम सुलेमान का संगीत और गीत है अमिताभ भट्टाचार्य का, आवाज़ है सलीम मर्चेंट के साथ सुनिधि चौहान की।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: उधर करो, फिर चली गई यार, आ गई चली गई।

0: अमित त्रिवेदी की बनाई तर्ज पर अन्विता दत्ती का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म क्वीन से। आवाज थी लाभ जंजुआ, नेहा कक्कड़ और सोनू कक्कड़ की।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700

0: 0001-4242।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण और कार्यक्रम चल रहा है चित्रपट से, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं नई फिल्मी तराने। तो चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर, जिस गीत को हमने लिया है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म से।

जिंदगी न मिलेगी दोबारा। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रही थी फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन, अभय देओल और मारिया डेलमार फर्नांडिस की आवाज़ में। संगीत था शंकर एहसान लॉय का। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं नए तराने चित्रपट से कार्यक्रम के अंतर्गत। और अब आइए आपको सुनवाते हैं बार बार देखो इस फिल्म का गीत जसलीन रॉयल हर्षदीप कौर और सिद्धार्थ महादेवन की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं आदित्य शर्मा ने और संगीत है जसलीन रॉयल का।

अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे सचिन जिगर की बनाई तर्ज पर। वरुण जैन, सचिन जिगर, शादाब फरीदी और अल्तमश फरीदी की आवाज़ में फिल्म थी ज़रा हटके ज़रा बचके। कार्यक्रम चित्रपट में आपको हम सुनवा रहे हैं नए फिल्मी तराने। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं केदारनाथ फिल्म से देव नेगी की आवाज़ में ये गीत।

अमित त्रिवेदी की बनाई तर्ज पर अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे केदारनाथ फिल्म से। आवाज थी देव नेगी की। श्रोताओं, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से, और कार्यक्रम चल रहा है चित्रपट से आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत हाउसफुल फिल्म से। समीर का लिखा ये गीत गाया है मिका सिंह, सुनिधि चौहान, शंकर महादेवन, साजिद खान और अरुण ने। संगीत है शंकर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट से के अंतर्गत कुछ नए फिल्मी तराने, और हम अभी आपको और फिल्मी गीत सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में, जिस कार्यक्रम का नाम है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। उसमें आप हमसे जुड़ेंगे फ़ोन इन के माध्यम से, तो हमारा फ़ोन नंबर हम आप तक पहुंचा दें ताकि आप जल्दी से जल्दी उस कार्यक्रम में हमसे जुड़ सकें। उस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आप ज़रूर डायल कीजिएगा 0522-2238-825 यानी 0522-2238-25 पर। मिलते हैं ठीक 11 बजे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आप सुन रहे हैं शानदार कार्यक्रम।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, और इस समय बचे हैं पूर्वाह्न के 11, और ये समय होता है आपके पसंदीदा फ़ोन इन प्रोग्राम का, जिसका नाम है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, जिसमें आप और हम जुड़ते हैं टेलीफोन के माध्यम से, और आप अपने फरमाइशी गीतों को सुनना चाहते हैं, हम तक अपनी बातें पहुँचाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपका पसंदीदा गीत मिल जाए, नहीं तो कभी कभी हम अपनी पसंद का गीत भी आप तक पहुंचाते हैं। तो इस कार्यक्रम में आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर आप तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। तो हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, ये है 0522-2238-825 यानी 0522-2238-25। और आज इस कार्यक्रम में आपकी बातें किससे होने वाली है ये भी तो बता दें हम आपको। जी, आपके साथ हूँ मैं पूजा विमल। तो देखिए, नंबर बताते बताते ही हमसे कोई जुड़ गया है इस समय, तो सुनते हैं कि कौन है हमारे साथ। हेलो,
2: जय माता दी।
0: जय माता दी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मेरा नाम पूरन वर्मा है जी, और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गाँव का नाम अंतमहल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: जी, स्वागत है आपका पूरन वर्मा जी। वहाँ तो इस समय बहुत गर्मी पड़ रही होगी, ऐसा अंदाजा हम लोगों को लगा रहा। जी
2: जी मैडम, गर्मी भी पड़ रही है और 2-3 दिन बारिश हुई थी, और कल भी हुई थी मैडम, और अभी भी मौसम बना हुआ है।
0: अरे
2: भी हुई थी मैडम बारिश,
0: तब तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ मौसम थोड़ा बदलता मिलता जुलता इस तरह से रह रहा है, जैसे कि लखनऊ में आज सुबह बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी, लेकिन अभी धूप खिली हुई है। लेकिन ठीक है, हर मौसम का अपना मजा है। आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज?
2: जी मैडम, फिल्म का नाम रहेगा लव के दो रंग, और गाने के बोला हसीनों को आते हैं क्या क्या बयाने, और आप इजाजत दे देते हैं मैं 2-3 मित्रों को याद कर लूं।
0: जल्दी जल्दी से, बिल्कुल
2: जी मैडम। सबसे पहले तो आप हैं
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी है, अविनाश जी है, रमेश प्रजापति जी है, गोल्डी भाई है, अमर साहब है, और जितने भी कॉलर लाइव आकाशवाणी लखनऊ, राहुल है
0: जी,
2: और दिनेश है, तमाम श्रोता
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपका पसंदीदा गीत हम पहुँचा रहे हैं आपके।
2: धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: सेकंड।
1: जी बिल्कुल, बहुत सी शिकायतें होती हैं हम लोगों को प्यार मोहब्बत में, आपसी रिश्तों में, लेकिन ये शिकायतें जो हैं वो दूर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी आप लोगों की हम तक कोई शिकायत ना पहुँचे कि भाई हमसे बातें कीजिए, जल्दी से हमारी फरमाइश पूरी कीजिए। इसलिए मैं अपनी बात को थोड़ा सा रोकते हुए जल्दी से सुनते हैं कि कौन है अगले कॉलर हमारे साथ। हेलो
2: हेलो,
1: जी, जी स्वागत है, कौन बोल रहे हैं आप? अपना नाम पहले तो बता दीजिए।
2: जी मैडम नमस्ते।
1: नमस्कार
2: जी, मेरा नाम है रमेश, यहाँ यूपी अयोध्या से बोल रहा हूँ।
1: जी जी रमेश जी, स्वागत है आपका, प्रभु श्री राम की नगरी से आप बोल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। आपके यहाँ पूरी दुनिया आती है और आज आप आकाशवाणी लखनऊ से जुड़े हैं, कैसे हैं आप?
2: जी

0: लगभग मैडम हमारा कॉल हर महीने में लगता है। हम
1: चलिए, बहुत बहुत बधाई। तो आप रमेश जी क्या करते हैं?
0: जी मैडम कुछ नहीं, का दृष्टि बाधित हूँ मैं, जब कर रहा हूँ रेडियो सुनता रहता हूँ।
1: जी, तो चलिए, रेडियो के माध्यम से आप तक ज्ञान भी पहुंचता रहता होगा, यही हमारी कोशिश भी होती है और उम्मीद भी। तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे रमेश जी?
0: ये फिल्म का नाम है दलाल, गाने के बोल है ठहरे हुए पानी में।
1: जी, तो चलिए, आपका पसंदीदा गीत आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं हम।
0: जी मैडम कुछ कहना चाहते हैं
1: जी, जल्दी से बता दीजिए।
0: जी, मतलब कमेंट्री सुनने का बहुत शौक रहता है। कल से मैच शुरू होने वाला है हमारे इंडिया का, तो
1: अच्छा,
0: कोशिश करिए कि प्रसारित कर दीजिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप तक ये चीज़ें पहुँचेंगी, अगर कमेंट्री नहीं तो कम से कम समाचार के माध्यम से अपडेट्स ज़रूर पहुँचेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए रमेश जी, आपका पसंदीदा गीत पहुँचा रहे हैं आप तक, धन्यवाद।

0: कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से और लगातार आप सभी हमसे जुड़ते जा रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए सुन लेते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। हेलो।
1: हेलो जी। सूरज की किरणें छू जाए आपको, सूरज की किरणें छू जाए आपको, मेरी हर दुआ पहुंच जाए आप तक, बस दिल की यही चाहत है कि हर दिन खुशियों भरा हो आपका। गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए यही खूबसूरती है इस कार्यक्रम की, कहीं राधे राधे, कहीं जय माता दी, कहीं राम राम और फिर गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सब हो जाता है। तो रेनू जी स्वागत है आपका। और क्या कर रही थी अभी आप?
1: मैम मैं पहले अपना परिचय बता दूं, इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं अनु पांडे बात कर रही हूँ गोंडा से।
0: अच्छा जी अनु जी, बताइए बताइए। हाँ तो अभी आप कर क्या रही थी इस कार्यक्रम को सुनने के पहले?
1: अभी ना मैं कॉल ट्राई कर रही थी।
0: ओहो बहुत देर से लगता है। तो कौन हाँ। से गाने को सुनने के लिए आपने इतनी मेहनत की है?
1: मैम मैं आज गाना सुनना चाहूंगी सिर्फ तुम मूवी से, पंछी सुर में गाते हैं, आज पर्यावरण दिवस है तो मैं उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को देना चाहूंगी और उसके मौके पर ही सॉन्ग भी सुनना चाहूंगी।
0: वाह क्या बात है, हमारे जागरूक श्रोता हैं अनु जी, और वाकई आप सभी को भी पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी इस ओर ध्यान लगातार देते रहें ताकि हम भविष्य में होने वाली परेशानी से बच सकें। तो रेनू जी आपका पसंदीदा गीत हम पहुंचा रहे हैं आपके रेडियो सेट तक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।

0: जी, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और आज आप हैं पूजा विमल के साथ। लगातार आप सभी से हम जुड़ रहे हैं, तो अभी एक खूबसूरत सा गीत विश्व पर्यावरण दिवस पर हम तक पहुंचा है और इस गीत के माध्यम से जागरूकता भी आप तक पहुंची है। तो चलिए अब सुनते हैं कि कोई एंटरटेनमेंट सॉन्ग की डिमांड हो रही है या कुछ ऐसे ही गीत की। वैसे तो सॉन्ग सारे एंटरटेनिंग होते हैं, लेकिन अभी सुनते हैं कि कौन से कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। हेलो
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार, पहले आप अपना जो रेडियो है ना उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए, क्योंकि दो दो आवाजें हम तक पहुंच रही हैं, तो स्पष्ट रूप से। हाँ जी बिल्कुल, शुक्रिया।
1: आवाज बहुत कम आ रही है।
0: नहीं बिल्कुल पहुंचेगी, आपने उधर वॉल्यूम कम किया है तो हम इधर से वॉल्यूम बढ़ा दे रहे हैं। अब आ रही है आप तक आवाज?
1: जी मैम।
0: जी जी, तो अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से बोल रहे हैं।
1: जी मैं गुरमुख सिंह बोल रहा हूँ, पंजाब जिला जलंधर ग्राम परजिया कला।
0: जी जी, स्वागत है गुरमुख सिंह जी, और बड़ी दूर से कॉल आई हम तक। और क्या कर रहे थे अभी आप कार्यक्रम सुनने के अलावा?
1: छोटी सी किराने की दुकान चलाता।
0: अच्छा, तो चलिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि वो हमेशा अच्छे से चलती रहे, बहुत तरक्की हो आपकी। आज गीत कौन सा सुनेंगे
1: जी?
0: गाना कौन सा सुनेंगे
1: मैम?

0: का तेरे नैन नशीले प्याले।
1: जी जी, तो बिल्कुल आपका पसंदीदा गीत हम पहुंचा रहे हैं आपके रेडियो सेट तक, और एंजॉय कीजिए आप ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आज कुछ तुम कहो कुछ हम कहें प्रोग्राम में आप बने हुए पूजा विमल के साथ। लगातार आप सभी की कॉल्स हम तक पहुंच रही है और जो अभी तक नहीं जुड़ पाए, नंबर जानना चाह रहे हैं, मिलाना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बार फिर से हमारा नंबर आप तक पहुंचा रहे हैं 0522238825052222388825। और आसानी से फ्लो वाली हिंदी में जी 0522238825। तो जल्दी जल्दी हमसे बातें करने के लिए, अपने गीतों की फरमाइशों को पूरी करवाने के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, सुनते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मेरा नाम विनय कुमार गौरव है, मैं तहसील पुवाया जिला शाहजहांपुर से बोल रहा हूँ।
0: जी, स्वागत है विनय जी आपका।
1: धन्यवाद।
0: और कैसे हैं आप पहले तो ये बताइए।
1: बस बढ़िया है, और विश्व पर्यावरण दिवस है, सभी श्रोताओं को बधाई।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ
0: जी
1: कि हमारे देश में पर्यावरण के विषय में बहुत जागरूकता की कमी है। जैसे हम देखते हैं अपने आस पास है, लोग पॉलीथिन जो होती है उसको इकट्ठा करके जलाते हैं, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी आता है वो भी यही काम करता है। अगर बोलो तो अजीब से लोग देखते हैं कि क्या बोलते हैं।
0: नहीं,
1: ऐसे ही लोग मतलब पानी का जो मोटर होता है उसे खुला छोड़ देते हैं, पानी जा रहा है।
0: यही सारी बातें हैं, बिल्कुल विनय जी, छोटी छोटी सी चीजें हैं, इन पे हम सभी को काम करने की बिल्कुल जरूरत है। सिर्फ बातें करने की नहीं, काम करने की जरूरत है। आपने अच्छी बात कही है, तो चलिए इसी बात पे अपना जो पसंदीदा गीत आज आप सुनना चाहते हैं वो बता दीजिए कौन सा है।
1: एक फिल्म है, फिल्म का नाम है सावन। ऐसा गीत अब बहुत कम सुनाई देते हैं।
0: जी जी।
1: और उसकी उसमें आवाज है शमशाद बेगम मोहम्मद रफी की, गीतकार है प्रेम धवन और संगीतकार है हंसराज बहल।
0: अरे वाह, पूरी डिटेल के साथ आपने पूरी डिटेल बताई। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको हम ये एक पुराना गीत है, साल 1959 का है ये, तो आप तक पहुंचा रहे हैं आपका ये पसंदीदा गीत। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद।

0: कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज़ यानी आकाशवाणी लखनऊ से, और लगातार आप सभी की फ़ोन कॉल्स हम तक पहुंच रही हैं और सुनते हैं कि नेक्स्ट कॉलर कौन जुड़ गया है हमारे साथ। हेलो,
1: कहाँ से लाऊं हुनर उसको मनाने का, कि कहाँ से लाऊं हुनर उसको मनाने का, कोई जवाब नहीं था उसके रूठ जाने का, मोहब्बत में सजा तो हो मुझको ही मुन्नति, मैंने चाहा था उसको अपनी जान से भी ज्यादा।
0: ओहो हो, बड़ी दर्द भरी बात आपने कह दी है और उतनी ही दर्द भरी आवाज़ में कही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब चीज़ें दर्द से न जुड़ी हो, खुशियों से जुड़ी हो, और बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं पहले ही। लेकिन अब हम नाम जानना चाहेंगे कि कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं।
1: मैम जी, बस ऐसा कुछ नहीं है, बस रेडियो पे कॉल लगती है तो सोचता हूँ कुछ ऐसा लिखूँ जो रेडियो पे कहूँ जो लोगों को अच्छा लगे।
0: बिल्कुल,
1: यही मेरा एक शौक है। पूजा बिमल जी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बता दीजिए।
1: ग्राम पोस्ट हरपुर मटकली जिला बरेली से सहारून नूर अंसारी आपसे बात कर रहा हूँ, और काफी लंबे अंतराल के बाद इसके कार्यक्रम में शिरकत हो रही है क्योंकि मैं आपका ये कार्यक्रम रेगुलर सुनता रहता हूँ मगर कभी कार्यक्रम में टाइम नहीं मिलता कार्यक्रम में फोन लगाने के लिए। आज काम की छुट्टी भी थी और आज से आपसे बात भी होगी तो बहुत सारी खुशी मिल गई।
0: अरे वाह, क्या बात है। देखिए, यही हमें भी बहुत खुशी होती है जब आप जैसे सुधी श्रोता हमारी ये जो गुजारिश होती है इसे मान लेते हैं कि कुछ समय के बाद यानी एक अंतराल के बाद कॉल लगाया करें ताकि नए लोग हमसे जुड़ते जाएं। तो सहारून जी, आपने जो शुरुआत में एक शेर पढ़ा था वो क्या आपने खुद लिखा था?
1: जी बिल्कुल, मैं शेर लिखता रहता हूँ और
0: जी।
1: मेरा यूट्यूब पर चैनल है बरेली का लड़का 333।
0: ओहो हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए देखिए देखिए, रुक जाइए जरा रुक जाइए।
1: रहता हूँ और लोगों को पसंद भी आता
0: है। बिल्कुल बिल्कुल,
1: मुझे रेडियो पे फोन।
0: बिल्कुल, आप अपने हुनर को बढ़ाते रहिए आगे और अपना पसंदीदा गीत जल्दी से हमें बता दीजिए।
1: कहना चाहूंगा कि उनकी गली से गुजरे मंजर अजीब था, कि उनकी गली से गुजरे मंजर अजीब था, दर था वो भी मेरे दिल के करीब था, जिसे मैं ढूंढता था अपने हाथों की लकीरों पर, वह किसी की किस्मत किसी और का नसीब निकला।
0: जी जी, तो चलिए, गाना अब से हमने पूछा था और आपने हमें अपना एक कलाम सुना दिया, लेकिन गीत जल्दी से बता दीजिए।
1: मैम जी, फिल्म का नाम है प्रेम रोग, उसमें गाना है मेरी किस्मत में तू नहीं साई, गाना सुनवा देना। गंगा देव सावनकर जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया हैं, राजेंद्र गंगवार हैं, लोकेंद्र वर्मा हैं, आप हैं, सारून अंसारी के साथ सुनना चाहूंगा ये गाना।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और अपना पसंदीदा गीत आप तक पहुँच रहा है उसे इंजॉय कीजिए, और आप सभी जो अन्य श्रोता हैं वो जरूर इससे जुड़ते रहिए कार्यक्रम से हमारे।

0: कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, प्रोग्राम में कुछ कुछ बातें हो रही हैं आप सभी से और समय जो है वो बीतता चला जा रहा है और अब लगभग लगभग 15 मिनट बचे हैं हमारे पास, तो सुनते हैं कि कौन है हमारे नेक्स्ट कॉलर। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार,
1: जी।
0: स्वागत है।
1: नमस्कार नमस्कार बहन जी।
0: हाँ जी, तो जल्दी से अपना नाम तो पहले बता दीजिए ताकि हमारे सभी लिसनर्स जान सकें
1: जी
0: कि
1: जी
0: कौन
1: नाम
0: है।
1: बताएंगे,
0: जी
1: पूरा बताएंगे, एड्रेस बताएंगे, सब
0: नहीं नहीं
1: बताएंगे,
0: नहीं नहीं
1: काफी
0: नहीं
1: दिन
0: नहीं
1: बाद
0: नहीं
1: फोन
0: नहीं
1: लगा है।
0: सुनिए सुनिए सुनिए, एड्रेस ना बताया कीजिए आप लोग, ज़माना बहुत ख़राब हो चुका है। तो हम यही रिक्वेस्ट
1: ऐसा
0: करते हैं
1: कुछ नहीं है,
0: कि
1: ऐसा कुछ
0: अपने
1: नहीं है।
0: पर्सनल डिटेल्स ना बताया कीजिए यहाँ पर। हाँ, आप ये ज़रूर बता दें कि आप कुछ आसपास की चीज़ें बता दें, अपना शहर बता दें, लेकिन ये
1: जी
0: सावधानी हम सभी को बरतनी चाहिए। बिल्कुल आप सहमत होंगे हमें लगता है इस बात से। देखिए, इतने कहीं भी कॉल कीजिए तो साइबर क्राइम इन सब के बारे में जब जानकारी दी जाती है तो ये कहा जाता है कि अपनी पर्सनल डिटेल्स को पर्सनल ही रखें। तो ठीक है, ये ध्यान में रखते हुए अब बताइए कि अपना नाम बता दीजिए और किस शहर से बोल रहे हैं।
1: जी विनीत कुमार बोल रहे हैं, ग्राम अर्थापुर, पोस्ट रामगढ़, चीनी मिल, जिला सीतापुर।
0: जी, स्वागत है विनीत जी। सीतापुर हमारे काफ़ी पास है, काफ़ी क्या पास है, थोड़ी दूर भी है, थोड़ा पास भी है, लेकिन आपका स्वागत है। तो मौसम कैसा है वहाँ पर?
1: मौसम तो ठीक है, रात में थोड़ी बारिश हुई थी।
0: अच्छा, चलिए थोड़ी
1: खेती
0: राहत मिल गई आपको। क्या करते हैं आप?
1: बाड़ी करते हैं।
0: ओहो, तो फिर तो हमारा ये ज़रूर पूछना सही रहा, मतलब कि मौसम के बारे में आपसे जान ले। क्या लगाया हुआ है आपने अभी अपने खेतों में?
1: खेत में अभी तो गन्ना है
0: जी,
1: और
0: तो
1: धान की फसल लगेगी, अभी नर्सरी
0: जी
1: डाली हुई है धान की,
0: जी तो चलिए
1: तो
0: हम
1: अभी 20 दिन
0: उम्मीद
1: में धान लगेगा।
0: करते हैं कि जैसे मीठा मीठा गन्ना भी आपके खेत में है, वैसे धान भी लहलहाती हुई हो आपके खेतों में। आज गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: आज की फिल्म का है, फिल्म
0: जी, कौन सा बोल बताइए, बोल।
1: का आलम मैं क्या बताऊं तुझे,
0: जी
1: इसके बोल
0: तो
1: रहे हैं और कुछ दोस्तों को शामिल करें।
0: हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी से नाम ले लीजिए।
1: ओमकार सीतापुर से हैं और सुरभि सीतापुर से हैं, समा परमी अंसारी सीतापुर से हैं, रिंकी पिंकी राय बरेली से हैं, संतोष
0: जी
1: मौर्या हरदोई से हैं, संजू गुड़वा हरदोई से हैं
0: जी तो
1: और भगवान सिंह परमार हैं, गगनदीप हैं,
0: ओके, हमें लगता
1: और
0: है सबका
1: जितने
0: नाम
1: सुने
0: ले
1: हैं
0: लिया
1: सभी के
0: आपने।
1: लिए।
0: हाँ, तो आप सभी के पसंद पर, आप सभी का ये पसंदीदा गीत आपके रेडियो स्तर तक बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद।

0: जी बिल्कुल, समय तेजी से निकलता जा रहा है, तो हम जल्दी से अपने अगले कॉलर को ले लेते हैं। हेलो हेलो
1: जी
0: जी, नमस्कार, स्वागत है, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी बता दीजिए।
1: राज जी बोल रहे हैं राहुल सीतापुर से।
0: जी रामराज जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में, और समय चूंकि भाग रहा है इसलिए हम जल्दी से जानना चाहेंगे कि आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप।
1: जी दिल अपना प्रेत कराई।
0: जी, और कुछ कहना चाहेंगे तो जल्दी जल्दी से बोल दीजिए जब तक हम आपका गाना लगा रहे हैं।
1: जी
0: कुछ और कहनी है बात आपको?
1: और क्या कहने, पेंटिंग का काम करते हैं सर मान
0: अच्छा,
1: जी।
0: बस आप लोग ट्रेंड हो गए हैं कि हम लोग यही पूछते हैं कि क्या करते हैं, मौसम कैसा है, क्या
1: हाँ,
0: हालचाल है।
1: मकान की
0: तो
1: शोभा बढ़ाते हैं, घर मकानों की पुताई रंगाई करते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: पेंटिंग
0: तो
1: का काम।
0: चलिए, आपका काम हमेशा अच्छा चलता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका पसंदीदा गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी, समय जल्दी से निकलता जा रहा है, तो आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर से जल्दी से जुड़ जाते हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: जी नमस्कार, स्वागत है। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिल्कुल दीदी जी, मैं ग्राम परसेठा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, यानी यमुना बेल्ट के किनारे से मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ दीदी।
0: जी स्वागत है आपका। तो समय कम है इसलिए हम सीधे सीधे गीत जानना चाहेंगे कि कौन सा सुनना है आज आपको।
1: जी
0: हाँ बोल, बताइए गाना कौन सा सुनेंगे आज आप?
1: जी दीदी, फिल्म का नाम रहेगा तुम बिन और गीत की बोल रहेगा तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे,
0: जी
1: और
0: बिल्कुल।
1: ये डेडिकेट रहेगा मांगीलाल जी के लिए और फूलचंद मनकारी के लिए, जितने अन्य हमारे श्रोता सुन रहे हैं सभी लोग के लिए।
0: जी, तो बिल्कुल आप सबके लिए ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद।
2: करे

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी दोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
3: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोता

0: कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
1: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
0: जी
1: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
0: जी
1: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
0: जी
1: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
0: श्रोताओ, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है। मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
1: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
0: क्या बात है।
1: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
0: क्या बात है। श्रोताओ, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
1: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता
0: जी
1: है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
0: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
1: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है।
0: जी
1: यहाँ आज भी लोग पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
0: जी
1: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
0: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओ, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है। यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
1: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है। नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: कोई ना कोई वजह होगी, तभी तो ऐसा।

0: 그렇지 말이도 마라샹도
1: 마라샹도 마라샹도
2: 마라샹도 마라샹도
3: 마라샹도
4: 마라주기
5: 네
4: 마라주기
5: 네
4: 마라주기
0: 네저 제세 샷은 때리는
6: 허스에라노
7: 샹트 샹트 आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
8: हाँ हाँ महाराज,
7: महाराज
8: बताइए,
7: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर
8: हैं। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
7: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
9: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
7: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूं? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
10: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
11: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
7: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
11: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
12: जी महाराज, आप बहुत कृपालु हैं।
13: महाराज की जय हो।
14: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की।
7: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
11: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
7: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
8: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
7: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
8: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे।
7: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
8: धन्यवाद महाराज।
11: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
8: भाई, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
15: हुआ? मेरे साथ मिला, मुझे भी नकली हो सकता है।
8: क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
4: महाराज की जय। महाराज की
5: जय।
4: महाराज की
5: जय।
7: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
8: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ ले महाराज।
7: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
8: जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज, हमने इन हीरों की जांच जौहरी से कराई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली है महाराज।
7: क्या? और कोई शंका?
8: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
7: ठहरिए, मैं समझाता हूँ।

0: आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
1: महाराज की
2: जय!
1: महाराज की
2: जय!
1: महाराज की
2: जय!
0: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
5: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चल।

तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम।

0: बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं, वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है, इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है, तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति

0: घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति, लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। स्वागत करते हैं हम आप सभी का आज इस कार्यक्रम में। स्वीकार कीजिए पूजा का प्यार भरा नमस्कार। और चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं। पहले आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में आदमी और इंसान फिल्म का गीत। इसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और इसकी धुन तैयार की रवि ने।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।
4: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं राजा मेहती अली खान का लिखा गीत जिसे संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने। लता मंगेशकर की आवाज़ है, फिल्म का नाम है मेरा साया।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म बहू बेगम से, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। साहिर लुधियानवी की शब्द रचना और धुन रोशन की।

हमराज फिल्म का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे गाया है महेंद्र कपूर ने। रवि के संगीत को बोलो से सजाया है साहिर लुधियानवी ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में आप हैं पूजा विमल के साथ, और वक्त बीतता जा रहा है और हम कुछ खूबसूरत नगमे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और आप तक पहुंचाते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे सुरों से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले।

चलते चलते फिल्म का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, अमित खन्ना के बोल और संगीत बप्पी लहरी का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार नगमे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
2: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में BSF के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया

0: पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसल कर 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़क कर 23,374 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं।
2: हर शाम लेकर आती है एक नई उड़ान, हुनर की, विकास की, उम्मीदों और परंपराओं की। हम जुड़ते हैं उन कहानियों से जहां कला बोलती है, युवा सपनों को आकार देते हैं और योजनाएं बदलती हैं जिंदगियों की दिशा। एक कार्यक्रम जो दिखाता है भारत के बदलते कदम, गांवों से शहरों तक, हुनर से नवाचार तक, हर उस कोशिश को जो देश को आगे बढ़ाती है। तो रोज जुड़िए हमारे साथ हर शाम 5:45 पर मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी लखनऊ पर।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूले
5: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 आकाशवाणी लखनऊ पर।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप

0: सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी देर में यानी दिन के 1:15 पर अपराजिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर केंद्रित बातचीत, बोए उम्मीद के बीज, बचाएं अमृत सा पानी, प्रतिभागी मंजरी उपाध्याय और प्रशंसा गुप्ता। भेंटकर्ता ममता उपाध्याय। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 1:10 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में इलाकाई खबरें नश्र की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। आज आलमी यौम माहौलियात है। ज़मीन पर सभी जानदार की ज़िंदगी की अहमियत बनाए रखने और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदारी बढ़ाने के मकसद से अक़वामे मुत्तहिदा माहौलियात प्रोग्राम के तहत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 से हुई थी। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम को मुबारकबाद पेश की है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकारी रिहायशगाह पर आलमी यौम माहौलियात 2026 के मौके पर एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत आम का पेड़ लगाकर शजरकारी की। इस दौरान वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरगीब से गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान रियासती हुकूमत ने माहौलियात और नेचर के तई अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते हुए कई खसूसी पेशकदमी की हैं। पहले ही साल 2017 में वन महोत्सव के मौके पर डबल इंजन हुकूमत ने 5 करोड़ शजरकारी के बड़े काम को अपने हाथों में लिया है। उन्होंने आवाम को आलमी यौमे माहौलियात की मुबारकबाद भी पेश की। वजीर आला ने कहा
2: कि उस समय तमाम चैलेंजेस हमारे सामने थे, न नर्सरी थी, न इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार के कोई अनुभव ही। लेकिन बाद में वन विभाग और प्रदेश सरकार के अन्य सभी विभागों ने मिलकर के एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया और गत 9 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर वन महोत्सव के अवसर पर होने वाले वृक्षारोपण के क्रम में अब तक 242 करोड़ वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में प्रदेश सरकार ने सफलता प्राप्त की।
1: आज इस मौके पर चित्रकूट, गाजियाबाद, कानपुर देहात, जौनपुर, मऊ, अमरोहा और दीगर इजला में शजरकारी की गई। दरियासना एक दीगर प्रोग्राम में वजीर आला ने लखनऊ के कुकरैल जंगल हलके में शजरकारी करके रियासत गीर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस साल रियासत में एक दिन में 5 करोड़ पेड़ लगाने का निशाना रखा गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में आलमी बैंक के तावन से 2741 करोड़ रुपए की लागत वाली एयर शेड पर मबनी उत्तर प्रदेश साफ हवा मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। उन्होंने शजरकारी महाअभियान 2026 के तहत 35 करोड़ शजरकारी महाअभियान के लोगों का इजरा किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि माहौलियात के चैलेंजेस का सामना करने के लिए हिन्दुस्तान की कदीम रवायत में रचे बसे अंसर को भी अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि जब कुदरत महफूज रहेगी तभी इंसानियत महफूज रह पाएगी। वजीर आला ने कहा
2: उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए या भारत जैसे देश के लिए जिसके बारे में कहा जाता है ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का देश या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का राज्य और उसमें अगर मौसम चक्र में अंतर आएगा तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा? किसान की आमदनी पे असर पड़ेगा। अतिवृष्टि का सामना करना पड़ेगा, अनावृष्टि का सामना करना पड़ेगा, खाद्यान्न का संकट खड़ा हो सकता है और पूरी दुनिया आज उन चीजों से चिंतित भी है और उनके लिए असमय घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाएं एक चेतावनी भी है।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज 3 रोजा दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। इस दौरान वो मुख्तलिफ समाजी तंजीम और अवामी राबता प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम और पार्टी अहदेदारों से मजाकिरात भी करेंगे। वजीर दिफा आज उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ बायोयुग ग्रीन कमांड प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वजीर दिफा आज आलमी यौम माहौलियात के मौके पर कैंट वाके कस्तूरबा पार्क में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत शजरकारी भी करेंगे। बनारस में ब्रिक्स ममालिक के कल्चरल वर्किंग ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग आज दूसरे दिन भी जारी है। मीटिंग में ब्रिक्स अराकीन ममालिक के नुमाइंदे सकाफती तआवुन की मुख्तलिफ अव्वलियत वाले शोबों पर गौर खोज कर रही है। मीटिंग के दौरान क्रिएटिव मईशत, सकाफती विरासत के तहफ्फुज, तहजीब पर मबनी, हमी जहत तरक्की और आवाम से राबते को मजबूत बनाने जैसे मौजों पर बहस हो रही है।

0: वाज़ह रहे कि सेशन का इफ्तिताह कल किया गया था, जिसकी सदारत हिंदुस्तान हुकूमत के सकाफत सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने की थी। दो रोज़ा इस मीटिंग का इख्तिताम आज होगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने इम्तिहानी अमल को मजीद महफूज और शफाफ बनाने के लिए चेहरे की तस्दीक का निज़ाम मुतारिफ कराया है। कमीशन ने हाल ही में मुनक़िद होने वाले इब्तदाई सिविल सर्विसेज इम्तिहान और उस साल के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इम्तिहान में कामयाबी के साथ इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। यह सिस्टम इस बात को यकीनी बनाता है कि दरख्वास्त फॉर्म भरते वक्त जिस उम्मीदवार की तस्वीर अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार है जो दाखिला कार्ड के साथ इम्तिहानी मरकज में मौजूद है। ख्वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत ने अगस्त सितंबर के सेशन के लिए अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम में शिरकत के लिए ख्वातीन से दरख्वास्तें तलब की है। इसमें तुलबा, मुहक्किकीन, समाजी कारकुनान और किसी यूनिवर्सिटी या दीगर तालीमी या गैर तालीमी इदारे से वाबस्ता असातज़ा शामिल हैं। और महकमा मौसमियात ने लखनऊ समेत कई जिला में आइंदा कुछ घंटे में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम साइंस मरकज के मुताबिक दारुल हुकूमत लखनऊ समेत रियासत के कई हिस्सों में मुतवस्सित से लेकर हल्की आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अपराजिता।

0: स्वागत अभिनंदन हमारी प्रिय सखियों का कार्यक्रम अपराजिता में। और आज आपके साथ मैं हूँ आपकी सखी साधना
1: और मैं आभा। सखियों नमस्कार। साधना तुम तो हरी साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो।
0: थैंक यू।
1: मतलब तुम्हें प्रॉमिस याद रहा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी 5 जून को हम पर्यावरण संबंधी ड्रेस पहनेंगे।
0: बिल्कुल याद रहा। और तुम भी तो ये जो इन फूल पत्तियों वाली कुर्ती में कम नहीं लग रही हो आभा।
1: तो तुम्हें क्या लगा मैं प्रॉमिस भूल जाऊंगी? साधना यूं तो हरे रंग के बहुत से शेड्स होते हैं, लेकिन तुमने जो साड़ी पहनी है ना उसका कलर बिल्कुल बरगद के पत्ते की तरह लग रहा है।
0: ओहो, तुमने बरगद की बात करके मुझे मेरे बचपन की याद दिला दिया आभा।
1: बचपन से बरगद का क्या लेना देना भला?
0: हाँ बिल्कुल लेना देना है आभा। ठीक है, देखो मुझे याद है कि जब मैं अपने नानी के घर जाती थी ना गर्मी की छुट्टियों में,
1: जब तुम छोटी छोटी हुआ करती होगी तब जाती होगी ना।
0: हाँ जब मैं छोटी थी।
1: अच्छा, अच्छा,
0: तो जो जब मैं जाती थी तो मुझे याद है कि जो मेन रोड होती थी ना वहाँ पर एक बरगद का पेड़ हुआ करता था।
1: तो उस पेड़ में ऐसी क्या खास बात थी जो इतने दिनों बाद भी वो तुम्हें याद रह गया?
0: एक्चुअली वो एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़ था। ठीक है, उसकी जो शाखाएं थी और उनकी जड़ें थी उनकी और जो ठंडी ठंडी छांव थी ना मुसाफिरों को बिना किसी भेदभाव के सुकून देती थी।
1: तुम्हें पता है एक बरगद का वयस्क पेड़ 25 AC जितना ठंडक प्रकृति में छोड़ता है?
0: बिल्कुल देता है। और देखो, और उसके नीचे मिठाई की एक दुकान थी, मैं अपनी बात कर रही थी ना, तो सुनो वहाँ पर एक मिठाई की दुकान भी थी जहाँ से हम नानी के लिए मिठाई खरीदते थे।
1: अच्छा।
0: और उसी पेड़ के पत्तों का दोना बनाकर, मतलब बरगद के जो पेड़ बरगद के जो पत्ते होते थे उसका दोना बनाकर वो जो दुकानदार भैया थे ना हम लोगों को जलेबी और गुलाब जामुन दे देते गरम गरम। तो मुझे याद है कितने स्वाद से हम उसको खाते थे और मुझे उसका स्वाद ना आज भी याद है।
1: साधना क्या वो पेड़ आज भी है? मैं भी उसे देखना चाहती हूँ।
0: क्यों नहीं भाई, आज भी वो पेड़ हमारा उसी तरह स्वागत करता है जैसे घर का कोई बुजुर्ग करता है।
1: सच साधना, हम लोग पेड़ों से एक रिश्ता सा जोड़ लेते थे। आजकल के बच्चे तो मोबाइल्स और गैजेट के जाल में ऐसा फंस गए हैं कि वो पेड़ों के साथ तो रहते हैं पर इमोशनली अटैच नहीं हो पाते।
0: बच्चे इमोशनली अटैच हों इसके लिए हम बड़ों को ही पहल करनी होगी आभा।

0: ऐसी पहल हम लोगों को कैसी पहल करनी होगी भला?
1: देखो भाई, बच्चों को पार्क घुमाने ले जाना चाहिए, मतलब हम ये बड़ों का ही कर्तव्य है ना। घर पर बच्चों से गमलों में पौधे लगवाने चाहिए, है ना, और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उन्हीं को सौंपनी चाहिए।
0: ये तो सही।
1: और देखो, हमारी सरकार भी एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चला रही है, उसका भी यही उद्देश्य है कि हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट है वो प्रकृति के साथ बना रहे।
0: ये तो बिल्कुल सही बात कही तुमने। और साधना, एक बात और भी है, जैसे समर वैकेशंस में हम अक्सर हिस्टोरिकल प्लेसेस या मॉल वगैरह जाते हैं, क्यों ना इस बार अभयारण्य की सैर को जाएं?
1: बिल्कुल सही कहा आभा। और देखो, जंगल की वादियों में एक अलग ही ताजगी होती है, होती है कि नहीं होती है?
0: हाँ, बिल्कुल होती है।
1: मानो प्रकृति कह रही हो, ये खूबसूरती मेरे सिवा और कहीं नहीं मिलेगी।

0: तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कार्यक्रम अपराजिता में आप सभी सखियों का पुनः स्वागत है। साधना, ये तो बात सच है कि पेड़ पौधे, झरने, पहाड़, प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं, लेकिन हम शहरों में रहने वाले चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते।
2: देखो आभा, जहाँ चाह वहाँ राह होती है ना? होती है।
1: हाँ,
2: ना
1: वो तो है, लेकिन क्या करें बताओ। एक तो घरों में ज्यादा स्पेस नहीं होता, दूसरा समय भी नहीं मिलता हम लोगों को, फिर क्या किया जाए तुम ही बताओ।
2: देखो, समय तो हम अनुशासन से निकाल सकते हैं आभा।
1: हाँ, निकाल सकते हैं।
2: हाँ, और रही बात कम जगह की, तो उसका भी उपाय है, जानना चाहोगी?
1: तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली साधना, बिल्कुल जानना चाहूंगी।
2: तो आओ सखियों के संग सुने विश्व पर्यावरण दिवस पर बातचीत, बोए उम्मीद के बीज, बचाए अमृत सा पानी, जिसमें प्रतिभागी हैं मंजरी उपाध्याय, प्रशंसा गुप्ता और भेंट करता है ममता उपाध्याय जी।
3: सखियों, आज हमारे स्टूडियोज में दो सखियां आई हुई हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर भी खास दो मुद्दे, यानी हम पेड़ पौधों की रक्षा कैसे करें और जल को कैसे बचाएं, इस विषय पर बात करने के लिए

0: में हमने काम करना शुरू किया था तो ये प्रश्न हमें भी बहुत सालता था. कहीं ना कहीं हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उन मूल्यों में बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके पीछे. किसी एक व्यक्ति को किसी एक परिस्थिति को दोष देना इसमें उचित नहीं है, पर कहीं ना कहीं हमारे नैतिक मूल्यों में क्षरण हुआ है. हमारे जो सनातन व्यवस्था रही है, हमारे पूर्वज पुरखे रहे, यहाँ तक कि राजा महाराजा भी जो भी सामाजिक सरोकार के काम करते थे उसमें बड़े बड़े बाग लगाना, जंगल लगाना, ये उनके प्रमुख कार्यों में से एक होता था. बहुत सारी चीजों का विघटन हुआ जिसका रिजल्ट ये है कि हम इतना सोच ही नहीं पाते. आई मी माई सेल्फ की दुनिया में इतने बंधे हुए हैं कि हम सोच ही नहीं पाते हैं कि पौधा लगाना भी हमारा दायित्व हो सकता है. शुरुआती दौर में ये टेंडेंसी हमें थोड़ा सा विचलित करती थी, बट चूंकि हमारे प्लांटेशन के गुरु पीपल बाबा रहे जिन्होंने उसके हर आयाम से हमें परिचित कराया और ये बोला कि हम या तो एक्टिविस्ट हो सकते हैं या लोगों की कमियों पे उंगली उठा सकते हैं, या फिर अगर लोगों में कमियां हैं तो उस कमी को कैसे पूरा किया जाए उस पे काम कर सकते हैं. तो उनका तरीका ये था कि हम कमियों को पूरा करने पे काम करें, जो गैप है उसको ब्रिज करने पे काम करें. और हमें भी वही सही लगा तो हम एक्टिविस्ट नहीं बन पाए बल्कि हम पौधे लगाने वाले बन गए. अगर मान लीजिए 4-6 साल पौधा चलने के बाद भी कोई काट देता है तो दुख तो बहुत होता है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि कम से कम उन 4-6 सालों में पौधों ने अपना काम किया, कुछ सीजन दिया, थोड़ी वाटर बॉडीज को रिजुविनेट करने में हेल्प किया, कुछ फल फूल लगे उस पे जिसने बीज बर्ड्स और बटरफ्लाइज को शेल्टर दिया, तो हम उस तरीके से खुश हो जाने वाले लोगों में से एक हैं. बाकी जो आपका प्रश्न था उसमें डेफिनेटली ये रीजन है कि नैतिक मूल्यों में हमारे बहुत विघटन और बहुत बदलाव आया.
1: हम महत्व समझते हैं लेकिन उसके प्रति से आपने कहा ना कि एक जो लगन होनी चाहिए या पर्यावरण के प्रति जो हमारी सोच होनी चाहिए कि हमें कुछ करना ही है, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है. शायद हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं. पर एक महत्वपूर्ण काम पर्यावरण को बचाना भी, ये भी हमें समझना होगा. और ऐसा ही काम प्रशंसा जी कर रही हैं, पानी को बचाकर. तो प्रशंसा जी, कैसे आपने अपने काम की शुरुआत की?
2: क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वो बुंदेलखंड में आता है, बांदा जिला. वहाँ पे हमेशा से पानी की समस्या रही, मैंने बचपन से वो पानी की समस्या को फेस किया है. तो मैं उससे ये समझ पाई कि पानी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है. तो पानी इज़ द बेसिक नीड और हमको उसके बचाने के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने पहले बहुत सारा काम किया और बचा के हमको दिया है, पर हम आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. क्योंकि अब हमने तालाब भी पाट दिए हैं, कुएं भी पाट दिए हैं, तो अब वाटर सोर्स अगर रहेगा ही नहीं तो आपके पास पानी कैसे आएगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है.
1: जी जी, ऐसे जो हम बात करते हैं, हम अपने घर में पानी बचाने की बात करते हैं कि जो हम रोजमर्रा में यूज कर रहे हैं उसको कम मात्रा में करें, लेकिन जो आप प्रशंसा काम कर रही हैं वो समाज के स्तर पे काम कर रही हैं कि कैसे हम जो कुएं हैं, तालाब हैं, पोखर हैं, बावड़ियां हैं, यदि वो गंदी हो गई तो साफ करें और उनको पुनर्जीवित करें. तो ये काम करने का विचार कैसे आया और कैसे आपने इसकी शुरुआत की?
2: क्योंकि मैम जब मैं फील्ड में जाती थी तो मैं देखती थी कि गांव वाले ही बताते थे कि पहले यहाँ पे एक कुआं हुआ करता था, अब लेकिन वो बंद हो गया है, वो डस्टबिन के तौर पे काम हो रहा है जो घरों का कूड़ा आ रहा है. उन्होंने बोला कि उसकी वजह से समर्स में हमारे घर के जो पास वाला हैंडपम्प है या नल है उसमें पानी आना बंद हो जाता था. तो वो लोग काफ़ी परेशान थे और वो लोकल सोल्यूशन, क्योंकि कम्युनिटी ओनरशिप किसी भी काम में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि सस्टेन तभी करेगा जब उसका कोई ओनरशिप लेगा. तो हम जब कम्युनिटी से बात किए तो यही समझ में आया कि अगर हम उसको वापस से पुनर्जीवित करेंगे और ओनरशिप रहेगी तो वो लंबे समय तक सस्टेन करेगा और उसमें पानी रहेगा, तभी आपके बाकी स्रोतों में भी पानी रहेगा. क्योंकि अगर कुएं और तालाब सूख गए तो कोई भी टैप वाटर है या हैंडपंप है उसमें पानी नहीं रहेगा.
1: जी, तो आपने शुरुआत की तब आप अकेली थी या कैसे आपने मिलकर शुरुआत की?
2: जी, शुरुआत जब करना शुरू किया था तब मैं गाँव में अकेले ही जाती थी, फिर 2-3 से टीम बनती चली गई और कार्रवाई ऐसे शुरू हो गया.
1: तो शुरुआत में कहीं गाँव वालों की तरफ से विरोध तो नहीं हुआ कि ये काम आप कर रही?
2: नहीं मैम, क्योंकि ये पानी सबकी नीड है और सब समझते हैं इसके लिए, तो विरोध तो नहीं रहा. उल्टा उन्होंने महिलाओं से सबसे ज्यादा बात किया तो वो इस चीज को, समस्या को समझी कि हाँ वो हमारी जरूरत है और हमें बहुत दूर से लाना पड़ता है और बाकी चीजों में भी उनको परेशानी होती थी, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया तो फैमिलीज फिर जुड़ती गई.
1: जी, हम आपसे पूछेंगे कैसे आप ये काम करती हैं ग्राउंड स्तर पे. उससे पहले मंजरी जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि जो नैतिक मूल्य हैं कहीं ना कहीं उसमें हमारी गिरावट आ रही है और बच्चों को भी पर्यावरण के बारे में बताते हैं पर जितना बताना चाहिए, जितना उनके अंदर वो बीज बचपन से बो देना चाहिए, शायद कहीं ना कहीं हम बड़ों में वो कमी आ रही है. तो क्या कहेंगी कैसे हम बच्चों में ये आदत डालें बचपने से कि वो पेड़ पौधों की बात समझे और महिलाओं के बारे में जो हमारी गृहणियां हैं या जो वर्किंग वुमेन्स हैं कैसे वो अपने रोज के काम में इसमें मदद कर सकती हैं, पेड़ पौधों को लगाने, जंगल को भी बचाने में अपनी योगदान दे सकती हैं.
0: दरअसल यहाँ पर भी हमें एक साझा जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है. जैसे जब हम व्यावहारिक तौर पर काम करते हैं तो बच्चों के

0: अब काम करने के लिए स्कूल्स बहुत अच्छी जगह होते हैं। वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है उत्तर प्रदेश में पूरे जुलाई माह में, तो उस समय में चूंकि मॉनसून का समय होता है, वो सबसे आइडियल समय होता है जिस समय धरती माता तैयार होती है किसी भी बीज को, किसी भी सीडलिंग को अपनी गोद में जगह देने के लिए प्रॉपर माहौल होता है। तो हम वन महोत्सव के दौरान स्कूल्स की हेल्प लेकर के बच्चों के साथ में दो स्तर पे काम करते हैं। एक तो होता है सेंसिटाइजेशन, मतलब उनको बेसिक नीड बताना कि जरूरत क्या है इन पौधों को लगाने की, और सबसे अच्छी चीज पूरे प्रोसीजर की ये होती है कि बच्चे बहुत जल्दी चीजों को पिक करते हैं, सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं और सबसे मजे लेकर के काम करते हैं। पहले तो उनको नीड के बारे में बताते हैं कि जरूरत क्या है उसकी, और एक बार जब उनका सेंसिटाइजेशन हो चुका होता है तो फिर उनको एंगेजमेंट के लेवल पे एंगेज करते हैं जिसमें उनके हाथ से पौधे लगवाते हैं।
1: अच्छा
0: जी, और अगर पॉसिबल हो पाता है स्कूल के माध्यम से तो हम फिर बाद में बच्चों को 2-3 महीने बाद फिर उन पौधों का विजिट के लिए लेकर के जाते हैं कि आपने जब लगाया था तब ये पौधा कैसा था, अब 2 महीने बाद कैसा है, और कभी 1-1.5 साल में जब भी आप इस रास्ते से गुजरो तो अपने पेरेंट्स को साथ में बताओ कि ये पौधा मेरे हाथ का लगाया था, हाउ डज इट लुक नाउ। कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनमें 1.5 से 2 साल में फल भी आने लग जाते हैं, जैसे अमरूद है, अनार है, पपीता है, तो वो फल जब देखते हैं बच्चे तो
1: बहुत खुश हो जाते होंगे,
0: स्वतः ही बहुत खुश होते हैं और पेरेंट्स को भी बहुत खुशी होती है। तो बच्चे और स्कूल इसमें एक बहुत निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। उनके करिकुलम में बहुत सारे बदलाव हुए हैं पिछले कुछ सालों में, थोड़ा सा अगर उनकी स्किल्स के तौर पे खेती बाड़ी और पौधों का संरक्षण भी शामिल कर लिया जाए तो उसमें बहुत मदद मिलेगी, और उन्हीं के माध्यम से उनकी माताएं भी जागरूक ज्यादा अच्छे से होंगी, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे की खुशी से ज्यादा उसके लिए कुछ नहीं होता है, तो मदर्स भी साथ साथ कनेक्ट हो सकते हैं।
1: जी, और जो रोजमर्रा का जीवन है उसमें भी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी जो सखियां हैं वो कैसे बचा सकती हैं पेड़ पौधों को?
0: देखिए, इंडोर प्लांटिंग हमेशा एक अच्छा ऑप्शन होता है, हालांकि पहले मुझे इंडोर प्लांट्स अच्छे नहीं लगते थे, बट फिर वहां पे आते हैं पीपल बाबा, उन्होंने हमेशा ये बताया कि हर कोई मंजरी तुम्हारी तरह जाकर के सड़क के किनारे गड्ढा खोद के पेड़ नहीं लगा सकता है। तो अगर लोग इंडोर प्लांटिंग को ही चूज करना चाहते हैं तो लेट देम डू इट। आप सोचो कि अगर एक अपार्टमेंट में 100 फ्लैट्स हैं और 100 फ्लैट में हर व्यक्ति ने एक एक पौधा लगाया तो उतनी लीव्स, अगर एक पौधे में सिर्फ एक पत्ती भी है तो भी 100 नए पत्ते बने ना उस बिल्डिंग में, उस अपार्टमेंट में। तो इस तरीके से आप कुछ ऐसे बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट्स होते हैं, जैसे जो लोग नए नए गार्डनिंग या बागवानी शुरू करना चाहते हैं, सिंगोनियम एक बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा होता है इंडोर प्लांट के तौर पे, या उसके अलावा स्नेक प्लांट बहुत लो मेंटेनेंस होता है, तो इन 2 पौधों के साथ आप शुरुआत करें। धीरे धीरे आप स्नेक प्लांट लगा सकते हैं, रीका पाम लगा सकते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इन पौधों में पानी की थोड़ी कम जरूरत होती है, जैसे आजकल जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है उसमें भी 3 से 4 दिन 2 दिन 3 दिन के गैप पे उसमें पानी डालना होता है। विंटर्स के टाइम में हफ्ते में 10 दिन में एक बार पानी डालना होता है, तो उनकी वाटर की नीड बहुत कम होती है, आपका इनर स्पेस एकदम हरा भरा हो जाता है, और उतना लीफ कवर बढ़ने की वजह से घर के अंदर जो बाहर का पॉल्यूशन है उससे आप कंपेटिवली थोड़े प्रोटेक्टेड होते हैं। और अगर आपके पास बालकनी है या
1: गार्डन है,
0: छोटा सा भी गार्डन है, तो उसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनमें कुछ आप क्लाइंबर्स लगा सकते हैं। अपराजिता है, बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, आपने अपनी दीवारों पे लगा दिया, उसे टेम्परेचर भी रेगुलेट रहेगा, बड़े सुंदर उसमें बैंगनी, नीले और सफेद फूल आते हैं, वो पौधों से सुंदरता भी रहेगी। मधुमालती का पौधा है, वो लगाया जा सकता है। तो कुछ क्लाइंबर्स लगा दिए, कुछ सीजनल प्लांट्स लगा दिए, कुछ आपको लगता है कि थोड़ी साग सब्जियां आप ऑर्गेनिक खाना चाहते हो, आपने घर पे सब्जियां भी उगा ली।
1: जी, तो बस एक प्रयास की जरूरत है, कदम उठाने की जरूरत है, तो कारवा बनता जाएगा। जैसे कि प्रशंसा जी ने कहा कि 1 से 2, 2 से 3 और टीम बनती गई, तो ये बताइए कि आपकी टीम जो प्रशंसा जी है वो किस तरह से ये जो वाटर बॉडीज होती हैं, जो जल संग्रह के केंद्र होते हैं, सफाई कैसे करते हैं आप लोग उसकी?
2: मैम, उसमें हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को मिलाते हैं, जिसमें मैम ने जैसे बताया कि हम बच्चों को भी इनवाइट करते हैं, क्योंकि वो चीज़ अगर वो पहले से ही देखेंगे कि इसमें पानी में क्या क्या गिर रहा है तो वो खुद भी अपने घर में लोगों को रोकेंगे कि वो पानी में ना डालें। जैसे कि अभी हमने एक वाटर बॉडी को क्लीन किया था, उसमें पूजा का सामग्री सबसे ज़्यादा मिली थी, जिसमें चुन्नी है, पुराने कैलेंडर है, जबकि वो सब रिसाइकिल हो सकता है। तो हमने बच्चों को मोटिवेट किया कि अगर आप अपने घर में ही बोलें कि ऐसे कलेक्ट करके उसको रिसाइकलर्स को दें तो कम से कम वाटर बॉडी पॉल्यूट नहीं होगी। तो हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, वहाँ की नगर पालिका को भी इन्वाइट किया था हमने, तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया था कि जितना भी कूड़ा निकला वो अगले दिन साफ हो जाए। साथ में हमने वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स लोगों को भी इन्वाइट किया, जिससे कि वो अपने मैसेज सोशल मीडिया का यूज़ करके लोगों को मैसेज दें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वाटर बॉडीज़ को क्लीन रखें, क्योंकि सिर्फ वाटर बॉडी क्लीन होने से लोगों को लगता है कि हमारा क्या फ़ायदा, कहीं ना कहीं वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रही है। और अभी जिस तरीके से हम लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, वो समय दूर नहीं है कि जब हम वाटर क्वालिटी को लेकर परेशान होंगे, क्योंकि कंटामिनेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है वाटर पे, तो हमें उस चीज को अभी ध्यान रखने की जरूरत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कि पानी की भी कमी हो रही है और स्वच्छ पानी की भी, शुद्ध पानी की भी कमी हो रही है। ये बताइए कि आपकी जो टीम है उसमें महिलाएं कितनी

0: कितना सहयोग करती हैं आपको?
1: मैम, महिलाएं ऐसे देखा जाए तो आप एक गांव में मान सकती हैं तो 50 से 60 महिलाएं का ग्रुप बनता है, और उसमें वो लोग VWSC मेंबर्स होते हैं, जैसे विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी बोलते हैं, उसकी मेंबर हैं, तो उसमें एक्टिव रोल प्ले कर रही होती है, डिसीजन मेकिंग्स में भी अब आने लगी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने बच्चों को समझाती हैं कि कैसे पानी बर्बाद ना किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब वो सब्जियाँ और वो फल धोती हैं तो वो टब रख के धो रही हैं। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो हम अपने घरों में भी अपना सकते हैं। ब्रश करते वक्त टैप ओपन रहे, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो सबको समझने की जरूरत है कि कैसे हम वाटर को बचा सकते हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। वो महिलाएं अपने आस पड़ोस में भी कहीं गए, टैप ओपन है, पानी बह रहा है, तो वो टोक देती हैं तुरंत कि क्यों बहा रहे हो, जबरदस्ती पानी नहीं बहाना चाहिए।
0: जी जी, तो प्रशंसा जी जो काम कर रही हूँ प्रशंसनीय है, क्योंकि वो महिलाओं को ग्रुप में जोड़ कर और सिर्फ पानी बचाने की ही मुहिम नहीं चला रही है, पानी को साफ स्वच्छ कैसे रखा जाए और जो पानी की संग्रहण स्थल हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, वो भी साफ सुथरे रहें और उनको पुनर्जीवित करने का भी काम कर रही हैं। और जो महिलाएं होंगी या जो लोग होंगे उस क्षेत्र के, बहुत खुश होते होंगे कि एक तालाब, एक बावड़ी, एक पोखर फिर से जीवित हो गई।
1: बिल्कुल मैम, और उसमें हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर दें, आसपास की छतों का पानी हम वो कुओं में उतारने की कोशिश करते हैं, बट हम ध्यान रखते हैं कि हम उसको फिल्टर चैम्बर के ले जाते हुए ही डालें, क्योंकि वरना वाटर कंटामिनेशन हो जाएगा। और हम बच्चों के साथ पानी की पाठशाला भी करते हैं, जिसमें हम उनको ये रियलाइज करवाते हैं, सेंसिटाइज कराते हैं कि अभी आपको जो नल खोल के पानी मिल रहा है वो बहुत दिन नहीं है, कि अगर आपने फ्यूचर के लिए नहीं बचाया तो पानी खत्म हो जाएगा।
0: जी, और पानी खत्म ना हो, पेड़ पौधे खत्म ना हो, इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। और मंजरी जी, प्रशंसा जी तो काम कर ही रही हैं। चलते चलते मंजरी जी और प्रशंसा जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली होनी चाहिए हम सबकी, मिशन लाइफ का जो उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगी अपने शब्दों में हमारी सखियों से?
2: जैसा प्रशंसा जी ने बताया था कि हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ हमारे लिए छोड़ा जिसका हम अभी तक उपभोग कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हम भी कुछ ऐसा छोड़ जाएं। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक्ट्स एंड बिहेवियर्स हैं जिसमें परिवर्तन ला करके हम ये बदलाव ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिंपल सी चीज़ है कि एक समय में रोटी, कपड़ा और मकान को हम बेसिक नीड माना करते थे, आज के समय में रोटी भी बहुत सी जगहों पे हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं, रोटी की बजाय बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं। उसके बाद आते हैं कपड़े, और कपड़े और फैशन के नाम पे इतनी चीज़ें खरीद रहे हैं, इतना सारी चीज़ें इकट्ठी कर दे रहे हैं, और ये हमें पता ही नहीं होता है कि एक कपड़े को वॉश करने में, तैयार करने में कितने हज़ार लीटर पानी वेस्ट होता है, और अगर पानी वेस्ट हो रहा है मतलब दोहन हो रहा है उसका। मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए हम फैशन आज के मोमेंट में प्लेजेंट बना दें, बट फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। तो छोटी छोटी सी चीजें, आरओ वाटर को आप रियूज कर सकते हैं अपने घर में।

0: वेस्ट हो रहा है, मतलब दोहन हो रहा है उसका। मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए हम फैशन आज के मोमेंट में प्लेजेंट बना देंगे बट फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। तो छोटी छोटी सी चीजें, आरओ वाटर को आप रीयूज कर सकते हैं अपने घर में, वाटर बॉटल्स में रीयूज करके उन्हें मनी प्लांट जैसा पौधा, सिंगोनियम जैसा पौधा लगा के डाल सकते हैं, जिससे आपका घर के अंदर की एयर प्योरीफाइड रहेगी। जो आरओ का वाटर है उसको प्रिजर्व करके हम उसे झाड़ू पोछा, बर्तन, सब्जियां धुलना या फिर पौधों में डालना, रीयूज करने का काम कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी सोच बड़ी करनी पड़ेगी।
1: और प्रशंसा जी, आप क्या कहेंगे?
2: मैं इसमें जैसे मैम ने बताया कि रीयूज पे फोकस करूंगी, आप उस पानी को कैसे दोबारा उपयोग कर सकते हैं, जैसे फल की सब्जियों को धोया वो पानी को उपयोग कर लीजिए। आपका जहां लीकेज है, हमको वो दिखता जरूर बूंद बूंद है पर वो बहुत पानी हो जाता है। अगर आप एक बकेट रख के मेजर करें कभी तो वो कितना लीटर हो जाता है आपको भी अंदाजा नहीं है। तो अपने छोटे छोटे लीकेजेस को सही करवा लें जल्द से जल्द, और कहीं भी टैप ओपन है तो उसको बंद करने का प्रयास करें, क्योंकि पानी सबका है। जरूरी नहीं कि मेरे घर में बह रहा है और आपको दिख रहा है पर आप बंद नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि पानी सबका है। तो इसमें आप मुझे कह सकते हैं कि आपके घर का पानी बह रहा है, बंद करें। बहुत जगह मैं देखती हूँ कि पानी की टंकी भर जाती है पर वो बंद नहीं होती है। तो मैं लोगों से कहूंगी कि एक छोटा सा अलार्म आता है, आपकी पानी की टंकी भर गई है ऐसा बोलता है, तो प्लीज वो छोटी सी अलार्म लगा लें, जिससे आपके जब पानी टंकी भर जाए, आपका यूज के लिए हो जाए पर्याप्त, तो आप बंद कर सके। आपके पास तो है पर जिसके पास उपलब्ध नहीं है वो उसको भी मिल सके, क्योंकि पानी सबका है।
1: जी, जैसा कि प्रशंसा जी ने कहा कि पानी सबका है, वैसे ही ये पेड़ पौधे जंगल सबके हैं, प्रकृति हम सबकी है, और इन सबका जो संरक्षण करने का दायित्व वो भी हम सबका ही है। और हम छोटे छोटे प्रयास करेंगे, एक एक कदम उठाएंगे तो पर्यावरण अनुकूल हमारी जीवन शैली होगी, हमारी सोच में बदलाव आएगा, तो प्रकृति जरूर हंसेगी, मुस्कुराएगी, और हम उम्मीद के बीज आज बोएंगे और अमृत जैसा पानी आज बचाएंगे, तो कल की जनरेशन आएगी जो हमारा भविष्य है वो भी हरा भरा, हंसता मुस्कुराता, कल कल करता हुआ रहेगा। तो आप दोनों, मंजरी उपाध्याय जी और प्रशंसा गुप्ता जी, हमारे स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी विचार परक बातें हमसे साझा की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी हम सुन रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस पर बातचीत, बोएं उम्मीद के बीज बचाएं अमृत सा पानी, जिसमें प्रतिभागी थी मंजरी उपाध्याय और प्रशंसा गुप्ता, और बातचीत कर रही थी ममता उपाध्याय जी। साधना, पेड़ पौधों की बात करते करते मुझे तो भाई पिछले साल की याद आ गई, जब मैं हिल स्टेशन घूमने गई थी।
4: याद है मुझे, फोटो भी दिखाई थी तुमने। सुंदर पर्वत और शाम में धुएं जैसा कोहरा, उस फोटो को देखकर तो बस यही गीत मुझे याद आता था।
3: कौन सा गीत?
4: हाँ, बताना क्या है, खुद ही सुन लो।

0: गीत तो बहुत ही मधुर था साधना, लेकिन देखो भाई भूल नहीं जाना, प्रोग्राम के बाद हम साथ ही लंच करेंगे। पता है आज मैं 3 तरह की सब्जी बनाकर लाई हूँ।
1: तब तो तुम्हें अच्छा खासा टाइम लगा होगा आभा बनाने में ना। तो क्या तुम सुबह 4 बजे उठ गई थी?
0: नहीं नहीं, टाइम नहीं लगा और मैं 4 बजे भी नहीं उठी थी। वो एक्चुअली साधना, मैंने कल सुबह तो भिंडी बनाई थी, वो बच गया था। और परसों मैंने लौकी की सब्जी और पनीर की सब्जी बनाई थी, लेकिन परसों रात में ही बनाई थी तो वो भी बच गए थे। तो वो सब मैं लेकर आई हूँ।
1: देखो आभा, भले ही एक डिश खाओ पर ताज़ा खाना कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि सस्टेनेबल फूड सिस्टम के अनुसार सतत खाद्य प्रणाली सुरक्षित भोजन लाए खुशहाली, समझी?
0: मुझे लगा कि खाना तो मैंने फ्रिज में रख दिया था और वो ख़राब भी नहीं हुआ था, इसलिए मैंने सोचा ताज़ा क्या बनाना है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो मैंने तो सोचा कि इस खाने को खाना सही है, इसलिए मैं ले आई। और परसों पनीर बना था तो क्या हुआ, लेकिन पनीर ख़राब नहीं हुआ था साधना, इस बात का मैं तुम्हें बिल्कुल दावा दे सकती हूँ, गारंटी दे सकती हूँ भाई।
1: अब तुम्हें पता है डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं और जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे खाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जल्द से जल्द कंज्यूम कर लेना चाहिए। पता है क्यों?
0: क्यों?
1: क्योंकि इनमें जो माइक्रोबियल ग्रोथ होता है ना, वो सबसे जल्दी होता है।
0: ये तो बात तुम्हारी सही है, लेकिन देखो पके खानों में भले मैंने लापरवाही कर दी हो, लेकिन जब मैं

0: पैक्ड फूड आइटम खरीदती हूँ ना, तो उस वक्त मैं एक्सपायरी डेट का खास ख्याल रखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि सही समय पर खरीद लूँ उसे और सही समय पर कंज्यूम भी कर लूँ।
1: बिल्कुल आभा, और देखो हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे अपने सखियों के साथ, बहुत सारी जानकारियाँ साझा कर रहे थे, लेकिन अब जो घड़ी है वो हमें इशारा कर रही है कि हमारे कार्यक्रम का जो समय है वो समाप्ति की तरफ है। तो अब हम अपने सखियों से अनुमति चाहेंगे कि अपने सखी साधना
0: और अपनी सखी आभा को इजाज़त दें। नमस्कार,
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अपराजिता। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फौजी साथियों का अपना कार्यक्रम जवानों के लिए।

फौजी साथियों जय हिंद। जवानों के लिए कार्यक्रम में मैं पूजा विमल करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

जवानों के लिए कार्यक्रम में आप जानते हैं कि हम आपके पत्रों द्वारा जो भेजे गए फिल्मी गीतों की फरमाइश है उसे पूरी करते हैं, और ख़ास तौर से हम ये आशा करते हैं कि जो हमारे फौजी साथी हैं वो जो गीत सुनना चाहते हैं उसके लिए हमें पत्र लिख भेजें, और आप सभी भी इसमें अपने पत्रों को शामिल करवा सकते हैं, अपने गीतों की फरमाइश हम तक भेज सकते हैं। तो हमारे कार्यक्रम का पता आप सभी नोट कर लें, कार्यक्रम जवानों के लिए द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन संख्या 226001। और चलिए इसी बात के साथ कार्यक्रम का करते हैं आगाज, और पहला पत्र हम उठा ले रहे हैं। इसे हमें लिख भेजा है एडवोकेट वारिस अली खान, शहबाज खान, शेख खान, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद समीर खान, शकील अहमद और बेबी नुसरा खान ने। आप सभी ने ये पत्र हमें संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से लिख भेजा है और सुनना चाहा है फिल्म मैंने प्यार किया का गीत, जिसे गाया है एसपी बाला सुब्रमण्यम ने, संगीत राम लक्ष्मण का और बोल हैं देव कोहली के। तो आपकी फरमाइश आपके रेडियो सेट तक।

जवानों के लिए कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम तक लिख भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी से KR साहू, भाटापारा से हिमकेश्वर, लिवई से गुलाब दास और दंतरेगी से भागवत वर्मा ने। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म दिल का क्या कसूर का गीत। आवाज साधना सरगम के संगीत नदीम श्रवण का बोल समीर।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से और अगली फरमाइश अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर की। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म दिल है कि मानता नहीं का गीत, जिसे गाया है कुमार सानू और अनुराधा पौड़वाल ने। फैज़ अनवर के बोल हैं, संगीत है। आगे बताते हैं आपको थोड़ी देर में।

दिल है कि मानता नहीं का गीत आप सुन रहे हैं। फैज़ अनवर के बोलों को सुरों से सजाया है नदीम श्रवण ने। आवाज़ें आप पहचान गए होंगे, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की।

0: कार्यक्रम का आखिरी गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म साजन से अनुराधा पौंडवाल और कुमार सानू की आवाजों में नदीम श्रवण के बोल, समीर के बोल और नदीम श्रवण का संगीत।
1: कितना पागल है
0: सुनने की फरमाइश कैंट वाराणसी से अर्चना और भास्कर की।

हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से दोपहर समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: A detailed assessment.
3: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर

0: कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने आरबीआई के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जनसंबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6.40 करोड़ पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6.40 करोड़ वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40 लाख से 60 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉ. मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे। यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया।

0: श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
1: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं, और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमरीका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
2: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर भोगी है, दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर

0: प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। कार्यक्रम में आज सुनिए सफलता की कहानी क्रम में गन्ना उत्पादन के बारे में। सैयद कल्बे हसन से बातचीत की है डॉक्टर सुशील कुमार राय ने।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, सफलता की कहानी क्रम में आज हमारे साथ हैं लखीमपुर खीरी जनपद के पसगवां ब्लॉक के औरंगाबाद के मिठास के लाल सैयद कल्बे हसन साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। कल्बे हसन साहब, ये बताएं कि इस समय मिठास का रकबा कितना है आपका?
3: नमस्कार। संयुक्त परिवार में हम लोग खेती कर रहे हैं और गन्ने का रकबा हमारा करीब 35 एकड़ है।
2: संयुक्त परिवार का?
3: जी, संयुक्त परिवार का।
2: तो कौन कौन सी वैरायटी लगाते हैं?
3: देखिए, गन्ने की जो नवीनतम प्रजातियां हैं, कोशा 18231, कोशा 70231, कोलक 16202, कोलक 14201 और कोसे 13452, ये उसकी मिड लेट वैरायटी है। इसके सिर्फ को 15033, कोशा 13235, ये प्रजातियां हमारे फार्म पे हैं।
2: यानी 7-8 प्रजातियां आपके खेत में लगी हैं।
3: जी,
2: क्या खासियत महसूस कर रहे हैं इन नई प्रजातियों का?
3: देखिए, नई प्रजातियों में तो 0118 प्रजाति है, उस पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो वो भी अच्छा उत्पादन दे रही है। इसके अतिरिक्त शाहजहांपुर गन्ना शोध की कोशा 18231 प्रजाति है और लखनऊ की कोलक 16202, ये प्रजातियां अच्छा हमें उपज भी दे रही हैं, इनकी पेड़ी भी अच्छी हो रही है और बावक भी अच्छी हो रही है।
2: तो इस समय गन्ने की फसल में कौन सा काम चल रहा है?
3: देखिए, गन्ने की फसल में इस समय हम लोगों की जो सैफसली वाले खेत है जिनमें हमने लाही ले ली है, उसमें हम लोग मिट्टी चढ़ाने का काम कर रहे हैं और जून का महीना चल रहा है। इस टाइम गन्ने में कल्लों के काफ़ी बनते हैं इस टाइम, और जितने ही कल्ले बनेंगे उतने ही गन्ने ज़्यादा बनेंगे और गन्ने की उपज भी ज़्यादा होगी। तो इसमें हमें यूरिया का छिड़काव करना है, इसके अतिरिक्त हमें स्प्रे भी करना है, जो हमारे NPK है और हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका हम पर्याप्त नमी की दिशा में हम स्प्रे भी कर रहे हैं, तो जिससे हमारी फसल की पत्तियों को सीधा उसका भोजन मिल रहा है और सीधा उसको लाभ मिल रहा है, तो गन्ने की जड़ों में भी विकास हो रहा है और ऊपर गन्ने में जो ग्रोथ है हमारी वो बढ़ रही है गन्ने में।
2: तो शरदकालीन गन्ना का रकबा अधिक है या बसंतकालीन?
3: नहीं, बसंतकालीन का ज़्यादा है, लेकिन शरदकालीन का रकबा हमारा लगभग 1/4 हमारा रकबा जो कुल है उसका 1/4 रकबा हम शरदकालीन में रखते हैं
2: और 3/4
3: बसंतकालीन में। जी,
2: तो गन्ने की फसल की बुआई से लेकर के खेत की तैयारी से लेकर के और फसल की कटाई तक
3: जी
2: कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं कि आपको पैदावार अच्छी मिले?
3: देखिए, प्रमुख रूप से हम मृदा परीक्षण करा लेते हैं हर 2-3 साल पे, ताकि हमारे भूमि में हमारी उसमें क्या क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या क्या उसमें एनपीके नाइट्रोजन कितनी है, फास्फोरस कितनी है, पोटाश कितनी है, कार्बन की क्या पोजीशन है, तो वो हम करा लेते हैं। इसके बाद हम खेत के समतलीकरण, हम जो हमारे लेवलर आए हुए हैं जो लेजर वाले, उससे हम लेवल करा लेते हैं ताकि पर्याप्त पूरे खेत में पानी पहुँचे। इसके अतिरिक्त हम भूमि उत्पाद पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इतना रासायनिक खादों का जो प्रयोग बढ़ गया है तो उसकी वजह से भूमि का उपचार बहुत आवश्यक हो गया है, तो भूमि के लिए हम जो जैव उर्वरक हैं, जैव नियंत्रक हैं फसल की सुरक्षा के लिए, वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त बीज का चयन, बीज में जो हमारा जिसमें भी रोगी रोग वाले बीज हैं उनको हटा देते हैं, उनको हम कतई नहीं लेते हैं, और 1 से 2 आंखें टुकड़ों को हम बुआई पे जोर देते हैं। इसके अलावा MTP मैकेनिकल ट्रेंच प्लांटर, उससे हम बुआई कराते हैं, या हमारे ट्रेंच ओपनर, इनसे बुआई कराते हैं, क्योंकि अब लेबर की समस्या हो गई है, हम चाहते हैं अधिक से अधिक काम हमारा मशीनों से किया जाए।
2: और आसान भी है?
3: आसान भी है और उसमें समय की भी बचत होती है और
2: लागत की भी?
3: लागत भी हमारी कम हो जा रही है, कम लागत में अधिक उत्पादन

0: हम ले रहे हैं तो निश्चित ही तभी गन्ने में हमको कुछ फायदा होगा।
1: अंतरण क्या रखते हैं लाइन से लाइन की दूरी?
0: देखिए लाइन की दूरी हम अगर समय पर बुआई कर रहे हैं तो 4 फीट की हम दूरी रखते हैं। अगर हमारी बुआई लेट हो रही है, गेहूं काट के अगर हम बो रहे हैं तो थोड़ी दूरी हमको कम करना पड़ती है,
1: यानी 2.5 से 3 फीट।
0: 2.5 से 3 फीट वैसे हम 4 फीट कर रखते हैं क्योंकि पर्याप्त उसमें हवा का भी क्रॉस हो जाती है और प्रॉपर धूप भी मिलती है और पानी भी जो लगाते हैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगता है लेकिन जितनी आवश्यकता अनुसार पानी उसमें लगा सकते हैं हम लोग।
1: आपने कहा कि सफसली खेती भी करते हैं गन्ने की फसल के साथ, तो शरदकालीन में कौन कौन सी फसल लेते हैं और बसंतकालीन में?
0: शरदकालीन में अधिकतम मैं जो है सरसों की पीली सरसों की खेती को मैं बुआई करता हूँ तो उसमें मुझे अधिक लाभ मिलता है और खेत के लिए भी फायदेमंद रहता है और हमारे घर की आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं और 20 से 25% जो हमें अधिक लाभ मिल जाता है तो उससे भी हम गन्ने में लागत लगाने में हमको काफ़ी लाभ मिलता है। इस समय जो है हम गन्ने में जो मूंग है इस सब का गन्ने के साथ बुआई कर लेते हैं
1: बसंतकालीन में
0: जी।
1: तो इस समय जैसे आपने कहा कि जो भी उर्वरक की मात्रा है उसकी अंतिम डोज आप इस महीने तक देंगे, मानसून के पहले तक देंगे?
0: जी मानसून के पहले तक। इस समय हमको विशेष ध्यान ये देना है कि पर्याप्त नमी हमको बनाए रखना है खेतों में।
1: आगे बधाई कब कब करते हैं गन्ने में?
0: देखिए बधाई अब जुलाई में बधाई एक होगी और गन्ने की बढ़वार के हिसाब से उसे जब पहली बधाई 4-5 फीट का गन्ना हमारा हो जाता है तो बधाई पहली कर लेते हैं। इसके अलावा जब बढ़वार हो जाती है तो हम अगस्त में उसकी बधाई करते हैं,
1: दूसरी बधाई
0: फिर तीसरी बधाई हम कैंची नुमा करते हैं जब गन्ना वही सितंबर में हम उसमें। तो गन्ना बधाई करना ही बहुत आवश्यक है, गिरता है गन्ना तो चूहे काटते हैं उसमें नुकसान करते हैं और गन्ना जब गिर जाता है तो उसमें जमाव शुरू हो जाता है जो हमारी आँखें होती हैं, गन्ने का वजन भी कम होने लगता है तो इसलिए बधाई बहुत आवश्यक है और मिट्टी चढ़ाना बहुत आवश्यक है। मिट्टी अगर चढ़ाएंगे तो हमारी जड़ों का भी अच्छा होगा और गन्ना गिरेगा नहीं, गन्ना
1: मजबूती
0: बनी रहेगी उसमें और नाली जो बन जाती है उसमें पानी लगाने में हमको आसानी रहती है, कम पानी में हमारा अधिक खेत सिंचाई हो जाती है उसमें।
1: कल्बे हसन साहब, चूंकि लगातार आप गन्ना उत्पादन से जुड़े हैं तो एकड़ पीछे गन्ने की लागत कितना गिरती है, उत्पादन एकड़ में कितना ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना?
0: देखिए लगभग 1 एकड़ में हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो करीब 60 से 70 हज़ार रुपये हमारा लग जाता है उसमें पर एकड़ में, लेकिन जो हमारा उत्पादन है हमारा जैसे उसमें
1: 500-600 कुंटल
0: प्रति एकड़ जी तो ये हम से निकाल लेते हैं जो हमारे जिनमें हम विशेष ध्यान देते हैं। सामान्यतः उपज जो है वो उतनी नहीं हो पाती है लेकिन जो हम कम्पिटिटिव जो हम प्लाट तैयार करते हैं उनमें हमें अच्छा उत्पादन मिल जाता है,
1: यानी जो विशेष देखभाल करते हैं। कल्बे हसन साहब, किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9839255252 9839255252 9839255252 98 39 25 52 52।
1: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफलता की कहानी के बारे में?
0: बस सफलता कहानी में यही किसान भाइयों को अब तकनीकी खेती करना पड़ेगा, मशीनीकरण को अपनाना पड़ेगा तभी हम उसमें कुछ मुनाफा कमा पाएंगे। अगर हम ज़्यादा ज़्यादा हमारा लेबर लगता रहेगा तो हमें उतनी मुनाफा नहीं होगा और हमें अपनी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसको बनाए रखना पड़ेगा। भूमि हमारी जो धरती माता है इसमें हमको प्रॉपर जैसे हम ट्रेस मल्चिंग करें पत्ती को उसी में थोड़ा डिकोपोजर से, तो अक्सर अब किसान भाई पत्तियां समेट के ले जाते हैं लोग तो उसमें बिल्कुल ज़मीन हमारी बेकार होती जा रही है। तो हमें अवशेषों को बचाना है, ग्रीन जो हमारी खाद है ढांचे की उसकी हमें बुआई करना है, चीनी मिल कहीं इसमें अनुदान भी देती हैं तो ये सब भूमि की सुरक्षित करना है, भूमि का उपचारित करना है, बीज को उपचारित करना है और प्रॉपर एक मैकेनाइज ढंग से हमको खेती करना है ताकि हम जितनी लागत कम से कम कर लेंगे, उत्पादन जितना ज़्यादा लेंगे वही हमारा मुनाफा होगा। इस समय सर्वे का कार्य चल रहा है हमारे किसान भाई और सर्वे में विशेष ध्यान रखिए किसान भाई अपने आप स्वयं सर्वे कराएं क्योंकि गन्ने की प्रजातियाँ जो हैं उनके पास शीघ्र प्रजातियाँ हैं उसके प्रॉपर सर्वे कराएं क्योंकि बाद में सर्वे जब हो जाता है किसान मौजूद नहीं होते बाद में शिकायतें आना शुरू हो जाती हैं कि हमारा छूट गया हमारा ये वैरायटी थी। तो किसान भाई सजग रहे इस समय बहुत गन्ने की खेती के लिए, ये भी महत्वपूर्ण अंग है हमारी जो गन्ने की जो सप्लाई करते हैं चीनी मिलों को, तो किसान भाई सजग रहे।

0: अवश्य कराएं और तकनीकी ढंग से खेती करें।
1: सैयद कल्बे हसन साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और जो आपकी सफलता की कहानी थी कि आप गन्ना उत्पादन से जुड़े हैं और पिछले कई दशकों से लगातार आप मिठास की फसल उगा रहे हैं, जो आपका तजुर्बा था उसको आपने अपनी सफलता की कहानी में सुनाया और किसान भाई बहन आपसे सीख लेंगे। आज कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी सफलता की कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: विज्ञान और किसान कार्यक्रम में आज आप सफलता की कहानी क्रम में गन्ना उत्पादन के बारे में सुन रहे थे। सैयद कल्बे हसन से बातचीत की डॉक्टर सुशील कुमार राय ने। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। प्रसार भारती द्वारा कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी हेतु नोटिस इनवाइटिंग प्रोग्राम प्रपोजल NIPP

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। प्रसार भारती द्वारा कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी हेतु नोटिस इनवाइटिंग प्रोग्राम प्रपोजल NIPP की अंतिम तिथि 31 मई 2026 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें prasarbharti.gov.in/NIPP/ अथवा akashvani.gov.in/files/NIPP.PDF। वेबसाइट का पता एक बार फिर से https://prasarbharti.gov.in/NIPP/ या फिर akashvani.gov.in/files/NIPP.PDF। सूचना समाप्त हुई। श्रोता, आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आज रात्रि 11:10 पर आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को। विषय होगा महिला सशक्तिकरण। आज रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष कार्यक्रम होगा। इसमें आप सुनेंगे प्रोफेसर रामलखन सिंह से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की भेंटवार्ता, विषय जलवायु के लिए वर्तमान समय। अंग्रेजी कार्यक्रम में 7:31 पर सुनिएगा एक इंटरव्यू IIT रुड़की के गोल्ड मेडलिस्ट मीना अग्रवाल के साथ। इनसे बातचीत की है डॉक्टर शिबा राकेश ने। विषय होगा वाटर एवरीवेयर, वी स्टिल नीड मोर टू ड्रिंक। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा पंडित राजेंद्र प्रसन्ना का राग मारवा पर बांसुरी वादन। सुगम संगीत में आज आप आनंद लेंगे अमृता नंदी के गाए कुछ गीत और भजन का।

आज शाम युवा तरंग में सुनिएगा डॉक्टर राजीव कुमार सिंह की वार्ता बाल श्रम उन्मूलन। समय होगा शाम 5:10। खेती किसानी कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 6:50 पर सुनिएगा किसान डायरी, कृषि समाचारों पर आधारित। आलेख एवं वाचन अमरेंद्र सहाय अमर, संपादन डॉक्टर सुशील कुमार राय।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम लोक माधुरी। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मीनू बाजपेयी के गाए कुछ अवधि लोक गीत। आरंभ कर रहे हैं

लोक माधुरी कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मीनू वाजपेयी के गाए कुछ अवधी लोकगीत, और लीजिए अब इनके स्वर में सुनिए ये नकटा।

लोकमात्री कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे मीनू बाजपेयी के गाए कुछ अवधि लोक गीत। संगत करने वाले कलाकार हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर मुकेश कुमार नाल, सत्यम शिवम सुंदरम सिंह, साइड रिदम गौरव गुप्ता। अब आज का लोकमात्री कार्यक्रम समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी लखनऊ है। इस समय दिन के 3 बजे हैं। अब हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय होने को है शाम के 5 और हम हाजिर हैं सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें सड़क, बिजली और उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री ने ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमन भी जाएंगे। असम मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने आज घोषणा की है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण

0: अभियान की सफलता का प्रतीक है। भारत के यात्री वाहन बाजार में मई में लगभग 44 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को भी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: After a detailed assessment,
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: At 5.25%.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सूरत में विकास परियोजनाओं से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित सूरत के मेरे प्यारे भाई और बहनों, केम छो बदा अने आप लोग सूरत मजा माने तू शू लई आयो जो भाई धन्यवाद दोस्त सरस मजा चित्र बनाई देते हैं जरा एसपी जना लोग भाई के भेंट आप मांगे थे।
0: अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जापान में पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 4-1 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय है शाम के 5:05। ये वक्त हम आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले शेष और कल प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात 11:10 पर सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला। आज का विषय है महिला सशक्तिकरण। उद्बोधन आप सुनेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का। युवा तरंग कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:20 से। नई उड़ान कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा शाम 5:45 पर। आज के कार्यक्रम में सुनिएगा फीचर खामोश जंगलों की पुकार, आलेख डॉक्टर उमा शंकर सिंह का, कथन आरती एवं आनंद का। लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनिएगा वार्ता गांवों में पोषण सुरक्षा, वार्ताकार शिप्रा यादव। कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी आप सुनेंगे आज शाम 6:50 से कार्यक्रम खेती किसानी में। अंग्रेजी कार्यक्रम में आज शाम 7:31 पर सुनिएगा एक इंटरव्यू वाटर एवरीवेयर वी स्टिल नीड मोर टू ड्रिंक एन इंटरव्यू विद IIT रुड़की गोल्ड मेडलिस्ट

फॉर्मर डायरेक्टर WSSO मीना अग्रवाल, और ये इंटरव्यू लेंगी डॉक्टर शीबा राकेश। हिंदी कार्यक्रम में आज रात 8 बजे आप सुनेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष भेंटवार्ता जलवायु के लिए वर्तमान समय, प्रोफेसर राम लखन सिंह से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की भेंटवार्ता। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज रात 10:30 पर सुनिएगा पंडित राजेंद्र प्रसन्ना का राग मारवा में बांसुरी वादन, और सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज रात 8:10 पर आप सुनेंगे अमृता नंदी के गाए भजन एवं गीत। श्रोताओं, आइए अब आपको कल प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। राष्ट्रपत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती आप सुनेंगे कल रात 9:30 से। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात 10 बजे से। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। रात 11:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित एक विशेष कार्यक्रम, सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला। कल के कार्यक्रम में विषय होगा युवा शक्ति। उद्बोधन करेंगे डॉक्टर मनसुख मांडविया, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री। कल प्रातः 6:05 पर कार्यक्रम होगा कृषि चर्चा। कल के कार्यक्रम में सुनिएगा धान उत्पादन की उन्नत तकनीक के विषय में जानकारी। सुविचार आप सुनते हैं प्रातः 6:10 से। श्री रामचरितमानस गान का प्रसारण समय होगा प्रातः 6:45 पर, और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी नमक, आलेख एवं वाचन नीना सोनकर के। श्रोताओं, आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा कल सवेरे 7:10 पर। कल के कार्यक्रम में आप सुनिएगा जल में जीवन है इस विषय पर आधारित कार्यक्रम आज सुबह। ये कार्यक्रम सुनिएगा सवेरे 7:31 पर। जिले की हलचल आप सुनते हैं सवेरे 9:15 पर, और उर्दू कार्यक्रम के तहत कल सवेरे 9:30 से समाप्त फरमाइएगा बशीर बद्र पर खसूसी प्रोग्राम उजाले उनकी यादों के, तहरीर आसिफ इकबाल की। घर आंगन, ये कार्यक्रम आप सुनिएगा कल दोपहर 1:15 पर। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में कल दोपहर 2:30 आप सुनेंगे नए फलदार वृक्ष लगाने की योजना, इस विषय पर डॉक्टर अनिल कुमार दुबे से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता। युवाणी कार्यक्रम होगा कल शाम 5:10 पर, और नई उड़ान कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 5:45 पर। लोकायतन कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर सुनिएगा ग्रामीण उद्यम से आत्मनिर्भर गांव, और खेती किसानी के कार्यक्रम में कल शाम 6:50 पर आप सुनेंगे धान की फसल में समन्वित खरपतवार प्रबंधन, इस विषय पर भेंटवार्ता। और विज्ञान जगत के कार्यक्रम आप सुनेगा कल शाम 7:31 से। श्रोताओं, ये थे आज के प्रसारित होने वाले शेष और कल प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने सात साथियों के साथ जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की

0: चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गांव के निवासी हैं और ये छात्र हैं, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं सभी किसी न किसी विद्यालय में 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहाँ से प्रेरणा मिली आपको?
1: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचरा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी हुई। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वही लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी उस वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पीते थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
0: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसी प्रेरणा आपको आई कहां से और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
1: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
0: आप जब उस समय नदी की स्थिति उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
1: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग आकर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
0: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
1: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस में डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
0: इस अभियान में गाँव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
1: गाँव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गाँव वाला हमारे साथ नदी में नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
0: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
1: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
0: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
1: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
0: आपको अभी क्या लगता है, इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
1: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
0: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
1: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
0: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
1: हाँ जी।

0: जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखें, जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
1: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: हम यही कहना चाहेंगे, जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
1: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
0: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे, थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए। धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई। क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगे।
1: क्या ये आपको उपकरण से, जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
0: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए। और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं, जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
1: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा, और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
0: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया, जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
1: आप जिस तरह से यह कार्य करके यह साबित किए बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
0: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा, जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन, ये सब पेड़ बैठाएंगे।
1: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
0: निश्चित सी बात है, सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का अभी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद का पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है, और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
1: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युवा तरंग।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम युवा तरंग में, जिसे लेकर उपस्थित हैं आज आपके दो रेडियो दोस्त, मैं अनुष्ठा
1: और मैं दिव्यांशु। दोस्तों, ढल गया दिन, हो गई शाम, बच गया है 5:20 और शुरू हो चुका है आपका युवा तरंग, जो हर शाम शुरू होता है इसी जगह पर।
0: दोस्तों, आज का कार्यक्रम एक ऐसे विषय को समर्पित है जो हम सभी की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। चाहे हम किसी भी उम्र के हों, किसी भी शहर या गांव में रहते हों, पर्यावरण का प्रभाव हम सभी पर पड़ता है। इसलिए आज का हमारा मुख्य विषय है विश्व पर्यावरण दिवस, जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है।
1: दोस्तों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी, हरियाली और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण केवल सरकारों की नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक, कचरा और घटते वन आज पूरी दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में युवाओं की भूमिका और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। दोस्तों,
0: जी हाँ, और जिस तरह एक स्वच्छ और हरा भरा पर्यावरण हर इंसान का अधिकार है, उसी तरह हर बच्चे का अधिकार है एक सुरक्षित बचपन, शिक्षा और उज्जवल भविष्य। आइए विश्व पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर हम एक ऐसे समाज का निर्माण और संकल्प लें जहां प्रकृति भी सुरक्षित हो और बचपन भी। पर्यावरण केवल पेड़ पौधों और नदियों से नहीं बल्कि हमारे समाज से भी बनता है। जब हर बच्चे को शिक्षा और सम्मान का अवसर मिलता है और बाल श्रम जैसी बुराई खत्म होती है, तभी हम वास्तव में एक स्वस्थ और सुंदर पर्यावरण की कल्पना कर सकेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा अनुष्ठा। तो दोस्तों, चलिए अब सुनते हैं एक वार्ता जिसमें डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने बाल श्रम उन्मूलन के बारे में कई अहम बातें बताई हैं। तो चलिए सुनते हैं ये वार्ता।
2: बाल श्रम की समस्या एक वैश्विक समस्या है जिससे भारत भी अछूता नहीं है, और भारत देश के समक्ष बाल श्रम की समस्या एक बड़ी चुनौती है। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। समस्या के विस्तार और गंभीरता को देखते हुए एक सामाजिक आर्थिक समस्या मानी जाती है, जो चेतना की कमी, गरीबी और निरक्षरता से जुड़ी हुई है। इस समस्या के समाधान हेतु सभी वर्गों के द्वारा सामूहिक किए जाने वाले प्रयास की आवश्यकता है। बात वर्ष 1979 की है, जब भारत सरकार ने बाल मजदूरी की समस्या को और उससे निजात दिलाने हेतु उपाय करने के लिए एक सुझाव समिति का गठन किया, जिसे गुरुपाद स्वामी समिति के नाम से जाना जाता है। समिति ने इस समस्या का विस्तार से अध्ययन किया और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। इस समिति ने यह देखा कि जब बात बाल श्रम की होती है, तो बाल श्रम की समस्या को हटाना तब तक संभव नहीं होगा जब तक इसके लिए सम्यक सामूहिक प्रयास न किए जाएं। ऐसी स्थिति में समिति ने सुझाव दिया कि खतरनाक क्षेत्रों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया जाए और अन्य क्षेत्रों में कार्य के स्तर में सुधार लाया जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि कार्यरत बच्चों की समस्याओं को सुलझाने के लिए और उन समस्याओं से निपटने के लिए एक बहुआयामी नीति बनाए जाने की जरूरत है। गुरुपाद समिति की सिफारिशों के आधार पर बाल मजदूरी प्रतिबंध एवं विनिमय अधिनियम 1986 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा कुछ विशिष्टकृत खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाने हेतु सिफारिश की गई थी, और इस कानून के अंतर्गत उन सिफारिशों को अमली जामा पहनाया गया, और इसके लिए ही वर्ष 1987 में राष्ट्रीय बाल मजदूरी नीति तैयार की गई। और इस नीति के तहत यह प्रयास किया गया कि ऐसे कार्य जो जोखिम भरे व्यवसायों से संबंधित हैं, उनको बाल नियोजित होने से रोकने का हर संभव प्रयास सरकार के द्वारा किया जाए। दशकों से भारत बाल श्रम के नासूर को ढो रहा है। देश का बचपन अपने सुनहरे सपनों की जगह कभी कभी किसी के घर को चमका रहा होता है, किसी के बोझ को कांधा दे रहा होता है, और कभी ढाबे पर प्लेट और जूठे बर्तन साफ कर रहा होता है। आखिर प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि बाल श्रम है क्या? बाल श्रम आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के साथ या मजदूरी के भुगतान के बिना बच्चों से शारीरिक कार्य को कराना है। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी बाल जो 14 वर्ष के नीचे का है, उससे कोई भी बाल श्रम नहीं कराया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के

नीचे कार्य करने वाले बालक बाल श्रमिक हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम की उम्र 15 वर्ष तय की गई है। जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में हम देखते हैं कि बाल मजदूरी के अंतर्गत सबसे पहले हम भारत के अनुच्छेद 15 के उपखंड 3 की तरफ देखते हैं, जो ये कहता है कि राज्य बालकों के लिए और महिलाओं के लिए विशेष रूप से अलग प्रकार के कानून को बना सकता है, अर्थात उनके उत्थान के लिए, उनके उन्नयन के लिए राज्य कानून बनाने में सक्षम है। अब हमने आर्टिकल 45 जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 जिसे कहा जाता है के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को संविधान में संशोधन करके निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के नीति निदेशक तत्व के रूप में शामिल किया है, जिसे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 के एक खंड के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में हमने स्वीकार किया है, अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया ही जाएगा। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए क्या प्रावधान है। तो 0 से 6 वर्ष के बालकों के प्रावधान के अंतर्गत अब हम इसे नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के जो मानक दिया गया था उसे हमने हटा करके मूल अधिकार बना दिया है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत, और अनुच्छेद 45 की भाषा में इस उम्र की सीमा को परिवर्तित करते हुए अब हमने 0 से 6 वर्ष कर दिया है, और इसके साथ ही साथ मूल कर्तव्य के रूप में एक नया मूल कर्तव्य जिसे हम 11वां मूल कर्तव्य कहते हैं, बालक के माता पिता और उनके संरक्षक के ऊपर भी यह दायित्व तो अधिरोपित किया है कि वे अपने बालकों को शिक्षा के लिए उस शैक्षिक जगत में और अपने उन्नयन के लिए वो आगे बढ़ सकें इसके लिए वो प्रयास करेंगे उनके पोषण का, उनके देखभाल का। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आने वाला एक ऐसा अनुच्छेद भी है जिसमें 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी भी राज्यों के ऊपर अधिरोपित की गई है। बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर तथा सुविधाएं प्रदान की जाए, जिससे वे अपने बचपन व जवानी के नैतिक व भौतिक दुरुपयोग से बचा सकें। संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर ही राज्य 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। जब हम अनुच्छेद 51A की तरफ देखते हैं तो ये बताता है कि माता पिता पर बच्चों के शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने का एक मौलिक कर्तव्य, जिसे 11वें कर्तव्य की मैं चर्चा कर रहा था, अधिरोपित किया गया है। अब बाल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अगर हम कानूनों का जिक्र करें तो सबसे पहला जो कानून बना वो वर्ष 1948 में कारखाना अधिनियम बना। कारखाना अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान है कि 14 साल तक की आयु वाले बच्चों को कारखाने में काम करने से रोका जाएगा। 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किसी फैक्ट्री में तभी नियुक्त किए जा सकते हैं जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र हो। इस कानून में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए हर दिन 4.5 घंटे की कार्य अवधि तय की गई है और उनके रात में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस कानून के धारा 24 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा और न ही किसी खतरनाक नियोजन में ही उसकी नियुक्ति की जाएगी। न्यायालयों ने यह आदेश भी दिया है कि एक बाल श्रम पुनर्वास सह कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी और जिसमें बाल श्रम कानून का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं का अंशदान का उपयोग किया जाएगा। खदान अधिनियम 1952 भी बनाया गया है जिसके अंतर्गत 18 साल से कम आयु वाले बच्चों को खदानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनैतिक तस्करी बचाव अधिनियम 1956 बनाया गया है। बाल श्रम निषेध अधिनियम कानून 1986 बनाया गया है और यह कानून भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी अवैध पेशे और 57 ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें बच्चों के जो जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए अहितकर हैं, उन्हें उसमें नियोजन को

निषिद्ध बनाया गया है। इन पेशों और प्रक्रियाओं का उल्लेख कानून की अनुसूचियों में किया गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति बनाई गई है जो वर्ष 1987 की है। किशोर न्याय देखभाल संरक्षण अधिनियम 2000 वर्ष का है जो बच्चों को रोजगार को दंडनीय बनाता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बनाया गया है और इसी अनुक्रम में

0: परिवार के, परिवार का तात्पर्य उसके माता पिता और उसके संरक्षक, अगर कोई जीविकोपार्जन का ऐसा कार्य करते हैं जिसमें किसी तरीके का कोई खतरा निहित नहीं है, ऐसे कार्यों में माता पिता बालकों की मदद ले सकते हैं। लेकिन मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ऐसे कार्य करने के दौरान बालक का जो एक मूल अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का, वह किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होना चाहिए। बच्चे शाम 7 और सुबह 8 बजे के बीच पारिवारिक उद्यमों में भी मदद नहीं कर सकेंगे। और बच्चों या किशोरों को एक कलाकार के रूप में अगर वो काम करते हैं तो दिन में केवल 5 घंटे और बिना आराम के केवल 3 घंटे तक कार्य करने की अनुमति होगी। सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है और तभी हम इस बाल श्रम रूपी समस्या और बाल श्रम रूपी नासूर और बाल श्रम रूपी भस्मासुर से निजात पा सकते हैं।
1: दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास वार्ता बाल श्रम उन्मूलन के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ सुन लेते हैं ये गाना और फिर मिलते हैं आपसे गीत के बाद।

0: दोस्तों, हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें प्रकृति के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने का संदेश देता है। इसी क्रम में आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान विषय पर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया और इस वर्ष की थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से अधिक वृक्षारोपण का संदेश भी दिया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। आइए दोस्तों, सुनते हैं इस कार्यक्रम के कुछ संपादित अंश।
1: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के वन पर्यावरण जंतु उद्यान और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वन और पर्यावरण विभाग के सभी अधिकारीगण, विश्व बैंक के प्रतिनिधिगण और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए, सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, इस समारोह में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, प्रतिभागीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। इस समारोह में और इस समारोह को सफल बनाने के लिए आयोजित विभिन्न प्रकार के आयोजनों, कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का हिस्सा बनने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक सामान्य बोलचाल की भाषा में भी हम सब इस बारे में परिचित हैं, इन चीजों को अभ्यास करते हैं कि जल है तो कल है, वन है तो जीवन है, यानी एक दूसरे के साथ कैसे जीवन चक्र जुड़ा हुआ है। लेकिन उनकी हमने सर्वाधिक उपेक्षा भी की है और उस उपेक्षा की कीमत आज विश्व मानवता चुका रही है। हमें से हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है, जिसकी उम्र 40, 45 या 50 वर्ष की है, उसने अपने छोटे से जीवन के इस कालखंड में पर्यावरण के साथ भी खिलवाड़ की कीमत को किस रूप में हम चुका रहे हैं, उसने मौसम चक्र को बदलते हुए देखा होगा। हम लोग इस बात को देखते हैं कि इससे पहले, यानी आप देखेंगे आज से 25 वर्ष पहले मौसम का जो चक्र होता था उसमें और आज में लगभग 1 से 1.5 महीने का अंतर आ गया है। परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए या भारत जैसे देश के लिए, जिसके बारे में कहा जाता है ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का देश या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का राज्य, और उसमें अगर मौसम चक्र में अंतर आएगा तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा? किसान की आमदनी पे असर पड़ेगा। अतिवृष्टि का

0: अर्थव्यवस्था का राज्य, और उसमें अगर मौसम चक्र में अंतर आएगा तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा? किसान की आमदनी पे असर पड़ेगा, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ेगा, अनावृष्टि का सामना करना पड़ेगा। खाद्यान्न का संकट खड़ा हो सकता है, और पूरी दुनिया आज उन चीजों से चिंतित भी है, और उनके लिए असमय घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाएं एक चेतावनी भी है। उन्हीं चेतावनियों से बचने के लिए हम उपाय कर सके। ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वजों ने या भारत की ऋषि परंपरा ने पर्यावरण के प्रति हम सबको आगाह न किया हो। आप वेदों की परंपरा में आ आएंगे, हम सब इस बात को जानते हैं, हम सब एक सामान्य भारतीय इस बात को मानता है कि हम सब का एक संस्कार रहा है। हम सब अपने आप को इस धरती माता के पुत्र कहते रहे, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी के रूप में हम सब ने सदैव इस बात को महत्व दिया।
1: हमारा दायित्व बनता है कि हम अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसको रोकें, कोई व्यक्ति रोटी खोल करके जा रहा है उसको ऐसे खोल दे रहा है, बंद नहीं कर रहा है उसको भी रोके, उससे भी हमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ हमें करना पड़ेगा, और अंतिम जो संकल्प है वह प्रकृति की अनुकूल जीवन शैली को अपनाना, क्या अपना जीरो नेट के लक्ष्य को प्राप्त करना है, यानी जहां पे कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम हो, इसके लिए हम सबको कार्य करना होगा, लड़ना पड़ेगा। याद करना, विकसित भारत की आधारशिला एक स्वच्छ पर्यावरण के माध्यम से ही संभव हो सकती है, और स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आत्मनिर्भर विकसित भारत के साथ हमें आत्मनिर्भर विकसित उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम में अपना योगदान देना होगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित इस विशेष संगोष्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। तो आइए, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब भी मिलकर हरित और सुरक्षित भविष्य के निर्माण का संकल्प लें।
3: दोस्तों, ये था हमारा आज का युवा तरंग, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा।
2: और अब चलते चलते आपको बता दें हमारे कल के युवा तरंग का विवरण। तो कल के कार्यक्रम का चर्चा का विषय है विरासत संरक्षण। इसी के साथ दोस्तों, अब हो चला है जाने का वक्त। दीजिए अपनी दोस्त अनुष्ठा और
3: दिव्यांशु को इजाजत।
2: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा तरंग, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नई उड़ान।

व्यवहार में हम परिवर्तन कर सकें और हम हमारी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए चर्चा परिचर्चा से आगे बढ़कर कुछ ठोस कदम उठाते हुए अपने और अपने आसपास के लोगों और समाज में कुछ परिवर्तन ला सकें। आज विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य तो यही है, लेकिन सन 1973 में जब से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई, तब से लेकर अब तक लगभग 52 वर्ष हो चुके हैं और यही क्रम चलता आ रहा है। लेकिन रिजल्ट या परिणाम की बात करें तो उसके नाम पर हमारे हाथों में ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले 52 सालों में पर्यावरण को नुकसान ज़्यादा हुआ है, उसको बचाने की कोशिशें बहुत कम। ये बात तो आप भी मानते ही होंगे। लेकिन हम बहुत चालाकी से एक गमला और कुछ सेल्फी और कुछ मैसेजेस के साथ अपना काम आज के दिन पूरा कर लेते हैं। एक गमला हाथ में ले लेते हैं और उसमें सेल्फी खिंचवा लेते हैं, कहीं पे पौधरोपण कर लेते हैं, उसके बाद मैसेजेस और मिलने जुलने का दौर, चाय पानी नाश्ता, ये सब होने के बाद हमारा काम हो जाता है और फिर अगले दिन से हम सब चीज़ें पहले की तरह नॉर्मली करते रहते हैं। क्योंकि दर्द तो आखिरकार तभी होता है ना जब हमारे अपने जूते हमारे पैरों को काटें, तभी हमें पता चलता है कि तकलीफ एक्चुअली क्या है और कहाँ है। इसलिए साथियों, हमारी अपील आपसे ये है कि अगर आप भी पर्यावरण के प्रति प्रेम रखते हैं तो कुछ बदलिए। क्या बदलना है ये आपको सोचना होगा, लेकिन पान मसाला गुटके नमकीन के रैपर, पेन पेंसिल की रिफिल, बच्चों के डायपर और तरह तरह के केमिकल्स और भी न जाने क्या क्या, ये लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत बहुत लंबी है। ये सारी चीज़ें हम सब न जाने क्यों और कैसे कूड़े के ढेर में डंप करते जाते हैं। ये सब कहाँ जाएगा ये हम नहीं सोचते, हमें लगता है हमने फेंक दिया, हमारा काम ख़त्म। ये सारी चीज़ें हमारे डंप करने के बाद रहती तो पृथ्वी पर ही है ना, और लौट के भी हमारे पास आती हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपने माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो मेरी अपील है कि आप बिल्कुल सुनिए। आज हम ये याद करना कर लेना चाहिए कि हमने अपनी पृथ्वी माँ को क्या दिया। ये विचार कि हमारे द्वारा फेंका गया सामान हमारे पास वापस नहीं आएगा हास्यास्पद है, हमें अपने ही विचारों पर हंस लेना चाहिए थोड़ी देर। पर्यावरण का मूल मंत्र ये है कि हमें वही इस्तेमाल करना चाहिए जिसे प्रकृति को वापस देने के बाद अगर वो लौट कर हमारे पास आए तो उससे हमें डर ना लगे। यही है पर्यावरण को बचाने का मूल मंत्र, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, इस मूल मंत्र को अगर हम अपना लेते हैं तो हम पर्यावरण को बचा लेते हैं। और पर्यावरण की जो आत्मा है, जो उसका जो दिल है, वो धड़कता है जंगलों में, और इन्हीं खामोश जंगलों की पुकार अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक फीचर के रूप में, जिसमें स्वर दिया है आरती यादव और आनंद मिश्रा ने, आलेख है आरती यादव का और प्रस्तुति है डॉक्टर उमाशंकर सिंह की।

साथियों नमस्कार, स्वीकार कीजिए आपकी रेडियो सखी रीना की ओर से नमस्कार। हम आपका आज के कार्यक्रम में बहुत स्वागत करते हैं। आज है विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण को समर्पित रहती है आज की गतिविधियाँ, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे भीतर जो सोई हुई भावना है वो जागे, फिर विचार और

0: अभी जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं थे, वे नदियों की सांस थी,
1: मिट्टी की ताकत थी,
0: पक्षियों का घर थी
1: और इंसान की सभ्यता के पहले सूक्ष्म भी। लेकिन आज जंगल बोल नहीं रहे, खामोश है।
0: पर उनकी ये खामोशी भी बहुत कुछ कह रही है।
1: वे बता रहे हैं कि मौसम क्यों बदल रहा है,
0: गर्मी हर साल नए रिकॉर्ड्स क्यों बना रही है,
1: नदियाँ क्यों सिमट रही हैं
0: और क्यों प्रकृति बार बार हमें चेतावनी दे रही है।
1: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम नई उड़ान के माध्यम से
0: मैं आरती
1: और मैं आनंद आपको सुनाने वाले हैं
2: खामोश जंगलों की पुकार।
0: पर्यावरण, ये शब्द सुनते ही अक्सर हमारे मन में पेड़ों की तस्वीर उभरती है, लेकिन पर्यावरण केवल वृक्षों तक सीमित नहीं है।
1: ये जंगल है,
0: जल है,
1: मिट्टी है,
0: वन्य जीव हैं,
1: और इन सब के बीच जीवन का वो अदृश्य संतुलन है जिस पर हमारी पूरी दुनिया टिकी हुई है।
0: भारतीय सभ्यता और जंगलों का रिश्ता भी हजारों वर्षों पुराना है।

0: हमारी संस्कृति,
1: हमारी परंपराएं,
0: हमारे लोकगीत
1: और हमारे पर्व सब कहीं न कहीं प्रकृति और वनों से जुड़े रहे हैं।
0: पर्यावरण वैज्ञानिक मधुसूदन जी भी मानते हैं कि भारतीय समाज और जंगलों का संबंध केवल संसाधनों का नहीं बल्कि सह अस्तित्व का रहा है।
2: देखिए, भारतीय मनीषा ने जीवन को दो अलग अलग भागों में नहीं बांटता कि यह मनुष्य है और यह प्रकृति है। यहाँ वृक्ष, पशु, पक्षी, पर्वत, नदी और मनुष्य वह एक ही विराट चेतना के अंग माने गए हैं। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त कहता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात कि संपूर्ण पृथ्वी यह मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ। यह वैदिक ऋषियों की कोई काव्यात्मक कल्पना मात्र हो ऐसा नहीं है, दरअसल यह संपूर्ण भारत वर्ष का इकोलॉजिकल सस्टेनेबल फिलॉसफी है। आज जब मनुष्य के मन में इतना शोरगुल है तो हम देखें कि हमारा वन मनुष्य को मौन देता है, हमारा वन अनुभूति देता है। ऋषि याज्ञवल्क, उद्दालक, श्वेत केतु या जनक जैसे जब मनीषी आत्मा इन जंगलों में ही मनुष्य के मन के तमाम रहस्यों को खोज पाते हैं, वह अहम ब्रह्मास्मि हो कि तत्वमसी हो, कि सर्वम खलविदम ब्रह्म हो कि अयम आत्मा ब्रह्म हो, यह सारी शिक्षाएं मनुष्य को वनों से प्राप्त हुई है। आप देखें कि बालक राम जब वन से लौटते हैं तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होकर के लौटते हैं। महावीर महारथी अर्जुन वह जब वन से लौटते हैं तो वह श्रीमद् भगवद गीता के सर्वथा सुपात्र अधिकारी बनकर के लौटते हैं। सिद्धार्थ गौतम जब वन से लौटते हैं तो वह बुद्धत्व प्राप्त करके लौटते हैं। महावीर जब वन से लौटते हैं तो वो अर्हत प्राप्त करके लौटते हैं। यह वनों का भारतीय ऋषि परंपरा, भारतीय दर्शन, भारतीय विज्ञान, भारतीय औषधि विज्ञान, भारतीय बायोडाइवर्सिटी, यह जितने भी तरह की इकोलॉजी है, जितने भी तरह का वैदिक या आगमिक रित है, उसका जो मूल स्रोत है ना, वह वन है। तो अरण्य का, जंगल का भारतीय मनीषा के साथ, भारतीय चिंतन परंपरा के साथ वह अगाध अबाध संबंध है और देर सवेर हम पुनः उस इकोलॉजिकल सिस्टम को दोबारा से रिवाइव करेंगे, ऐसी मुझे संपूर्ण आशा बनती है।
1: लेकिन समय के साथ ये रिश्ता कमजोर पड़ता गया।
0: जंगल सिमटे,
1: नदियां बदली,
0: मौसम बदले
1: और इसके साथ बदल गया हमारा जीवन भी।
0: जंगलों का नुकसान केवल पेड़ों का नुकसान नहीं होता, उसका असर हमारी खेती पर पड़ता है,
1: हमारे जल स्रोतों पर पड़ता है,
0: हमारी हवा पर पड़ता है
1: और अंततः हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है।
0: जंगलों के घटने का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर मधुसूदन जी और गहराई से बताते हैं।
2: वन वह केवल वृक्षों का समूह नहीं है, दरअसल वो पृथ्वी के प्राण है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में फेफड़े निरंतर श्वास लेकर के जीवन को बनाए रखते हैं ना, उसी प्रकार वन ये हमारी पृथ्वी के लंग्स हैं, ये फेफड़े हैं, ये हमारी पृथ्वी का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये जो वन है ना, पृथ्वी पर यही वर्षा के गीत रचते हैं, यही नदियों को जन्म देते हैं, ये मिट्टी को थामते हैं, पक्षियों को आश्रय देते हैं, मनुष्य के जीवन को आधार प्रदान करते हैं, प्रकीर्णन को एक बहुत सुंदर रचनात्मक परिणाम देते हैं। इसलिए जब जब वन क्षेत्र घटता है ना, तब तब सभ्यता के भविष्य की जड़ें भी कटने लगती हैं। विज्ञान हमें बताता है कि जो जंगल होते हैं वो एक बड़े कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम होते हैं। एक विशाल वृक्ष वह केवल लकड़ी का ढेर मात्र नहीं होता, उसकी जड़ों में, उसकी पत्तियों में, उसके तने में हजारों लाखों छोटे छोटे इकोलॉजिकल सिस्टम सांस ले रहे होते हैं। उसकी जड़ों के आसपास करोड़ों सूक्ष्म जीव रहते हैं, माइक्रोबायोम कह लीजिए, माइकोराइजा कह लीजिए। उसकी शाखाओं में पक्षियों के घर होते हैं, उसकी छाया में अनगिनत फंजाई, इंसेक्ट्स, वनस्पतियां जन्म लेती हैं। एक संपूर्ण संसार समेटा होता है एक

0: वृक्ष के पास। अब आप सोचिए कि जब ये वन कटेगा तो क्या ये संपूर्ण जैविक तंत्र, ये बायोम डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा? अनेकों प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि विश्व की लगभग 80% स्थलीय जैव विविधता वो वनों में निवास करती है। तो अब अगर हम वनों को नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या होगा? जलवायु का जो परिवर्तन है वो बहुत तीव्र हो जाएगा। आप देख रहे हैं वैश्विक तापमान कैसे बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग जब बच्चे थे मई जून की गर्मियों में धूप में बाहर खेलते थे गुल्ली डंडा, फुटबॉल, क्रिकेट। आज जून में आप दोपहर में बाहर नहीं खेल सकते हैं, आपका बच्चा नहीं खेल सकता है। हमने गर्मी बढ़ा दी है, हमारी हरकतों ने गर्मी बढ़ा दी है। हीट वेव्स इतनी तेज हो गई हैं, सूखा, कहीं कहीं बाढ़, वर्षा चक्र का विघटन, अनियमित वर्षा, कमजोर मानसून, कहीं अत्यधिक बारिश, कहीं एकदम अकाल, कहीं नदियों में पानी नहीं तो कहीं ग्राउंड वाटर नहीं। भविष्य की जो पीढ़ियां होंगी वो क्या पानी पिएंगी?
1: आज पर्यावरण संरक्षण की चर्चा हर मंच पर होती है, स्कूलों में,
2: कार्यालयों में,
1: सरकारी योजनाओं में
2: और सोशल मीडिया पर भी। लेकिन चर्चा और व्यवहार के बीच की दूरी आज भी बनी हुई है, और ये दूरी कम करना आसान है या मुश्किल? क्योंकि लोग पर्यावरण की चिंता तो करते हैं लेकिन जीवन शैली में बदलाव आसान नहीं होता।
1: ऐसे में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने की राह में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पर्यावरण कार्यकर्ता ब्रजेश तिवारी इस पर अपनी महत्वपूर्ण राय रखते हैं।
3: सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोग पर्यावरण को अपने दैनिक जीवन से जुड़ा विषय मानते ही नहीं है। जब तक प्रदूषण, जल संकट या जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सीधे उनके जीवन पर असर नहीं डालता तब तक वो इसे गंभीरता से नहीं लेते। दूसरी तरफ एक और चुनौती है कि सुविधाओं और विकास के दौर में दीर्घकालीन पर्यावरण हित कहीं पीछे छूट गया है। इसीलिए जागरूकता केवल जानकारी देने तक सीमित न रहकर व्यवहार परिवर्तन का अभियान बनना जरूरी है ताकि लोग इसके लिए जागरूक हों और कदम उठाएं।
2: लेकिन चुनौतियों के बीच उम्मीद भी मौजूद है। देश भर में हजारों लोग ऐसे हैं जो केवल बातें नहीं करते बल्कि धरातल पर काम कर रहे हैं।
1: वे पेड़ लगा रहे हैं, वनों को पुनर्जीवित कर रहे हैं
2: और लोगों को प्रकृति से फिर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
1: और ऐसे ही प्रयासों से जुड़े हैं सत्येंद्र कुमार। उनका मानना है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं है,
2: ये समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। वन संरक्षण की दिशा में वे किस प्रकार का काम कर रहे हैं उनके अनुभव सुनते हैं।
4: देखिए, वन संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि कोई भी पौधा किसी भी जगह लगा दे। ये एक एक साइंटिफिक पद्धति है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है। हम जब ग्रो बिलियन ट्रीज में कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसके पीछे हम कोशिश करते हैं कि वो फ्यूचर में जाके एक असली जीवन जंगल बने। इसके लिए हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हम जहां पर भी जाते हैं, जिस जगह पे जाते हैं, वहां पे किस तरह की मिट्टी है, कैसी जलवायु है और वहां पे कौन सी प्रजातियों का चुनाव करें, इसके लिए हम बहुत ध्यान रखते हैं। बाहर से लाई गई जो प्रजातियां हैं वो अक्सर वहां के पर्यावरण से मेल नहीं खाती हैं, इसलिए हम स्थानीय पौधों को, पेड़ों को ही प्राथमिकता देते हैं जो वहां के पंछियों को, इंसेक्ट्स को भी घर बनाने में मदद करते हैं। दूसरा, हम जब भी पौधे लगाते हैं, हम मिक्स्ड प्रजातियों के, कई तरह की प्रजातियों के पौधे लगाते हैं। ऐसा नहीं करते कि एक ही कतार में एक ही तरह के पौधे लगा दिए। हम अलग अलग किस्मों के पौधे लगाते हैं, झाड़ियाँ, पेड़, जो कि आगे जाके कुदरती एक जंगल का लेट से रूप ले ले। तीसरा और शायद सबसे जरूरी, हम सिर्फ पौधा लगाकर उसको भूल ना जाएं। हम कई साल तक उसकी देखभाल करते रहे, सिंचाई की सुविधा हो, वहाँ पे उसकी निगरानी हो, एंड उन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, वो वहाँ का समुदाय है, वो उसको अपना माने। किसी भी प्रोजेक्ट को, एक जंगल बनने के लिए वहाँ के जो लोग जो हैं वो अगर उसको अपनाते हैं तभी वो एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। और हम कोशिश करते हैं कि हर जगह जहाँ पर भी हम काम करें वहाँ के लोकल लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले, ताकि उन लोगों का प्रकृति के साथ रिश्ता और भी बढ़ा। तो हमारा तरीका सीधा सा है, सही जगह, सही प्रजाति और लंबे समय तक उसकी देखभाल करना, यही वन संरक्षण का तरीका है।
1: साथियों, एक समय था जब विकास और पर्यावरण को एक दूसरे का विरोधी माना जाता था,
2: लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। नई तकनीकें

0: नई पद्धतियाँ और नए प्रयोग प्रकृति संरक्षण को नई दिशा दे रहे हैं।
1: मियावाकी मॉडल हो चाहे एग्रोफॉरेस्ट्री, स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण हो या वैज्ञानिक तरीकों से वृक्षारोपण हो,
0: ये केवल शब्द नहीं है, ये भविष्य की हरियाली के रास्ते हैं। सतेंद्र कुमार बताते हैं कि वे किस तकनीकी और मॉडल के माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं।
2: पद्धति चाहे कोई भी हो, हम कोशिश करते हैं कि हर जगह की जैसे एक अलग अपनी जरूरत है, इसलिए हम एक ही तरीका नहीं अपनाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि कैसी जमीन है, कैसा मौसम है और एम क्या है हमारा वहाँ पे करने का। तो इसलिए हम लगभग 3 डिफरेंट टेक्निक्स या पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला लेट्स से एग्रोफॉरेस्ट्री है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, किसानों के साथ पेड़ लगाते हैं, जिसमें कि हम फसलों को और पेड़ों को इंटीग्रेट कर सके। एंड इस पूरे एग्रोफॉरेस्ट्री का मेन एम है कैसे किसान की आय बढ़ाई जा सके, कैसे उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा जा सके। इसमें जनरली हम 2 तरह के पेड़ लगाते हैं, जिसमें एक फलों के पेड़, जिसमें आम, चीकू, अमरूद, संतरा, जिस स्टेट में हम काम करते हैं वहाँ की जो मेन पॉपुलर क्रॉप्स हैं वो वाली पेड़ हम लगाते हैं। तो फलों के पेड़ का ये फायदा है, यहाँ पे ग्राफ्टेड पेड़ लगाते हैं ताकि किसान को इनकम मिल सके ईयर ऑन ईयर, इन एडिशन टू उनको जो फसलों से इनकम मिलती है। और इससे हम क्या कर पाते हैं, किसानों की जो आय है उसको भी हम 2 से 3 गुना से बढ़ा पाते हैं। बाउंड्री पे हम कोशिश करते हैं कि अगर लकड़ी के पेड़ या टिम्बर के पेड़, जैसे टीक हो गया, महगनी हो गया, मालाबार नीम हो गया, इस तरह के पेड़ हम लगाते हैं जो कि लॉन्ग टर्म एक असेट का क्रिएशन करते हैं किसान के लिए। एंड इससे क्या होता है कि वो जमीन को उपजाऊ बनाए रखते हैं, वाटर टेबल इंप्रूव होता है और इनकम स्ट्रीम बढ़ जाती है किसानों के लिए। दूसरा जो है हमारे मियावाकी पद्धति होती है, जो कि हम अक्सर शहरों में इसका इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारे पास जमीन की कमी है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एक जैपनीज प्लांटेशन टेक्निक है जिसमें हम पौधों को पास पास लगाते हैं, बट इसमें हम कोशिश करते हैं कि सारे देसी पौधे लगाएं, जिससे कि वहाँ के जो बर्ड्स हैं या जो इंसेक्ट हैं उनको एक घर मिल सके और उस शहर की ग्रीन लंग्स हम क्रिएट कर पाए और बायोडाइवर्सिटी बढ़ा। तीसरा जो कि बहुत ही क्रिटिकल है हमारे कोस्टल इकोसिस्टम्स के लिए वो है मैंग्रोव। वो जनरली समुद्र के किनारों पे लगाए जाते हैं या फिर सुंदरबन हमारा एक लार्जेस्ट मैंग्रोव डेल्टा है, वहां पर हम प्लांटेशन भी करते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो मैंग्रोव हैं वो जो हमारे कोस्टल इकोसिस्टम है या कोस्ट पे जो हमारे विलेजेस हैं उनको ऊंची ऊंची लहरों से, तूफानों से, सुनामी से, इस तरह की नेचुरल कैलेमिटी से बचाते हैं। साथ साथ ये जो मछलियां हैं या झींगे हैं या उस तरह की जो कोस्टल हमारी इकोसिस्टम है उसको बचाते हैं, उसका घर बनता है वो। और इसकी वजह से क्या है, जो कोस्ट पे रहने वाले हमारे मछुआरे भाई हैं उनकी आय भी बढ़ती है। पद्धति सीधी सी है, सही जगह का चुनाव, सही प्रजातियों का चुनाव और लंबे समय तक उसकी देखभाल करें तब तक कि वो सेल्फ सस्टेनेबल फॉरेस्ट बन जाए।
1: साथियों, पर्यावरण संरक्षण केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये भावनाओं की भी कहानी है।
0: ये उन लोगों की कहानी है जो किसी सूखी जमीन को फिर से हरा होते देखते हैं
1: और उसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं।
0: कई बार एक छोटा अनुभव, एक छोटा पौधा, एक जंगल या एक बची हुई नदी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है।
1: और एक ऐसा ही अनुभव साझा कर रहे हैं पर्यावरणविद ब्रजेश तिवारी।
3: मैंने भी कुछ दिन पहले स्क्रॉल करते एक वीडियो देखा था जो बस्ती के कुछ युवाओं का था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात मई के आखिरी एपिसोड था उसमें उसका जिक्र भी किया कि कैसे मनोरमा नदी को उस गांव के बच्चों ने ही साफ कर दिया। अभियान को अपने जिम्मा युवाओं ने अपने सर पे लिया, जेंजियो ने अपने सर पे लिया। तो एक इतनी बड़ी चुनौती जो सरकार स्तर पे भी लगता है कि ये संभव नहीं हो पाएगा, परिवर्तन नहीं हो पाएगा, सफाई नहीं हो पाया, नमामि गंगा परियोजना हो या तमाम ऐसी परियोजनाएं हम बस जो सुनते हैं, लेकिन जिस किस्से का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि कैसे आकाश और उनकी टीम ने अपने गांव की नदी के लिए चिंतित थे और वो युवाओं की टीम बनी और उसके बाद वो डेली नहाने के बहाने, घूमने के बहाने, शाम को सुबह एक एक्सरसाइज के तौर पे उसको शुरू किया और मात्र 2 महीने में उन्होंने अपने गांव के आसपास करीब 15-20 किलोमीटर के रेडियस में उस नदी को साफ कर दिया। तो ये एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिला।
0: दोस्तों, जब हम जंगलों की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान पेड़ों पर जाता है, लेकिन किसी भी जंगल की असली ताकत उसकी जैव विविधता होती है।
1: हर पौधा, हर पक्षी, हर

0: हर कीट और हर जीव प्रकृति की एक बड़ी श्रृंखला का हिस्सा होते हैं।
1: यदि इस श्रृंखला की एक कड़ी भी टूटती है तो उसका असर पूरे तंत्र पर पड़ता है।
0: जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसको और बेहतर समझते हैं सत्येंद्र कुमार जी से।
2: देखिए, जैव विविधता सिर्फ जंगलों के जानवरों या रंग बिरंगे पंछियों की बात नहीं है, ये असल में उस पूरे फूड चेन की बात है जिस पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी है। एक छोटी सी मधुमक्खी से लेकर बड़े बड़े पेड़, हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हम जब इस फूड चेन के एक भी धागे को तोड़ देते हैं, इसका पूरा असर हमारे हम सब पे पड़ता है। देखिए, जो हमारी थाली है जिसमें हम खाना खा रहे हैं, उस खाने में विभिन्न तरह की चीजें हैं, जैसे रोटी है, सब्जी है, तो ये सब जैव विविधता की देन है। फसलें तभी फलती फूलती हैं जब मिट्टी जिंदा हो, यहाँ पर जो कीट मकोड़े हैं वो परागण करें, प्राकृतिक संतुलन बना रहे, साफ हवा, शुद्ध पानी और बदलते मौसम से जो बचाव है, ये सब हमें कुदरत की इसी विविधता से मिलता है। हमें बहुत सारी दवाइयां जो हैं जो पेड़ पौधों से आती है, तो इस तरह से मतलब ये है कि हमारा प्रकृति से रिश्ता बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है। और हमारे देश में तो हम पीपल, तुलसी, बरगद इन सबको इतने सालों से पूजते आ रहे हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि धीरे धीरे ये स्थानीय प्रजातियां जो हैं ये कम होती जा रही हैं। और ग्लोबल एंट्री में हमारा मानना है कि सिर्फ पेड़ लगाना काफी नहीं है, हमें देसी पेड़ लगाने की जरूरत है, हमें नेटिव ट्रीज लगाने की जरूरत है जो कि जैव विविधता को और बढ़ावा देते हैं। तो इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी को बचाना के लिए पूरी कोशिश करें। ये एक ऑप्शन नहीं है, ये हमारी एक जरूरत बन गई है, ये हम अपने लिए नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं।
1: जंगलों की पुकार केवल पेड़ों को बचाने की पुकार नहीं है, ये पानी बचाने की पुकार है,
0: ये हवा बचाने की पुकार है,
1: ये मिट्टी बचाने की पुकार है और अंततः मानव जीवन को बचाने की पुकार।
0: विश्व पर्यावरण दिवस हमें केवल एक दिन का संदेश नहीं देता, ये हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी हमारे उपयोग की ही वस्तु नहीं है बल्कि हमारी साझा जिम्मेदारी भी है।
1: एक पौधा, एक बूंद पानी, एक छोटा सा प्रयास, शायद बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है।
0: जंगल आज भी खामोश हैं, लेकिन उनकी पुकार साफ सुनाई देती है।
1: सवाल केवल इतना है कि क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं?
0: अभी आप सुन रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रस्तुत विशेष फीचर खामोश जंगलों की पुकार। वाचन स्वर था आरती हिंद यादव और आनंद मिश्रा का। प्रस्तुत करता थे डॉक्टर उमा शंकर सिंह।
3: साथियों, आपको ये फीचर खामोश जंगलों की पुकार कैसा लगा, हमें लिखकर बताइएगा हमारे ईमेल आईडी पे nayiudan.airlko@gmail.com। और देखिए, ऐसा है कि पर्यावरण के लिए हम कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, क्या करना है ये हमें ही सोचना है। लेकिन आपको ऐसा लगता होगा अगर कि ये सफ़र बहुत लंबा है, पता नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, तो मुझे लगता है कि प्रकृति ही इस सवाल का जवाब देती है। कहीं नदियां बहती हैं, कहीं सूरज आसमान में लगातार चमकता रहता है, चांद भी नियमित रूप से आता ही है दिन और दिन को रात में बदलने के लिए। तो क्या कहें, यही कहेंगे कि आप भी चलिए, क्योंकि प्रकृति भी अपने आप चल ही रही है उस सफ़र को पूरा करने के लिए जिससे कि पर्यावरण को बचाया जा सके। चलिए, क्योंकि चलना ही प्रकृति का नियम है।

मैं जब यहाँ आता हूँ आकर घंटों बैठ जाता हूँ और देखता रहता हूँ इस नदी के बहते हुए पानी को, ये चौड़ा पाट और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर, ये मांझी, ये कश्ती और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत। मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ बहुत पुराना मेल है। मांझी की जरूरत है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: साथियों चलिए, क्योंकि आप पर्यावरण बचाने के लिए उत्सुक हैं और हम भी चल रहे हैं, बता रहे हैं आपको अवसर की जानकारी, यानी कि अगर आप रोजगार पाना चाहते हैं तो भारत संचार निगम लिमिटेड में जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के पदों के सहित अन्य पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 3 जुलाई और वेबसाइट है bsnl.co.in। मैं रिपीट कर दूं, 3 जुलाई 2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस छोटी सी जानकारी के साथ अब आज के नई उड़ान कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने के लिए अपनी रेडियो दोस्त रीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे।

0: श्रोताओं, अब एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रसार भारती द्वारा कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी हेतु नोटिस इनवाइटिंग प्रोग्राम प्रपोजल NIPP की अंतिम तिथि 31 मई 2026 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें https://prasarbharti.gov.in/NIPP अथवा https://akashwani.gov.in/files/nipp.pdf। सूचना अब समाप्त हुई।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे।
7: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात राज्ये 18,800 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः तथा औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारम्भं कृतवान्। केन्द्र सर्वकारेण विदेशी संस्थागत निवेशकेभ्यः करेषु महत् शैथिल्यं प्रदत्तम्। भारतीय रिजर्व बैंकेन स्वस्य नवीन मौद्रिक नीति समीक्षायां प्रमुख कुसीद दराः यथावत् स्थापिताः। पुनःक्रयण दरः 5.25% यावत् स्थास्यति। नेपालदेशस्य विदेशमन्त्री शिशिर खनालः अद्य आरभ्य त्रिदिवसीयां यात्रायां भारतयात्रायां दिल्लीं सम्प्राप्नोत्। अद्य विश्व पर्यावरण दिवसः समग्रेपि विश्वे आमान्यते। प्रशासनेन दिल्ल्यां 18 नमो ऑक्सीजन पार्क इति उद्यानानि उद्घाटितानि। अपि च पुरुषाणां 18 वयसः एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपान्त्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंतरालेन पराजितम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। विकास परियोजनानां शुभारंभं कृतवान् प्रधानमंत्री मोदी।

0: सङ्कल्पितम् अस्ति। श्रीशाहः सीमप्रबन्धनस्य सुदृढीकरणाय स्थानीयनागरिकप्रशासनेन सह उन्नतप्रौद्योगिक्याः एकीकरणं कर्तुं स्मार्ट् बॉर्डर रणनीतिम् इति उद्घाटितवान्।
1: जनसांख्यिकी का परिवर्तन चाहे त्रिपुरा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, जनसांख्यिकी का परिवर्तन हम सीमा के छिद्रों के माध्यम से नहीं होने देंगे, ये हमारा अटल विश्वास है और अटल संकल्प भी है। ये जनसांख्यिकी के परिवर्तन को रोकने के लिए बाड़ लगाई गई है।
0: अद्य विश्व पर्यावरण दिवस समग्रेपि विश्वे आमान्यते। पृथिव्यां जीवनस्य संरक्षणाय पर्यावरण जागरूकतायाश्च संवर्धनार्थं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमस्य अन्तर्गतम् अयं दिवसः प्रतिवर्षम् आयोज्यते। प्रशासनेन दिल्ल्यां 18 नमो ऑक्सीजन पार्क इति उद्यानानि उद्घाटितानि। अस्मिन् अवसरे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाहः, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहश्च देशवासिभ्यः शुभाशंसाः प्रदत्तवन्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् मातुः नाम्ना एकः वृक्षः इति अभियानं वनक्षेत्रवृत्तौ महत्वपूर्णं योगदानं दत्तवत्। तेन उक्तं यत् अयं दिवसः पर्यावरण संरक्षणं सतत विकासं च प्रति अस्माकं प्रतिबद्धतायाः प्रतीकः अस्ति। सूचना प्रसारण राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगनः अद्य नवदिल्ली नगरस्य ऑल इंडिया रेडियो परिसरे एक पेड़ माँ के नाम अभियानस्य भागरूपेण एकं वृक्षं रोपितवान्। आकाशवाण्या सह संभाषमाणः डॉक्टर मुरुगनः नागरिकेभ्यः आह्वानं कृतवान् यत् ते पर्यावरणस्य रक्षणस्य प्रतिज्ञां कुर्वन्तु। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिनोः द्वित्री दिवसयोः मध्ये मध्य अरब सागरस्य केषुचित् अधिकेषु भागेषु समग्रेपि गोवा प्रदेशे, महाराष्ट्रस्य, आन्ध्रप्रदेशस्य, कर्नाटकस्य च केषुचित् भागेषु, तमिलनाडु राज्यस्य अवशिष्टेषु भागेषु तथा पूर्वोत्तर राज्यानां केषुचित् भागेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृतः आगमनाय परिस्थितयः अनुकूलाः सन्ति। पुरुषाणां आ 18 वयस्यः एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपान्त्यस्पर्धायां भारतेन पाकिस्तानदलं 5-3 अंक अंतरालेन पराजितम्। जापान इदं अपरतः महिलानां अंडर 18 एशिया कप प्रतियोगितायाः उपान्त्यस्पर्धायां चीनदेशेन भारतीयदलं पराजितम् इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है शाम के 6:30 और इसी के साथ प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकायतन एवं खेती किसानी।

0: जय हिंद।
1: हिमांशु भैया।
2: हाँ ओम भैया।
1: आज देखो अपने बैठकियों में भैया जब आए इतना ना इस घाम होत रहा है कि भैया एकदम मार थमथमाए गए।
2: बिल्कुल भैया, घाम तो होबे करे भाई। जब इस समय घाम के समय चल रहा है, गर्मी के महीना चल रहा है, तो देखो समय समय पर हर चीज नीक लागत है। घाम के समय घाम नहीं, बरसात के समय बरखा।
1: लेकिन भैया जब ज्यादा हो जाते तो कौन चीज नहीं अच्छी लगती है।
2: हाँ, ये तो भैया सही कहो, जो है कोनो चीज के अति ज्यादा नीक नहीं होत है, लेकिन समय समय पर सबके हर चीज के जरूरत होत है, वैसे मौसम होत है।
1: हाँ भैया, लेकिन अपनी तरफ से सुरक्षा कीन जा सकते है। हाँ। देखो जब इतनी गर्मी हो रही, इतना घाम हो रहा, तो भैया हम पंचन का यू करे है कि जैसे कोनो काम करे है तो भैया जुड़े जुड़े निकल जाओ, है सुबेरे निकल जाओ जल्दी, और संझा कहीं अगर ज्यादा जरूरत ना है तो दोपहरिया निकलबे ना करो।
2: दोपहरिया का जुड़ाओ और जो है सुबेरे संझापन काम धाम करो। साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि तरावट बनी रहा चाहिए। समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर पर जो है पानी जरूर पिए चाहिए, शरीर में पानी कमी ना हो पाओ भैया।
1: बिल्कुल भैया, देखो अपने ही हम

0: मेरे लेके धरे हैं महिमा पानी यानी भर के भैया रखे थे दिन भर एकदम जुड़ जुड़ रहा थे हैं।
1: और बहुत संधा था कि गरीब पानी
0: भैया की भैया बात है ना पूछो। लेकिन भैया देखो आज है 5 जून।
1: हाँ भैया, और हर साल 5 जून का विश्व पर्यावरण दिवस मनावा जाता है।
0: बिल्कुल भैया, देखो पर्यावरण दिवस मनावा जाते है, अब देखो प्रकृति के साथ मन ही का कर रहा, खिलवाड़ कर रहा।
1: यहाँ
0: जैसे अब बताओ थे इतना ज्यादा गर्मी हो रही है, इतना ज्यादा मार भैया रात नींद नहीं आ रहे हैं, सोए नहीं पा रहे हैं, इतनी गर्मी लाग रही, तो वो सब चीजें कहा है कि प्रकृति के साथ मन ही का कर रहा, खिलवाड़ करे लागे।
1: और भैया जब कोनो चीज़ के अति हो जाता है, जैसे कहो कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो मौसम में परिवर्तन देखा जाता है, बदलाव देखा जाता है। कबो कबो गर्मी चल गर्मी शायद हो रही है, बिचम बिचम देखो बरखो हो लागत, पन्नू बरसे लागत है, ठंडियों पड़े लागत है।
0: एकदम कहा नहीं, जलवायु में भैया परिवर्तन
1: हो रहा है बड़ी तेजी से। तो वो परिवर्तन ना हुए और सब चीज़ें सब मौसम समय समय पर चला करें, सब मौसम समय समय पर अपन आवें और अपन काम करें, तो वही के खातिर जरूरी है कि पर्यावरण अपन जो है व्यवस्थित रहा है और सुधर रहा है।
0: बिल्कुल भैया, या देखो हमारा पंचन की जिम्मेदारी हुआ है कि अपने पर्यावरण के यहाँ भैया बचाए रखे है। कहे तेरे देखो भैया, अगर सही शुद्ध साफ हवा अगर चाहिए तो भैया पर्यावरण के यहाँ साफ सुथरा रखे परी है। और वही के साथ साथ जो अपन आवे वाली पीढ़ी है वही का अगर बेहतरीन अच्छा जो है भविष्य देख है, पर्यावरण देख है, तो बहने तरह हम पंचन के यहाँ यू जागरूक रहे पड़ी। और जागरूक के साथ साथ भैया आयुष देखो काम करे पड़ी है कि हमारा जो पर्यावरण हवे वो बिल्कुल बेकार ना हो।
1: हाँ भैया बिल्कुल सही कहो, जैसे कोनो चीज कोनो समस्या हुआ था तो वही के समाधान खातिर आगे बढ़े चाहिए। तो पर्यावरण में जो जैसे बताओ कि समस्या हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो वही से बचेताई पेड़ पौधा लगावा जाए।
0: हाँ बिरवा जरूर लगाओ भैया। अब देखो आज जगह जगह पर यहाँ तनक तनक बिरवा खूब कोई भैया ऐसे है निःशुल्क बांट रहा, कोई कहूँ लगा रहा, कोनो पार्क परा है, कोनो क्या तम लगा रहा। लेकिन भैया देखो यह चीज कोनो एक दिन करेक नहीं है।
1: बिल्कुल भैया,
0: आप भैया देखो अब धीरे धीरे भाई बरखा का समय आज मानसून क्या है, तो हम पंचन का करे है पहले तेरे सब व्यवस्था कर ले है। और वही के साथ साथ जो बिरवा भैया लगा रहे हो, आज जो मान लो लगा रहे हो, तो वही की देख रेख करे।
1: हाँ भैया बिल्कुल, और बिरवा के देख रेख बिल्कुल वैसन करे है जैसे अपने घर के लड़कन बच्चन के देख रेख की जाता है। उनका जो है समय समय पर उनका पानी देना, उनका जानवरन से बचाना, उनका जो है तैयार करना, तो बहुत जरूरी है। बिरवा लगाओ बड़ी बात नहीं है, बिरवा का पेड़ पौधन का सुरक्षित रखना बड़ी बात है भैया।
0: बिल्कुल भैया सही कहा। तो और देखो जब सुरक्षा के बात आवत है तो सबसे जरूरी हो जाते हैं जो अपने घर में लड़का बच्चा है, जो मातारी बहनी है, उनको पोषण की बहुत जरूरत होती है।
1: बिल्कुल एकदम सही कहे भैया, जो अपन पोषण सही हुए, खान पान सही हुए, रहन सहन सही हुए, तो अपन जो है स्वास्थ्य नीक रहे, तबियत नीक रहे, और जो तबियत नीक रहे तो कोनो काम धाम करे ना।
0: बड़ा भैया सब चंगा चंगा रहे, बढ़िया नीक लागी। तो आग भैया आज वार्ता लेके आए हैं गाँव में पोषण सुरक्षा, एक वार्ताकार हैं डॉक्टर शिप्रा यादव बहनी, तो आप सुना जाए पंचो भाई सुने और जानकारी।
1: बिल्कुल भैया सुन लीजिए।
2: जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की लगभग 2/3 आबादी गांव में ही बसती है, ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित भोजन की पर्याप्त मात्रा न मिलने के कारण कुपोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे एनीमिया, बौनापन, थायराइड, मंद बुद्धि, बच्चों का पैदा होना देखा जाता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं पोषण की चुनौतियां अधिक हैं, इसलिए सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को विशेषकर नवजात शिशुओं, गर्भवती महिलाओं व धात्री माताओं को पोषण के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण की रोकथाम उसमें कमी करना है, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देना और साथ ही साथ गर्भवती और धात्री माताओं के स्वास्थ्य में भी सुधार करना है। उनमें पाई जाने वाली एनीमिया जैसी बीमारी, जिसे खून की कमी भी कहते हैं, उसमें कमी लाना मुख्य उद्देश्य होता है। उसके लिए संतुलित व पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक करना एवं शिशु बाल मृत्यु दर में कमी लाना भी पोषण सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। पोषण सुरक्षा का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आयु, लिंग एवं स्वास्थ्य की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध होना होता है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं एवं किशोरियों के लिए भरपूर पोषण की आवश्यकता होती है। इसी को देखते हुए सरकार ने पहल किया है, बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे चलाए जा रहे हैं जिनका लाभ

ले सकते हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, जैसे एकीकृत बाल विकास योजना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश में सभी जगहों पर आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए हैं जिनके माध्यम से बच्चों, गर्भवती माताओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पौष्टिक व पूरक पोषण दिया जाता है। बच्चों में वृद्धि की निगरानी व स्वास्थ्य की नियमित जांच किया जाता है, जिसमें 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को भी आंगनवाड़ी केंद्रों पर पूरक भोजन या आहार उपलब्ध कराया जाने की व्यवस्था की गई है। गर्भवती माताओं को THR दिया जाता है। राष्ट्रीय पोषण मिशन कार्यक्रम के द्वारा बच्चों के विकास की बराबर निगरानी की जाती है, साथ ही साथ खून की कमी की रोकथाम व सही पोषण पर जागरूकता भी फैलाई जाती है। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, हम सभी जानते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र पर प्रत्येक माह के विशेष दिवस के रूप में मनाए जाने वाले कार्यक्रम को पोषण दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें शिशु स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। इस दिवस पर आशा, आंगनवाड़ी और हमारी ANM बहन जिन मिलकर सेवाएं प्रदान करती हैं। यह दिवस ग्रामीण समुदायों के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने का एक प्रभावी माध्यम भी है। सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना व लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मध्याह्न भोजन योजना, इसे PM पोषण योजना भी कहते हैं, जिसमें सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को गर्म और पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा दोनों में सुधार हो। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। उनके पहले जीवित बच्चे के लिए 5,000 की वित्तीय सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। गर्भवती जो पहली बार गर्भ धारण करती है, वह अपना रजिस्ट्रेशन अपने क्षेत्र के आंगनवाड़ी सेंटर पर करवाती है, जिससे उन्हें सरकार द्वारा दी जा रही धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त हो, जिस धनराशि से वह अपनी स्वयं व अपने बच्चे की देखभाल कर सके। दूसरी संतान यदि पुत्री होती है तो उसे सरकार द्वारा एक मुश्त ही 6,000 रुपए की धनराशि देने की भी व्यवस्था की गई है। पोषण वाटिका योजना में, इस योजना के अंतर्गत घरों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को हरी सब्जियां, फल एवं पोषक खाद्य पदार्थों की स्थानीय उपलब्धता को बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन भी हमारे पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए चावल, गेहूं, दालें और मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देता है। खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाकर महिलाओं व उनके परिवारों के बेहतर पोषण में योगदान देता है। स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल, इस योजना के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण एवं स्वच्छता को भी बढ़ावा दिया जाता है। पानी से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए सुरक्षित पेयजल हमारे लिए आवश्यक है, जिसकी उपलब्धता आज हमारी सरकार घर घर, गांव गांव जल पहुंचाने के रूप में कर रही है। हाथ धोने व स्वच्छता संबंधी व्यवहार को इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम गंभीर कुपोषित व मध्यम कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनके उपचार एवं नियमित निगरानी भी की जाती है, और जिसे ऐसी स्थिति में जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को ऐसे कोई गर्भवती महिला या बच्चे मिलते हैं, उन्हें वह अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, और गर्भवती महिलाओं की नियमित जांचें भी होती हैं। एनीमिया मुक्त भारत अभियान, पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण के प्रमुख स्रोत, हम सभी जानते हैं कि गाँव में अनाज व दालें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है, जो पोषण के प्रमुख स्रोत हैं। सब्जियां व फल, गांव में आसानी से मिलने वाली हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे हम देखते हैं कि पालक, बथुआ, चौलाई व मौसमी फल आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिसका उपयोग कर एनीमिया से बचा जा

सकता है। दूसरा, दूध व डेयरी उत्पाद। ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध गाय व भैंस का दूध बच्चों व गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम व वसा का प्रमुख स्रोत होता है। गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की गोलियों के साथ साथ प्रत्येक दिन दूध दही खाने की भी सलाह दी जाती है, और उसी के साथ साथ मोटे अनाज की महत्वपूर्ण भूमिका पोषण में होती है। पोषण सुरक्षा में मोटे अनाज की पर्याप्त मात्रा यदि किसी गर्भवती महिला को दिया जाता है तो एनेमिया मुक्त रहेगी, साथ ही साथ

0: हीमोग्लोबिन स्तर को सुधारने में भी काफी मदद करता है। चूंकि स्वास्थ्य व पोषण एक सिक्के के दो पहलू हैं, अच्छे पोषण के अभाव में व कुपोषण के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए भी सरकार द्वारा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें जननी सुरक्षा योजना एक महत्वपूर्ण योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को बच्चा पैदा होने के उपरांत जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए 1400 रुपए की धनराशि प्रदान करती है। साथ ही साथ उस बच्चे का टीकाकरण उसके जिंदगी के लिए है, वो भी न छूटे, उसके लिए सरकार द्वारा टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जाता है, जो आंगनवाड़ी केंद्र पर महिला स्वास्थ्य कर्मी द्वारा लगाया जाता है। विशेष अभियान कभी कभी चलाने की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन या उनके माता पिता उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से अपने बच्चों का टीकाकरण नहीं करवाते हैं। आयुष्मान भारत योजना ऐसी योजना है जो हमारे देश के गरीब से गरीब परिवार के लोग भी अपना अच्छा इलाज करवा सकते हैं, और आयुष्मान कार्ड धारक को सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क कराने की सुविधा दी गई है। भोजन में पोषक तत्वों की कमी कुपोषण का सबसे प्रमुख कारण है। सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जन सामान्य को जानकारी देकर एवं पोषण के विषय में जन जागरूकता द्वारा स्वच्छ स्वास्थ्य एवं विकसित भारत के निर्माण में योगदान किया जा सकता है। अगर हम सभी स्वस्थ व स्वास्थ्य को ठीक से अपनाएं तो हम अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: ओम भैया।
2: हाँ हिमांशु भैया।
1: देखो भैया, गांवों में पोषण सुरक्षा ये विषय पर बड़ी निकित इनके जानकारी दिन डॉक्टर शिप्रा यादव इनी, ये के खातिर इनके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद भैया। और देखो गर्मी चल ही रही है, और ऐसी गर्मी मियाँ भैया जो छाट लड़का लैदर होते हैं वे कहीं है भैया जो है अब हमका जाए का नानी घरे छुट्टी बिता खातिन।
1: बिल्कुल।
2: और इके साथ साथ जो उनकी मातारी होती है वही अपने घरे जाए खातिन भैया मार परेशान रहते हैं कि भैया जल्दी ओ बता रहे हैं, जब ससुरारी जाते हैं मनाई लेवावे तो कहे तैयार हो जाओ तो कहो मतलब सुबह तैयार हो संध्या तक, लेकिन जब घरे जाए ब्यारा होते हैं तो 10 मिनट 5 मिनट पता ही नहीं चले थे कितनी तेज तैयार हुई है कहें चलो।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल। देखो देखो नहीं हरे के जो मोह होता है जो है मन होता है वह तो बिल्कुल दिल से होता है
2: कि कितनी जल्दी पहुंच जाए
1: अपने घरे पहुंच जावा जाए अपने अम्मा पापा घरे पहुंचावा जाए। और भाई कहा है ना छटपटा है जहाँ पूरी जिंदगी मैंने बिताईस है तो वहाँ पर जाए के तेरे मन तो होबे करे, और साथ साथ उनसे ज्यादा तो मन उनके लड़कन बच्चन के रहो था कि ननिवरे जाए।
2: बिल्कुल भैया, लेकिन देखो जब नंदे पहुंचती हैं घरे तो वहाँ होती भौजाई है, और भौजाई और ननद का जो रिश्ता है वह अपने आप में बहुत खास होते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और इसके साथ साथ लेकिन देखो भैया गौने लेके आए ननद घर लुटनी, तो भैया या गौना सुना जाए और सुधा द्विवेदी बहनी अपने स्वर में सुनाए रही है तो सुना जाए, आनंद लीन जाओ पंचो भाई सुने आनंद लीजिए।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हिमांशु भैया।
4: हाँ ओम भैया।
3: देखो मौसम बदल गया है, कहूँ कहूँ बरखा बूंदी पड़ गई है और कहूँ कहूँ घाम हो रहा है।
4: बिल्कुल भैया।
3: तो ऐसे मौसम में भैया सबसे बड़ी चीज जोन होते अपने खेती पाती खातिन जोन खेत खाली पड़े हैं वही माँ भैया करा दो जुताई।
4: बिल्कुल भैया। देखो अगली फसल के तैयारी करे खातिर अपने खेत के जो है जुताई बहुत जरूरी है, और खास तौर पर जो है ये शायद गर्मी है तो ये से जो जुताई करवाई जाए तो उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलत है। जिसे अपन जो है गहरी जुताई करे से वही के अंदर के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके जो अंडा होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और वही के साथ साथ ओम भैया जो घास फूस होता है, खरपतवार होता है।
3: आग भैया घास होते वह कहते हैं धूप।
4: हाँ
3: धूप भैया कहते हैं, वही का चाहे जितना छील लो चाहे जितना निराई गुड़ाई करवाओ लेकिन वह मरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसी गर्मी मैया भैया जो आदमी कहा नहीं मने भुट्टा हो
4: जाए,
3: अगर भैया ऐसे मियाँ गहरी जुताई करवा दो तो भैया धूप तक का मर जाते हैं, वो हाल है।
4: बिल्कुल बहुत जरूरी हुआ था भैया, और इससे बहुत फायदा मिलता है। इससे जो आगामी अपन फसल होता है वही माँ कोनो तरीके से रोग दोख नहीं लागे पोते।
3: हाँ।
4: और उस सबसे अच्छी बात यह होता है कि फसल अच्छी तैयार हो तो उत्पादन भी बढ़िया होता भैया।
3: बिल्कुल भैया सही कहा था। तो गर्मी की जुताई बहुत भैया सही हो जाते है कहे तेरे अपन। और सबसे बड़ी चीज यह है कि भैया बहन तेरे अगर जुताई कर दिन जाते तो जो नीचे की माटी है वहाँ ऊपर आ जाते है, घाम खा जाते। और वह देखो अपन यहाँ वैज्ञानिक भैया आवा करते हैं, बतावा करते हैं बैठ के मैया कि अगर भैया जितने दें जुताई करियो अपने खेती पाते के मतलब खाद की जितने दें जुताई करियो उतने समझ लो तुम्हारा जो फसल है उतनी ही नीक हुई। हमारे यहाँ तो भैया यहाँ तक कहते हैं कि जितनी भुर्रा माटी हुई भैया उतने फसल नहीं
4: हुई। भाई बिल्कुल भाई, भुर्रा माटी हुए तो वह जो बिया बोवा जाए बीज बोवा जाए तो वही के अंकुरण सही समय पर हुए, बढ़िया हुए और बिरवा अच्छे से तैयार हुई है तो वही के जो है
3: और जब माटी भैया देखो मुलायम रही तो भैया वही जरे जो बिरवा की है पौधा के जो भाई मान लो धाने में नहीं लगाई तो वही की जरे ज्यादा दूर तक फैलती है। तो ये सब भैया फायदा हुए अपन अगर गर्मी में यहाँ जुताई खेतन की कस दिन जाए वही के साथ साथ। देखो फायदा यह है कि अगर

0: हम पंचन कहिया जौन योजना चल रही है,
1: हाँ
0: जौन फसलन मैया जौन चल रहा है, वही के साथ साथ जौन खेती में अपने
1: मौके का चल रहा है, हाँ। के जानकारी अगर मिला करे समय समय पर भैया तो और बढ़िया हो जाता, फिर उससे हम सब आगे योजना बना सके थे कि कौन तरीके की खेती की जाए, खेती में कौन कौन चीज के इस्तेमाल की जाए, सरकारी लाभ कौन कौन उठावा जा सकते, सब्सिडी और छूट कौन कौन
0: सी योजना चल रही है भैया। तो ये सब जानकारी खातिर हम पंचायत लेके आए थे किसान डायरी हर सप्ताह शुक्र के।
1: बिल्कुल भैया, तो आज भी है शुक्रवार और आज हम सब लेके आए हैं किसान डायरी जो कि कृषि समाचार पर आधारित होता है।
0: हाँ, जो बीते सप्ताह का पूरे कृषि समाचार है भैया वही पर आधारित हुए। तो आज का जो आलेख एवं वाचन है अमरेन सहाय अमर भैया के और संपादन कीन हैं किसान डायरी का डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो आज सुना जाए, पंचो भाई सुने जानकारी लें।
1: बिल्कुल,
2: किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। किसान डायरी में प्रस्तुत है प्रमुख कृषि समाचार। आज की सुर्खियां। 2 दिवसीय खरीफ सम्मेलन संपन्न, खेत बचाओ अभियान, अनुदान पर प्रमाणित बीज, मानसून ने दस्तक दी, विश्व पर्यावरण दिवस आज, कृषि विकास दर में वृद्धि, बाजरे की खेती और उसकी उन्नत किस्में, कृषि निर्यात प्रबंधन और गन्ना किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। अब कृषि समाचार विस्तार से। किसान भाइयों, भारत सरकार खरीफ सीजन 2026 को न केवल एक मौसमी कृषि अभियान के रूप में अपितु किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का व्यापक राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में आगे बढ़ा रही है। इस दिशा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में 28 और 29 मई 2026 को नई दिल्ली के पूसा स्थित भारत रत्न श्री सी सुब्रमण्यम सभागार में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 226 का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय खरीफ सम्मेलन में खरीफ सीजन की तैयारियों को मजबूत करने, राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने और किसान हितैषी योजनाओं के लिए साझा रणनीति तैयार किया गया। सम्मेलन के पहले दिन तिलहन उत्पादन में वृद्धि, पाम ऑयल मिशन, बागवानी विकास, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन, उन्नत बीजों की उपलब्धता आदि पर आधारित रहा। दूसरे दिन टिकाऊ कृषि प्रणाली और प्राकृतिक खेती पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन में प्रदेशों के तमाम कृषि मंत्रियों ने भाग लिया। भारत सरकार द्वारा 1 जून से 30 जून 2026 तक पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है देश भर के किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने, रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को मृदा परीक्षण, सॉयल हेल्थ कार्ड, जल संरक्षण, हरी खाद, फसल विविधीकरण, नकली खाद बीज की पहचान और मौसम आधारित कृषि सलाह देंगे। इसके साथ ही किसानों को कम वर्षा की स्थिति में वैकल्पिक खेती आदि की सलाह भी दी जाएगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है खेती की लागत को कम करना, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाए रखना और लंबे समय तक खेती की उत्पादकता बनाए रखना। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खरीफ सीजन में राज्य सरकार ने किसानों को 50% अनुदान पर उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज उपलब्ध करने का निर्णय लिया है। सरकार ने इस बार 1,99,910 क्विंटल प्रमाणित बीज के वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। सुनिश्चित किया गया है कि किसानों को समय पर बीज मिले, बुआई में किसी तरह की परेशानी ना आए। इस संबंध में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा करके स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी केंद्रों पर समय से बीज पहुंच जाएं और वितरण हो जाए। किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मौसम मानसून ने केरल में 3 दिनों के विलम्ब से दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने केरल कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक भारी वर्षा की संभावना जताई है। इस बार मौसम विभाग ने अलनीनो के चलते बारिश

सामान्य से 10% कम होने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 26 में मानसून की आधिकारिक सूचना 15 से 22 जून के बीच होने की संभावना है। राज्य के पूर्वी हिस्सों जैसे वाराणसी, गोरखपुर में मानसून 15 जून तक और मध्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे लखनऊ और नोएडा में इसके पहुंचने की तारीख 20 से 22 जून तक अनुमानित है। धरती माँ की एक पुकार, पौधे रोपो बारंबार। किसान भाइयों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम यानी वृक्षारोपण महाअभियान 2026 के लोगों का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया। इसके साथ ही विश्व बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ रुपयों की लागत वाली भारत की पहली एयरसेट आधारित उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना की लॉन्चिंग की जाएगी। किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश में विगत 9 वर्षों में 242.13 करोड़ पौधरोपण हो चुका है। उत्तर प्रदेश के हरित आवरण में लगभग 3,38,000 एकड़ की वृद्धि हो चुकी है। आगामी वर्षा काल में 35 करोड़ पौधों के वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में अमृत वन की स्थापना की जाएगी। किसान भाई, उत्तर प्रदेश में विगत 12 वर्षों में कृषि क्षेत्र में हुए व्यापक सुधारों का सकारात्मक प्रभाव किसानों के जीवन पर पड़ा है। किसानों की मेहनत और सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश ने पिछड़ेपन और बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकलकर समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ी है। इस दौरान कृषि विकास दर 8% से बढ़कर 18% तक पहुंच चुका है। पिछले दिनों गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडलों की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का शुभारंभ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश की सबसे उपजाऊ भूमि और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। यहाँ के किसान रबी, खरीफ, जायद तीनों फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। इसी के साथ किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य भी मिल रहा है। किसान भाइयों, खरीफ की प्रमुख फसल बाजरे की बुआई जुलाई में शुरू हो जाती है। बहुत सारे किसान भाई बाजरे की खेती की तैयारी कर रहे होंगे। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के प्रचुर स्रोत से परिपूर्ण बाजरा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इस फसल की खासियत यह है कि ये कम पानी वाले क्षेत्रों में भी अच्छा उत्पादन देता है। इससे पशुओं के चारे का भी इंतजाम हो जाता है। अगर आप बाजरे की बुआई के इच्छुक हों तो हम आपको इसकी कुछ उन्नत किस्मों के बारे में बताते हैं। बाजरे की उन्नत किस्में हैं HHB 67.2, CZP 9802, HRB 121, पूसा 605, राज 171, ICMH 356, MH 169 यानी पूसा 23, GHB 538, GHB 719, HHB 90। किसान भाइयों, अपने क्षेत्र के जलवायविक अनुकूलता के अनुसार प्रजातियों की चयन करें और बाजरे की बुआई करें। कृषि निर्यात में वृद्धि किसी देश की वृद्धि पर व्यापक प्रभाव डालता है। इससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही निर्यात में वृद्धि से बिक्री और राजस्व में वृद्धि होती है। कृषि उत्पाद निर्यात का मतलब कृषि उत्पादों, पशुधन, मत्स्य पालन के माध्यम से प्राप्त होने वाली आय वस्तुएं हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से भोजन, वस्त्र और औद्योगिक कच्चे माल के रूप में किया जाता है। भारत में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 60 कृषि निर्यात क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं। ये सभी क्षेत्र देश के विभिन्न राज्यों के 230 जनपदों में फैले हैं। भारत मुख्य रूप से चावल, मसाले, चीनी, चाय, कॉफ़ी और ताजे फल सब्जियों का निर्यात करता है। भारत दुनिया के 125 से अधिक देशों में सालाना 50 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक कृषि उत्पादों का निर्यात करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश सरकार की

0: रोड संभालते ही किसानों के हित में तमाम निर्णय लिए हैं। अभी किसानों के हित में लिए गए निर्णय ने गन्ना किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। इस साल गन्ना किसानों को 3.22 लाख करोड़ से अधिक भुगतान किया गया है। ये आंकड़ा सरकार की शीर्ष प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश के किसी भी प्रदेश के किसानों को इतना गन्ना भुगतान अब तक नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों को डिजिटल माध्यमों से राहत दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसी क्रम में गन्ना किसानों को बेहतर पैदावार देने के लिए नए बीज ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे उत्पादन और आय दोनों बढ़ सके। गन्ना विकास और चीनी उद्योग विकास एक नया मोबाइल ऐप तैयार कर रहा है, जिसके जरिए गन्ना शोध केंद्रों से निकलने वाले बीजों की किसानों के खेत में पहुंचने तक की ट्रैकिंग होगी। किसान भाइयों और बहनों, ये थे इस सप्ताह के कृषि समाचार। इसी के साथ किसान डायरी का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।
1: ओम भैया।
2: हाँ हिमांशु भैया,
1: देखो भैया, किसान डायरी से कितनी नीकी नीकी जानकारी मिलत है। तो आज जौन है कृषि समाचार पर आधारित रहा, जो कि किसान डायरी, एक आलेख एवं वाचन रहा है अमरेंद्र सहाय अमर भैया के, और एक संपादन केंद्र रहा है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। एक खातिर दोनों भैया के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बिल्कुल भैया, वो देखो इतनी बढ़िया जब जानकारी हो जाते हैं और संझा के बिरिया हो और बाजा बाजा थे हैं और अपने
1: दिन भर खेते से काम करके जो लौट के आओ भैया,
2: काम करके भैया थक हार के आओ। और बताओ भैया,
1: चौखटी में दे दियो बाजा फिर जौन साहित जौन है बाजत है तो आनंद आ जाता है और कहो गौ नहीं सुने मिल जा भैया।
2: भैया देखो तनिक थके के हो तो फिर वही के साथ जौन चाय आकात भैया नए जमाने के जो अमृत है भैया वो मिल जाए और गौ नहीं सुने मिल जाए।
1: बिल्कुल। तो भैया देखो, अपनी बैठकी में हम सभी लेके आए हैं आज किसानी गीत, तो किसानी गीत सुन लीन जाए राम सूरत तिवारी भैया के आवाज में।
2: बिल्कुल हमरे देशवा के
1: बिल्कुल है, सुन लीजिए।

0: भारत महान बाय।
1: हाँ, हमरे देशवा के दे दे प्राण बा।
0: एकदम भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आनंद आएगा सुन करके, एकदम नहीं है, और बहुत निक लागे। तो भैया आप जो है, अब हम सब
1: हाँ हाँ भैया, देखो बात यह है कि अपन जो खेती पाती है वह मौसम पर आधारित रहते है। और भैया देखो, अगर मौसम के हाल हम पंचन का पहले से पता चल जाए तो हम पंचे जो अपन खेती पाती करी थन तो वहीमा का करेक है, कैसे करेक है भैया, पहले तेरे हम पंचे अपन,
0: मिल जाता
1: हाँ, अपन कामो सुक्ति आलो की भैया, मान लो बरखा बूंदी होने वाली तो भैया काम पहले है तो सुक्ति आलो।
0: खेती पाती नहीं भैया, बल्कि खेती पाती के साथ साथ अपन जो घर परिवार में भी बहुत सारी जरूरतें होते हैं जो उनकी बहुत मौसम पर आधारित होते हैं।
1: हाँ,
0: तो वो भी पर भी मौसम के बहुत बड़ा असर पड़त है। तो अगर समय से पहले ही हमें सबका मौसम के जानकारी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, वही हिसाब से अपन सबके तैयारी की जा सकत है। तो ओम भैया देख रहे ने कि आप
1: बिल्कुल भैया, मौसम का हाल हमारे हाथे में यहाँ है। तो जो प्राप्त हुआ है भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र लखनऊ तेरे। तो भैया जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश का मौसम का हाल है 5 जून यानी कि आज का, और कल 6 जून क्या भैया जो मौसम का हाल है उस संभाग में कहूँ कहूँ वर्षा गरज चमक के साथ बौछारे पड़े की संभावना है। और वही के साथ साथ आगे जो है 7, 8, 9 जून का भैया मौसम शुष्क रही। और जो चेतावनी है भैया वह यह है कि जो 9 जून हुए, 9 जून तेरे भैया लूक चले के आसार हैं। तो भैया अपन जो काम है खेती पाती का वो ये मौसम का जो हाल है ये हिसाब तेरे भैया निपटाओ कि भैया कोनो नुकसान ना हो।
0: बिल्कुल भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी हो भैया, और पंचन का बहुत जो है फायदेमंद है। और भैया देखो एक चीज़ और, जैसे जानकारी की बात कहो तो कहा है कि अपन सब जो किसान भाई हैं इनका सबका जो योजना के लाभ मिलते हैं सरकार की तरफ से।
1: हाँ,
0: तो वह योजना के लाभ तब मिल सकता है जब वही सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुए।
1: हाँ,
0: जैसे कि कहा मतलब है जैसे अपन सबके आधार कार्ड बनता है तो आधार कार्ड में अपन सबके पूरी जानकारी होता है, वही तिना किसानन के भी एक कार्ड बनता है जेका फार्मर रजिस्ट्री कहा।
1: हाँ भैया, फार्मर रजिस्ट्री बहुत जरूरी, बहुत जने देखो गांव में कहन कि भैया देखो जो पैसा नया होत खेती वाला हाँ। है कहन कि भैया नहीं मिली यू होई वो होई, तो भैया देखो कौनी चीज पहले तेरे रुके बैठे, पहले जागरूक रहो और भैया अपन काम करवा लो तो करे कुछ नहीं है। देखो अपन विशेषक भैया बताओ कर जन सेवा केंद्रों में जाए के आसानी करवा सकते हो, वही के साथ साथ जो नजदीकी आपके राजकीय बीज भंडार हुए या कृषि विज्ञान केंद्र है हुमा जइयो तो आपके जो फार्मर आईडी हुए जिका कहा थे ना वह आसानी से बन जाए, कौन चाहे अपने हाथों बना सकते
0: हो। बिल्कुल इंटरनेट के माध्यम से अपने हाथों बना सकते हो वेका, लेकिन अच्छी बात यह हुए कि कोनो जानकार मनी के लेके जाओ या फिर अपने ब्लॉक चले जाओ जो भी स्थान है सरकारी केंद्र है वहाँ जाए के।
1: और अहिमा भैया देखो फायदा यू होते कि जो आपके खेती का ब्यौरा है वो आके जगह मिल जाते है, और जैसा भैया बताओ जाते हर चीज डिजिटल हो रही

0: तो भाव डिजिटल हो गया है,
1: बिल्कुल
0: है?
1: भैया,
0: और भैया देखो, एक कार्ड तेरे तुम्हारा, चाहे लोन का काम हो, चाहे
1: सब्सिडी
0: बैंक का
1: का काम
0: काम
1: हो,
0: हो,
1: बैंक के काम
0: सब
1: हो,
0: योजना का काम है, वो सब वही तेरे है, हो जाए तो यू भैया आसानी से करवावा जा सकते है। और हम पंचे भैया कह रहे हैं कि सब जने करवा लो, हम तो भैया करवाए लेकिन
1: बहुत अच्छा किया भैया, बहुत जरूरी है, जिससे सरकारी के जितनी सरकारी जितनी योजना है, जेके जितनी लाभ है, वो सब सीधा सीधा हमें सबका मिला करे।
0: और भैया देखो, लाभ की जब बात होती तब भैया देखो, हम पंचे अपन जब फसल तैयार करे थन, जो नाज पानी तैयार हो थे, तो अगर हम पंचन के यहाँ मंडी के भाव पता चल जाते पहले तेरे,
1: और तो वही हिसाब से अपन सब
0: हाँ,
1: जने
0: तो भैया
1: सामान।
0: फिर हम पंचन लाभ हो जाते। तो हम देख रहे हैं ना आपके हाथ में भैया चार मंडी का थोक भाव हुए, तो भैया पंच बहन बताए दो।
1: तो बिल्कुल भैया, देखो हम लेके आए हैं चार मंडी के थोक भाव, लखनऊ, कानपुर नगर, गोंडा और अयोध्या। तो अगर बात की जाए गेहूं दड़ा के, तो लखनऊ माई के जो थोक भाव है 2,590 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 2,585 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में 2,527 रुपया और अयोध्या में 2,585 रुपये प्रति क्विंटल है। और चावल कामन की अगर बात कर ली जाए, तो लखनऊ में के थोक भाव 3,480 रुपया, कानपुर में 3,500 रुपया, गोंडा में 3,070 रुपया और अयोध्या में 3,060 रुपये प्रति क्विंटल। अगर मक्का पीली की बात कर ली जाए भैया, तो लखनऊ में के जो थोक भाव है 2,275 रुपया, कानपुर में 1,960 रुपया, गोंडा में 1,963 रुपया और अयोध्या में 2,400 रुपया प्रति क्विंटल है।
0: भैया जो चना हुआ छाट वाला, वो लखनऊ मंडी में 6,680 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, कानपुर में 6,400 रुपया प्रति क्विंटल, गोंडा में 6,700 रुपया प्रति क्विंटल और अयोध्या में भैया 6,400 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा दाम। और वही के साथ साथ जो उड़द करियर वाली रही भैया, वह लखनऊ मंडी में 9,450 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर में 9,350 रुपया, गोंडा में 9,700 और अयोध्या में भैया 9,200 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से रहे।
1: और भैया देखो, अगर मटर सफ़ेद की बात कर ली जाए, तो यही के जो थोक भाव लखनऊ में रहा है वह है 4,450 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर नगर में 4,550 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में यह 4,225 रुपया और अयोध्या में 4,250 रुपये प्रति क्विंटल। अब भैया ये तो रही बात दाल के, अब बात कर ली जाए सब्जी में, तो
0: हाँ
1: आलू सफ़ेद की अगर बात कर ली जाए भैया, तो आलू सफ़ेद लखनऊ में यही के थोक भाव 770 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 680 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में 900 रुपये प्रति क्विंटल और अयोध्या में 795 रुपये प्रति क्विंटल।
0: हाँ भैया, और जो लखनऊ मंडी में प्याज लाल वाला जोन है, वह क्या दाम रहा? 1,330 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, कानपुर में 1,320 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में 1,300 रुपया प्रति क्विंटल और अयोध्या में 1,250 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से।
1: बैंगन की अगर बात कर ली जाए, तो लखनऊ में के थोक भाव 1,700 रुपया, कानपुर में 1,650 रुपया, गोंडा में 2,550 रुपया और अयोध्या में 2,000 रुपया प्रति क्विंटल। अब बात कर लीजिए भैया टमाटर पका के।
0: हाँ भैया, टमाटर जरूर बात कर लीजिए। लखनऊ मंडी में 1,570 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, कानपुर में 1,280 रुपया प्रति क्विंटल, गोंडा में 1,375 रुपया प्रति क्विंटल और अयोध्या में भैया 1,450 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से। यू तो रहा है भैया चार मंडी का थोक भाव। और अपन पंच भाई कल के कार्यक्रम में यहाँ भैया का सुनी है, ये अपने पंच बहन का जरूर बता दो भैया।
1: बिल्कुल भैया, देखो हमें हाथे में जो कागज है, तो यहाँ है कि कल लोकायतन में यहाँ जो वार्ता है, ग्रामीण उद्यम से आत्मनिर्भर गाँव, और वार्ताकार राज नारायण वर्मा भैया हैं, और खेती किसानी में जो भेंट वार्ता है, धान की फसल में समन्वित खरपतवार प्रबंधन, वार्ताकार डॉक्टर लाल पंकज कुमार सिंह भैया और उनसे बतकही करी हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
0: तो ये तो भैया कल के कार्यक्रम रहे। और भैया देखो, बात यह है कि अपन पंच भाई कार्यक्रम सुनत हैं, तो वी भैया कई सुनकर अपना कार्यक्रम लागत है, वही के साथ साथ बहुत देखो पंच भाई सुनत हैं और भी सोचत हैं कि हम पंचन का चिट्ठी पाते लिखें, तो बताएं कि भैया कई इस कार्यक्रम लागत है, वही के साथ साथ का बदलाव चाहते हैं। तो अगर हम पंचन के यहाँ भैया पाती अपन लिखे चाहते हो, अगर का लिखे है भैया, तो भैया हमारा जो अपन कार्यक्रम का पता हुआ है, वो है कार्यक्रम लोकायतन एवं खेती किसानी द्वारा केंद्र निदेशक, 18 विधानसभा मार्ग, आकाशवाणी लखनऊ, जो पिन कोड है 226001।
1: और भैया यही के साथ ही साथ जो पंच भाई हैं, वही इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भी पठा
0: हाँ,
1: सकते
0: भैया
1: हैं, उधर से चट्ट से पठाई ना, इसी पट्टे से पहुँचाए
0: हाँ, तुरंत तुरंत।
1: तो हम जो है ईमेल के पता बता दी, तो अगर ईमेल भेजे है तो वही के पता है farmandhomeairlko@gmail.com। एक दोबारा बता दी थे farmandhomeairlko

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकायतन एवं खेती किसानी, मीडियम वेव के मीटर पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम महाभियान का किया आगाज, कहा पौधरोपण और जल संरक्षण कर जनता भी निभाए जिम्मेदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ, कहा वायु प्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बड़ा कदम। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज हुआ समापन, अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया बल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बृहद पौधरोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम महाअभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम पौधरोपण महाअभियान 2026 के लोगों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और पेड़ लगाकर प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लें।
1: 5 संकल्प हम सबको इस अवसर पर लेने होंगे। एक, हर नागरिक एक पेड़ मां के नाम पर अवश्य लगाएगा, कम से कम एक पेड़, यह हर नागरिक का दायित्व है। दूसरा, पेड़ लगाना ही नहीं उसकी सुरक्षा का दायित्व भी लेना है, हर एक ओर से उसे बचाना है। तीसरा, जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। चौथा संकल्प होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह रोके, उससे भी हमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ हमें वो करना पड़ेगा। और अंतिम जो संकल्प है वह प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना।
0: कार्यक्रम में विश्व बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ रुपए की लागत वाली उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंध परियोजना का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही श्रावस्ती स्थित गुलेरा केन नाला को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की।

0: इस दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विश्व बैंक और प्रदेश सरकार के बीच एमओयू का हस्तांतरण हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ की कुकरेल रेंज में पौधरोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महर्षि चरक औषधि वन की भी स्थापना की। यहां उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। दौरे के पहले दिन उन्होंने बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। ये पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गन्ने के मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी की गई है और बायो इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जब हम गन्ने से बायोप्लास्टिक बनाएंगे तो हमारी निर्भरता विदेशों पर कम होगी और हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनते। साथियों, पीएलए दुनिया के सबसे सस्ते बायोप्लास्टिक में से एक है और जब यह डिस्पोज होगा तो यह कचरा नहीं खाद बनेगा, फर्टिलाइजर, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएगा, यानी कि हर तरीके से फायदा ही फायदा, कहीं से कोई नुकसान नहीं।
0: बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहताल को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्रभूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और आर्द्रभूमि सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री योगी ने कहा कि ये उपलब्धि विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुराहताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट है। लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने सुराहताल के रामसर साइट बनने का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर में 294 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की पहचान निवेश और सुरक्षा के माहौल के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आज हर जनपद के समग्र विकास के लिए काम कर रही है।
2: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज समापन हो गया। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब समेत 11 देशों ने हिस्सा लिया। संस्कृति मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई ने बताया कि आज बैठक में भारत की मूल्यवान धरोहरों को वापस लाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा विकास और संस्कृति के समन्वय के साथ आगे बढ़ने को लेकर भी चर्चा की गई।
3: हमेशा यही कोशिश रही है सरकार की और स्पेशली संस्कृति मंत्रालय की कि तो हमारे जो भी स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं या जो स्मगल करके ले गए जाए गए या उसके पहले कॉलोनियल टाइम्स में ले जाए गए उनको कैसे वापस लाया जाए कि वो हमारी धरोहर, तो उसी के ऊपर चर्चा हुई है और कैसे डेवलपमेंट और कल्चर साथ साथ हो, विरोधाभास ना हो। उसमें
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज से विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के तहत प्रदेश में भी आज से 21 जून तक जनपदों के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में वृक्षारोपण कर समेकित जन कल्याण और जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने 5 जून से 21 जून के बीच में कार्यक्रम निर्धारित किया है। आज एक पेड़ माँ के नाम, तो आज यही कहूंगा 12 वर्ष नहीं, इसी तरह 2047 जो उनका सपना है कि 2047 में हमारा विश्व में देश हमारा बहुत आगे रहे, पूरी दुनिया को दिशा दे और आगे बढ़े और गरीबों की सेवा करते रहे।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में अकादमी सम्मान समारोह में वर्ष 2021 से 24 तक के लिए चयनित कलाकारों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस समारोह में 51 विशिष्ट कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान प्रदान किए गए। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पूर्वी जनपदों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का किया आगाज। कहा पौधरोपण और जल संरक्षण कर जनता भी निभाए जिम्मेदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ। कहा बायो प्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बड़ा कदम। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज हुआ समापन। अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया बल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 7:31। आइए सुनते हैं आज का अंग्रेजी कार्यक्रम।
4: गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द इंग्लिश प्रोग्राम, योर वीकली डीप डाइव इनटू इश्यूज, माइंड्स, रियलिटीज एंड सॉल्यूशंस शेपिंग आवर वर्ल्ड। आई एम योर होस्ट शीबा राकेश। लिसनर्स, टुडे इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। In today's episode, we will be talking about one of the most critical challenges of our century, water scarcity. Across the globe, reservoirs are shrinking, groundwater levels are plummeting, and millions are facing unprecedented supply shortages. This isn't just a crisis. It is a call to action. Joining us today to discuss how we can pivot towards sustainable water conservation is a leading expert in water-related issues with almost 26 years of hands-on experience at the national and international levels. A gold medalist from IIT Roorkee, she has a proven track record in handling rural and urban development projects, including machine-related software and the human resources. Meena Agrawalji, I welcome you to this broadcast.
5: Thank you, Shibaji, for inviting me over on the occasion of World Environment Day.
4: Meena ji, my first question to you, why are we facing a water crisis today despite living on a water planet?
5: You are very, very correct. We are facing a water crisis despite living on a water planet. We all

0: विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है शाम के 7:45। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं सुनिधि चौहान और शैल हाड़ा की आवाज़ों में गुजारिश फिल्म का गीत। गीत के बोल हैं कुमार के और संगीत संजय लीला भंसाली का।

अभी आप सुन रहे थे गुजारिश फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं ये जवानी है दीवानी, इस फिल्म का गीत कार्यक्रम में अब।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य की रचना, जिसे संगीतबद्ध किया अमिताभ भट्टाचार्य ने ही और गाया था अरिजीत सिंह ने। फिल्म का नाम था ये जवानी है दीवानी। और अब फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और आइए कार्यक्रम में अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की ही आवाज़ में ए दिल है मुश्किल, इस फिल्म का गीत।

अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह का गाया ये गीत, फिल्म का नाम ए दिल है मुश्किल। गीत के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई थी प्रीतम ने। और इसी गीत के साथ ही अब

श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रसार भारती द्वारा कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी हेतु नोटिस इनवाइटिंग प्रोग्राम प्रपोजल NIPP की अंतिम तिथि 31 मई 2026 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें http://prasarbharti.gov.in/NIPP अथवा https://akashwani.gov.in/files/NIPP/PDF। सूचना अब समाप्त हुई।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात्रि के 8 और इसी के साथ अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष भेंटवार्ता जलवायु के लिए वर्तमान समय। प्रोफेसर रामलखन सिंह से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की भेंटवार्ता लीजिए प्रस्तुत है।
1: सृष्टि की रचना में हम देखते हैं कि प्रकृति विविध स्वरूप हमें दिखाती है, रंग बदलती है और इस रंग में समाहित होते हैं हमारे जीवन दर्शन। जब हम अपने जीवन दर्शन की बात करते हैं तो निश्चय ही हमारे जो जीवन के रंग हैं वह भी समाहित हो जाते हैं। जलवायु के लिए आपने देखा कि समय समय पर तमाम तरह के कार्य किए गए हैं, सामाजिक तौर पर, सरकारी तौर पर, और सांस्कृतिक विरासत जो हमारी रही है उसमें भी हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है पूरे विश्व में। विश्व पर्यावरण दिवस की क्या अहमियत है, क्योंकि हमारा जो जीवन है, हमारा तात्पर्य जो मानव सभ्यता है, उतना ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जगत में यह किस तरह से प्रभावित करता है और क्यों आवश्यकता पड़ गई, जानेंगे समझेंगे। डॉक्टर प्रोफेसर रामलखन सिंह साहब, विश्व प्रसिद्ध आप वैज्ञानिक हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में आपने काफी कुछ कार्य किया हुआ है। डॉक्टर साहब, तो आपका स्टूडियो में पुनः स्वागत करते हुए जानना समझना चाहेंगे कि पर्यावरण दिवस को हम लोग मनाते क्यों हैं?
2: ये बहुत ही मूल प्रश्न है आपने जो किया है। और वास्तव में पर्यावरण दिवस एक बार 1972 में स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुई विश्व पर्यावरण पर
1: जी,
2: और उसमें ये विचार आया कि हम लोग पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और कोई एक ऐसा दिवस निश्चित करें जिस दिन हम पूरे विश्व में एक साथ मनाएं। और लगभग 122 देशों ने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और उस समय से हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है इस वर्ष, वो एक्चुअली पूरे विश्व में अलग अलग देशों में मनाया जाता है, तो इस वर्ष ये अजरबैजान के बाकू शहर में मनाया जा रहा है। और उसके पीछे कारण यह है कि अजरबैजान पर्यावरण संरक्षण में काफी उत्कृष्ट भूमिका निभा रहा है। तो इस प्रकार से हम इस 5 जून को पूरे विश्व में एक साथ पर्यावरण दिवस मनाएंगे और उसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे।
1: जब किसी देश विशेष की बात करते हैं, जैसा कि आपने अजरबैजान का नाम लिया, तो सबकी अपनी संस्कृति है, सभ्यता है, और साथ ही साथ उस क्षेत्र में किए गए जो आधुनिक कार्य हैं वह कितने स्तर के हैं यह भी काफ़ी कुछ निर्भर करता होगा। इंडस्ट्रीज तमाम हैं तो प्रदूषण भी उसी तरीके से बढ़ जाता है। तो क्या यह थीम देश स्तर पर भी सोचने की आवश्यकता है या विश्व परिदृश्य में ही सोच करके पर्यावरण दिवस को मनाने का?
2: वास्तव में अभी जो अजरबैजान में हम लोगों ने थीम ली है विश्व पर्यावरण दिवस के लिए वो है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट। इसका मतलब है कि प्रकृति से हम प्रेरणा लेकर के और पर्यावरण के लिए हम लोग कार्य करें। हम लोग अवेयरनेस या जानकारी देने या सतर्क

0: करने की बजाय अब हम लोगों का जो फोकस है इस पर्यावरण दिवस पर ये है स्केलेबल, मतलब जिस चीज को हम लोग मेजर कर पाए, हम लोग नाप पाए, उस दृष्टिकोण से कि रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे जो ऊर्जा जो है ग्रीन एनर्जी जिसको हम कहते हैं, जैसे सूर्य की ऊर्जा है, उस प्रकार से, या किस प्रकार से हम शहरों का विकास करें, किस प्रकार से हम कूड़े को मैनेज करें, किस प्रकार से पानी को मैनेज करें, हवा के प्रदूषण को किस प्रकार से मैनेज करें, तो उसको जिन पैरामीटर्स के द्वारा, जिन मानकों के द्वारा नाप सकते हैं, अब वो नाप करके और किस प्रकार से वर्ष प्रतिवर्ष हम उनमें प्रगति करते हैं।
1: दूसरा पहलू इससे जुड़ा यह है कि जो हमारी जलवायु है, गर्मी जाड़ा बरसात, मोटे तौर पर हम यही समझते हैं, यह परिवर्तन जो होता है वह पर्यावरणीय स्थिति के आधार पर ही होता है। तो क्या हम यह भी समझें कि जलवायु जो हमारी अलग तरह का व्यवहार कर रही है वह भी इसी कारण से अगर है, तो फिर क्या कुछ इस दृष्टि में आप नजर डाल सकते हैं?
0: वास्तव में हम लोगों को आज की दृष्टि में जिस प्रकार से चीजें बदल रही हैं, जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस प्रकार से AQI आप जानते होंगे कि शहरों के प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसमें हम तीन प्रकार से काम कर सकते हैं। एक तो ग्लोबल स्तर पर, विश्व स्तर पर हम लोग काम कर सकते हैं, दूसरे देश के स्तर पर हम लोग काम कर सकते हैं, और तीसरे जो है वो लोकल, जो हम स्थानीय स्तर पर हम काम कर सकते हैं, और चौथा अगर आयाम इसमें और जोड़ दें, इंडिविजुअल स्तर पर हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हम अकेले या हम अपने परिवार के साथ क्या कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों को स्ट्रेटजी इसके लिए एक बनानी होगी, योजना बनानी होगी।
1: ये तो घरेलू या फिर सामाजिक स्तर पर या देश स्तर पर कहें कि यह बात होती है, लेकिन हम जानते ही हैं कि 3/4 हिस्सा जो है पृथ्वी पर वो जल का
0: पानी है जी।
1: तो समुद्री जो इलाके हैं, समुद्र ही है पूरा कहिए फैला हुआ 3/4 क्षेत्र में, तो वहां तो हमारी चलेगी नहीं, वो तो सामुद्रिक क्षेत्र है। जितना कुछ समुद्र से हमें मिलता है और हम समुद्र को दे सकने की स्थिति में होते हैं, क्या वहां भी गैप बढ़ता चला जा रहा है?
0: हाँ, जरूर बढ़ता चला जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, जब कार्बन बहुत अधिक मात्रा में आ जाता है वातावरण में, तो वो तापमान को बढ़ाने लगता है। एल नीनो जो प्रभाव है उसका एक बार हम जिक्र जरूर करेंगे। एल नीनो प्रभाव जो है, जैसा आपने कहा कि जो समुद्र है हमारा 3/4 जो हिस्सा है हमारी पृथ्वी का, वो एल नीनो इफेक्ट जो है वो समुद्र में जो पैसिफिक सागर है अधिकतर, वहां पर जो टेम्परेचर बढ़ता है, वहां पर गर्मी होती है, और उस गर्मी की वजह से उसका प्रभाव इधर एशिया पर और ऑस्ट्रेलिया पर इतना काफी पड़ता है। और आपने देखा होगा कि एल नीनो का ही प्रभाव है कि अभी हम लोगों के यहाँ जो बरसात इधर जाड़े के समय में होनी चाहिए थी, वो बरसात नहीं हो पाई, इसकी वजह से जो तापमान है बहुत बढ़ गया। और आपने देखा कि कई सारे हमारे देश के कई हिस्सों में 47 और 48 डिग्री टेम्परेचर चला गया है, यहाँ तक कि अपने लखनऊ में भी टेम्परेचर 44 डिग्री के आसपास तक जा चुका है, या थोड़ा सा उससे ज्यादा जा चुका है। तो वो एल नीनो जो प्रभाव है वो हमारे पूरे वातावरण को प्रभावित करता है, और अभी जो अनुमान है लगभग नवंबर तक ये एल नीनो प्रभाव पड़ने वाला है, और इसकी वजह से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बरसात में भी लगभग 20% कमी आने वाली है, और उसकी वजह से फसलों पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, जीव जंतुओं पर पड़ने वाला है, मनुष्यों पर पड़ने वाला है, और पूरे के पूरे वातावरण और पर्यावरण पर वो प्रभाव पड़ने वाला है जो तापमान बढ़ने की वजह से। तो उस प्रभाव को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, उस प्रभाव से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, इन चीजों पर हम लोगों को आज की समय में और अधिक ध्यान देना होगा।
1: बिल्कुल, वर्तमान समय में काफी कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है इस तरफ। जो पहलू इससे जुड़ा हुआ है, निपटा कैसे जाए?
0: वास्तव में हम लोगों को एक ओवरऑल, मतलब पूरे आमूल चूल, या इसको कह सकते हैं कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। जैसे इसके लिए हमें जो कृषि करते हैं उसमें ऐसी फसलें बोएं जो तापमान को सह सकें, या ऐसी फसलें बोएं जिसमें पानी कम हो, घरेलू स्तर पर या म्युनिसिपल स्तर पर भी हम लोग पानी को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे अपने देश में जैसे सिक्किम है, वो पहला ऑर्गेनिक जो है वो स्टेट है, और वहां पर केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पूरी तरह से बैन है। इसी प्रकार से केरल में काफी फॉरेस्ट है, 79% फॉरेस्ट कवर है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में फॉरेस्ट कवर, मिजोरम में 85% फॉरेस्ट कवर है, इसी तरह से अरुणाचल में 79% फॉरेस्ट कवर है। तो इन चीजों को देखते हुए हम लोगों को सोलर एनर्जी

0: अधिक प्रयोग करना चाहिए, अपने रोजमर्रा की चीजों को हम लोगों को कम करना चाहिए, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम लोग कम से कम चीजों को प्रयोग करें, जैसे ऑयल के बारे में उनका ज्यादा वो है जी। तो इस प्रकार से हम अपने पुराने समय में जो हमारे वैदिक सभ्यता है उसमें जो कहा गया है कि कम से कम उसमें जो है आप गुजारा करिए और अधिक से अधिक बचाइए, उसको देश को दीजिए, जिससे कि सारे लोग सुखी हो सकें, सारे लोग संपन्न हो सकें।
1: डॉक्टर साहब, आपने आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस पर महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष भेंटवार्ता जलवायु के लिए वर्तमान समय, प्रोफेसर रामलखन सिंह से भेंट की डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी ने। और इसी के साथ ही आज का हिंदी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

घर आंगन में है बाहर कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।

मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय है 8:10। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं अमृता नंदी के गाए गीत एवं भजन।

अभी आप सुन रहे थे अमृता नंदी के गाए गीत एवं भजन। श्रोताओं, इसी के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम आप यहीं समाप्त होता है।

0: मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 8:30 और इसी के साथ आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आपको अब सुनवाने जा रहे हैं परदेस फिल्म का गीत। आवाजें हैं सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन की। गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और धुन बनाई नदीम श्रवण ने।

अभी आप सुन रहे थे परदे इस फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं ताल फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं अनुराधा श्रीराम, सुजाता मोहन, सोनू निगम और ए आर रहमान की। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत ए आर रहमान का।

ताल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, और इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त होता है।

ताल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, और इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, समय होने को है रात के 8:45। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों,

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद

0: महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
1: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
1: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु

0: और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर-18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under-18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
2: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी। साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
1: After reaching Surat this afternoon, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Later in the evening, Mr. Modi launched various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. These projects include major healthcare and aviation infrastructure.
2: आज भी यहाँ कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। विकास के ये काम दमन और पूरी यूनियन टेरिटरी के लिए

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमन में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज के जरिए भारत सरसब्ज मुस्तकबिल की जानिब फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। मईशत में मजबूत रुझान के नतीजे में साल 2025-26 में मुल्क की GDP की पेशरफ्त 7.7% रखी गई है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। हिसास सरहदी मकाम पर अगले साल पायलट शुरुआत मुतारिफ की जाएगी। जुनूब मगरबी मानसून बहिरा अरब, गोवा और कर्नाटक के मजीद हिस्सों में पेशरफ्त कर रहा है। और हॉकी में भारत जापान के काका मिगारा के मकाम पर सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त देकर मर्दों के अंडर 18 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया है कि दुनिया एक माहौलियात के लिए साजगार मुस्तकबिल की जानिब पेशरफ्त कर रही है और भारत इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज के जरिए इसकी फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। गुजरात के शहर सूरत में आज 18,800 करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि भारत की 250 गीगावाट की मजमूई काबिल क़द्र तवानाई में से अकेला गुजरात 50 मेगावाट फराहम करता है, जो कि मुल्क की सब्ज तवानाई का 5वां हिस्सा होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि रियासत शमसी तवानाई से माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में तब्दीली में एक वसी रोल अदा करना चाहती है, जो तवानाई में खुद किफालत हासिल करने के लिए लाजमी है। इस मौके पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ये इकदाम पेशरफ्त की क़्यादत करेंगे और आवाम के लिए ज़िंदगी की आसानी को बेहतर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने खुशी जाहिर की कि माहौलियात के दिन के मौके पर वो सूरत में हैं, जो कि मुल्क के साफ तरीन शहरों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा तवानाई का आलमी बहरान तवानाई में खुद किफालत की कलीदी अहमियत को उजागर करता है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: भारत की मईशत ने साल 2025-26 के दौरान तेजी का रुझान बरकरार रखा है। साल 2024-25 की 7.1% असल GDP के मुकाबले साल 2025-26 के दौरान असल GDP की तरक्की का तखमीना 7.7% है। शुमारियात और प्रोग्राम के नफाज की वजारत ने आज माली साल 2025-26 के सालाना अंदाजे के आर्जी आदादोशुमार और इस साल जनवरी से मार्च की सहमाही के अंदाजे जारी किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भारतीय मईशत के लगातार इस्तेहकाम, इस्लाहात की कामयाबी

0: और 140 करोड़ भारतीयों की सख्त मेहनत की अक्कासी करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत जिंदगी गुजारने और कारोबार करने में आसानी पैदा करने और नौजवानों के लिए मौके में इजाफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। इसमें सरहदों के साथ 7 से 8 हिसास मकामात पर अगले साल पायलट शुरुआत करने की मनसूबाबंदी शामिल है। इन मकामात की हिफाजत BSF और SSB करती हैं। त्रिपुरा में आज लंकामूरा सरहदी चौकी पर प्रहरी सम्मेलन से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ये प्रोजेक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, नौजवानों और मुकामी शहरी इंतजामिया को नाकाबिले दरअंदाजी सरहदी बंदोबस्त का एक निज़ाम वजह करने के जिमन में मरबूत करेगा।
1: हमने तय किया है कि BSF जहां जहां है, SSB जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
0: जनाब शाह ने जोर दिया कि हुकूमत त्रिपुरा, मगरबी बंगाल और बिहार के हिस्सा सरहदी हिस्सों में दरअंदाजी या सरहदी रखना के बगैर किसी भी तरह की आबादियाती मुंतकली की इजाज़त नहीं देगी। वजीर दाखिला ने मनुष्यात की स्मगलिंग, इंसानों की नाजायज़ तिजारत और मवेशियों की स्मगलिंग जैसे खतरात को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। जनाब शाह ने बड़े पैमाने पर शजरकारी की एक मुहिम में भी शिरकत की और अगार का एक पौधा लगाया। नेपाल के खारजी उमूर के वजीर शिशिर खनाल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर भारत के 3 रोज़ा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचे। तीसरे पहर आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर कल नेपाल के अपने हम मनसब के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने उजागर किया कि भारत का नेपाल के साथ एक जाम एजेंडा है जिसमें तरक्याती ताउन से लेकर तजारत और सरमायाकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के साथ कसीर जहती शराकतदारी को मुस्तहकम करना चाहता है। वजारत खारजा ने आज इत्तला दी है कि दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हाल ही में पेश आए आग लगने के हादसे में जान गंवाने वालों में गैर मुल्की शहरियों की तादाद 13 है। नई दिल्ली में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि महलुकिन में 4 अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया से और 3 का ताल्लुक किर्गिस्तान से था, जबकि मोजम्बिक, लाइबेरिया, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, जमहूरिया कांगो और इराक के 1-1 शहरी की मौत हुई है। भारत रूस ताल्लुकात पर बोलते हुए तर्जुमान ने कहा कि भारत और रूस के दिफाई ताल्लुकात मजबूत हैं जो बरसों से चले आ रहे हैं। भारत और अमरीका के दरमियान तजारती समझौते पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि अमरीका के आला मुजाकिरातकार अपनी टीम के साथ 1 जून से 4 जून तक भारत में थे। उन्होंने कहा कि बातचीत मुस्बत और तामीरी नौयत की रही। एक दीगर सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि इस साल अब तक 1076 भारतीय शहरियों को अमेरिका से मुल्क बदर किया गया है, जबकि यही तादाद पिछले साल 3567 थी। भारत में गैर मुल्की शहरियों के बारे में बात करते हुए तर्जुमान ने कहा कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह रहे लोगों से निमटने के बारे में कवानीन मौजूद हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली को रूस के 5वीं नस्ल के स्टेल्थ तैयारे सुखोई SU-57 की पेशकश की है और इन तैयारों को भारत में मुश्तरका तौर पर तैयार करने की तजवीज़ रखी है। ये पेशकश दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत स्ट्रेटेजिक साझेदारी की अक्कासी करती है। सेंट पीटर्सबर्ग इक्तसादी फोरम के तनाजुर में कल रात सरकर्दा न्यूज़ एजेंसियों के सरबराहान से बातचीत करते हुए जनाब पुतिन ने कहा कि मॉस्को अब भी SU-57 तैयारा प्रोग्राम में नई दिल्ली की शिरकत का ख्वाहिशमंद है। जनाब पुतिन ने इंटीग्रेटेड फिजाई दिफाई निज़ाम और उससे मुतालिक हार्डवेयर समेत दीगर अहम दिफाई प्लेटफॉर्म्स पर भारत के साथ इश्तराक करने की रूस की तैयारी का इजहार किया है। भारत रूसी साख्त के S-400 मिज़ाइल निज़ाम के मुमकिन कलीदी पुर्जे के साथ अपने दिफाई निज़ाम सुदर्शन चक्र को स्वदेशी तर्ज पर तैयार कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने आज पाकिस्तान के साथ सख्त एहतजाज दर्ज कराया है और पाकिस्तान के उन मंसूबों पर शदीद एतराज़ किया है जिसके तहत वो पाकिस्तान

पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी और जबरन कब्जा किए हुए भारतीय इलाके नाम नेहाद गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात कराने का मंसूबा रखता है। ये इंतखाबात इस माह की 7 तारीख को होने हैं। भारत ने अपने वाजह मौक़िफ़ को दोहराया है कि नाम नेहाद गिलगित बल्तिस्तान समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुकम्मल मरकजी खित्ता भारत का अटूट और नाकाबिल तस्खीर हिस्सा है, क्योंकि साल 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत में मुकम्मल कानूनी और नाकाबिल वापसी इल्हाक हुआ था। उमूर खारजा की वजारत ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की इस तरह की कोशिशें उन बुनियादी मसाइल को नहीं छिपा सकती जिनमें इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, सियासी जबर, माशी इस्तेहसाल और पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्ज़े वाले इलाकों में आज़ादी से महरूमी शामिल है। नई दिल्ली ने पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्ज़े वाले इलाकों में किसी भी बुनियादी या इंतज़ामी तब्दीली की कोशिश को वाज़ह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। भारत ने जोर देकर कहा है कि इस तरह के इकदाम उन हकायक को छुपा नहीं सकते कि पाकिस्तान अब भी गैर कानूनी तौर पर भारतीय इलाकों पर काबिज है जिन्हें खाली करना होगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। दिल्ली के वजीर आशीष सूद, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर महकमों के सीनियर अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के बारे में मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब सूद ने कहा कि वजीर आला ने गैर कानूनी तामीरात, फायर सेफ्टी के उसूलों के खिलाफ वर्जियों और इंतजामी लापरवाही से पेश आए हालिया अलमनाक हादसे पर तशवीश का इजहार किया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने आफात से निमटने से मुतालिक एक्ट 2005 की मुख्तलिफ दफात को मौसर तरीके से नाफिज करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अगर रिहायशी या तिजारती इमारतों के मालिकान इस कानून के तहत कसूरवार पाए जाते हैं तो उन्हें जुर्मानों के साथ साथ कैद की सज़ा का भी सामना करना पड़ सकता है। जनाब सूद ने कहा कि मुस्तकबिल में DMs को अपने ज़िले में काम करने वाले किसी भी महकमे के अफसरान की जवाबदेही तय करने का इख्तियार हासिल होगा। वो ज़रूरत पड़ने पर महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश, FIR दर्ज करने और वजह बताओ नोटिसें जारी कर सकेंगे। गुवाहाटी में हलफबरदारी की एक तकरीब में 12 नए काबिनी वुजरा को शामिल करते हुए आज आसाम की वुजरा काउंसिल में तौसी की गई। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने नए वुजरा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। आसाम की वुजरा की काउंसिल की तादाद अब बढ़कर 17 हो गई है। आइन के तहत आसाम में वजीर आला समेत ज़्यादा से ज़्यादा 19 वुजरा हो सकते हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज ऐलान किया कि अंडमान जजायर के मशरक़ी साहिल से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 के मकाम पर कुदरती गैस दरियाफ्त हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब पुरी ने कहा कि ये दरियाफ्त बुहरे अंडमान के तवानाई के वसी इम्कानात को वाजह करती है और इस तास में जारी जस्तजू की मुहिम में एक और कामयाबी को नुमाया करती है। पद्म अवार्ड्स 2027 के लिए नामजदगी का अमल अगले माह की 31 तारीख तक जारी रहेगा। वजारत दाखिला ने कहा कि पद्म अवार्ड्स के लिए नामजदगी और सिफारिशात का अमल जो 15 मार्च को शुरू हुआ था सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से मौसूल नामजदगियों के जरिए जारी रहेगा। वजारत ने सिलसिले में शहरियों से खुद नामजदगी समेत नामजदगियाँ और सिफारिशात दाखिल करने की अपील की है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने नतायज के ऐलान के बाद अपने पोर्टल पर हुए मनसूबाबंद साइबर हमलों के बारे में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। 12वीं जमात के उम्मीदवारों के जवाबी पर्चों के वेरिफिकेशन और दोबारा जांच के लिए यह पोर्टल 2 जून को शुरू किया गया था। CBSE ने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान पोर्टल पर मुतअद्दिद मनसूबाबंद साइबर हमले हुए हैं। ताहम इन हमलों को 24 घंटे 7 दिन की लगातार निगरानी और जवाबी मैकेनिज्म के जरिए नाकाम बना दिया गया। इस दौरान IIT कानपुर, IIT मद्रास और दीगर मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की साइबर सिक्योरिटी टीमों की मदद हासिल रही। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून मगरबी वस्ती और मगरबी वस्ती बुहरा अरब, गोवा के हिस्सों और कर्नाटक के इलाकों में मजीद आगे बढ़ गया है। इस तरह की सूरत हाल तमिलनाडु और जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में भी जारी है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि जुनूब मगरबी मानसून के वस्ती बुहरा अरब, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के मजीद हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और जुनूब मगरबी खलीज बंगाल के बाकी हिस्सों में भी आगे बढ़ने के लिए सूरत हाल मुवाफिक है। मौसमियात की एजेंसी ने यह भी कहा है कि आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की सूरत हाल मगरबी वस्ती, मशरक़ी वस्ती और शुमाल मशरक़ी खलीज बंगाल के इलाकों के साथ साथ शुमाल मशरक़ी रियासतों के कुछ हिस्सों में भी जारी रहने की तवक्को है। हॉकी में भारत ने आज जापान के शहर

0: ताकामी गहारा में खेले गए मर्दों के अंडर 18 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 3-5 से हरा दिया, जहां भारत का मुकाबला मेज़बान जापान से होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमन में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के जरिए भारत सब्ज मुस्तकबिल की जानिब फ़ाल तौर पर क़यादत कर रहा है। मईशत में मजबूत रुझान के नतीजे में साल 2025-26 में मुल्क की GDP की पेशरफ्त 7.7% रखी गई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। इस 7 सरहदी मकामात पर अगले साल पायलट शुरुआत मुतारिफ कराई जाएगी। और जुनूब मगरबी मानसून बहिर अरब, गोवा और कर्नाटक के मजीद हिस्सों में पेशरफ्त कर रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: करंट अफेयर्स। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 9:30 और इसी के साथ अब प्रस्तुत है आपके पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू हो चुका है आपकी पसंद और आज का ये सफर आप तय करेंगे मेरे साथ यानी अपनी रेडियो साथी आकांक्षा के साथ। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं आपके फरमाइशी ईमेल और सबसे पहले आपको देते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ जिसे गाया लता मंगेशकर ने। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं इस गीत की फरमाइश हमें कहाँ से आई है। तो ये गीत सुनना चाहा है ज़िला हमीरपुर बुंदेलखंड से और हमारे श्रोता हैं राम शरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। आप सब ने फरमाइश की राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म के गीत की। तो लीजिए आपके रेडियो सेट पे पहुँचाए देते हैं आप ही की पसंद का गीत गाया है लता मंगेशकर ने।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म का गीत। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और अब कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं एक और फरमाइशी ईमेल। ये ईमेल हमें आया है द ग्रेट गैमलर, इस फिल्म के गीत के लिए, और ईमेल करने वाले हमारे श्रोता हैं मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। आप सभी ने फरमाइश की द ग्रेट गैम्बलर, इस फिल्म के गीत की। आपके रेडियो सेट पे पहुंचाए देते हैं शरद कुमार, आशा भोसले और अमिताभ बच्चन की आवाज़ों में ये खूबसूरत सा गीत।

द ग्रेट गैम्बलर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। आज के इस कार्यक्रम में हमने शामिल किए हैं आप ही की फरमाइशी ईमेल। इसी बीच हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा ईमेल आया है। आइए पहले बता दें कि हमारे ईमेल करने वाले श्रोता कौन हैं। तो आप हैं विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा, ऋचा, गुड़िया, सुरभि, राजेश कुमार और विजय पांडे। आपने हमको ज़िला खीरी से ईमेल किया और अपने ईमेल में आज आप बहुत अच्छी सी बातें हमें कह रहे हैं। आइए आपके साथ भी साझा करते हैं। सबसे पहले तो आपने प्रेषित की है हमें विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। भाई, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लिखते हैं, प्रकृति हमारा जीवन है, पर्यावरण हमारी पहचान है, पेड़ लगाएं, जल बचाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं हरित धरती का निर्माण करें। पर्यावरण संरक्षण केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि मानव जीवन और प्रकृति के भविष्य की सुरक्षा का संकल्प है। जी हाँ, बहुत सटीक और सही बात आपने लिख भेजी है हमें। और श्रोताओं, देखिए हम कितनी इस अपने जीवन में कितने काम करते हैं और कितनी चीज़ें हम संरक्षित करते हैं, कितनी चीज़ें हम इकट्ठा करते हैं, कितनी चीज़ें हम जुटाते हैं, ये मेहनत करते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को, चलिए मान लीजिए कि हमारे बच्चे जो हैं उन्हीं के लिए हम इतनी चीज़ें बनाते हैं कि उनको आने वाले जीवन में कोई तकलीफ़ ना हो। हम घर बनाते हैं ताकि उन्हें बना बनाया घर मिल सके। हम और भी बहुत से संसाधन जुटाते हैं जिससे जो परेशानी हमने झेली वो उन्हें ना हो। लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ों को बनाने में, उनको संरक्षित करने में हम अपनी ऊर्जा, समय, ताकत, अपनी जवानी, हर चीज़ लगा देते हैं। और कितनी बहुत बेसिक सी चीज़ है कि पानी हम बचाएं, हवा को हम बचाएं और स्वच्छ रखें, नहीं तो आगे आने वाले समय में हम अपनी पीढ़ी को क्या देके जाएंगे? जब पीने के लिए स्वच्छ पानी ही नहीं होगा तो जीवन कैसे आगे चलेगा? कभी इन सब बातों पे विचार करिएगा। और अगर हम सब छोटे छोटे कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक का जो उपयोग है वो कम करें, नेचुरल चीज़ें जो हैं, प्राकृतिक चीज़ों की तरफ हम बढ़ें, और अगर हर व्यक्ति, ज़्यादा नहीं, बस दो पेड़ अपने घर के बाहर ही आप लगा दें। घर में अगर बहुत कम जगह है तो घर के बाहर लगा दें, सड़क किनारे लगा दें। देखिए कितना कितना बड़ा बदलाव लाएगा ये छोटा सा एक कदम। और देखिए इतनी प्यारी बातें हमारे श्रोता हमसे लिख भेजते हैं और अपनी फरमाइश भी आप हमसे हम ही से करते हैं। तो भाई आपकी फरमाइश हम पूरी किए देते हैं। मुकाबला फिल्म का गीत आपने सुनना चाहा, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में पहुंचा रहे हैं आपके रेडियो सेट पर।

मुकाबला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। और कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं एक और फरमाइशी ईमेल, हमें आया है खोरजा उत्तर प्रदेश से। और ईमेल करने वाले श्रोता हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा। आपने फरमाइश की है मिली फिल्म के गीत की। आपके रेडियो सेट पे पहुंचा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे मिली फिल्म का गीत। श्रोताओं, ये फरमाइश हमारे जिन श्रोता ने की थी, उन्होंने अपने ईमेल में बहुत प्यारी सी बात भी हमें लिख भेजी है, आइए आपके साथ साझा करते हैं। लिखते हैं कि पेड़ तो बहुत से देखे हैं, पीपल और नीम का पेड़ हर जगह दिखाई देते हैं, आज ये सब गायब हो चुके हैं। दीपक जलाने के लिए हमको घर से बहुत दूर जाना पड़ता है। दांत साफ करने के लिए पूरे शहर में नीम के पेड़ अब दिखाई नहीं देते। हर वर्ष वन विभाग भी हज़ारों पौधे लगाता है, न जाने ये पौधे कहाँ गायब हो जाते हैं। तो भाई, गायब यूं हो जाते हैं कि पेड़ों को भी प्रेम की बहुत आवश्यकता है, उनको भी केयर की आवश्यकता है, उनको भी स्नेह की आवश्यकता है, देखभाल की आवश्यकता है। पेड़ यूं ही नहीं बड़े हो जाते हैं, हाँ, लेकिन बड़े होने के बाद वो न जाने कितने सालों तक हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, स्वच्छ हवा देते हैं, लेकिन उनको ज़िंदा रखने में शुरुआती दौर में भी तो थोड़ी सी मेहनत तो हमें भी करनी पड़ेगी। भाई, हमारे आसपास पहली बात तो हम पेड़ ना काटें, और जो पेड़ हैं उनको हम संरक्षित करें, उनको हम बचाएं कीट कीट से, और पानी डालते रहें, उनको सींचते रहें, जो भी हम उनकी सेवा कर सकते हैं वो अपने स्तर पर करें। तभी देखिए, बहुत सम्मिलित प्रयास है, तभी जाकर के ये धरती फिर से हरी भरी हो सकती है।

बहुत शुक्रिया, आप सबने हमें ईमेल किया और हमने आपकी फरमाइश के गीत पहुंचाए आपके रेडियो सेट तक। आप कार्यक्रम से मुझे यानी आकांक्षा को दीजिए अनुमति।

मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है रात्रि के 10 और इसी के साथ प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से। सबसे पहले आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गीत।

अभी आप सुन रहे थे मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गीत, और इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में दुश्मन फिल्म का गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना छोटी सी बात, इस फिल्म का गीत। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अमर अकबर एंथोनी फिल्म का गीत, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी, मुकेश किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

अमर अकबर एंथोनी इस फिल्म का गीत अभी आपकी रेडियो सेट तक पहुंचा रहे थे मोहम्मद रफी, मुकेश, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आइए सुनते हैं रविंद्र जैन को चितचोर फिल्म के इस गीत में।

रविंद्र जैन की आवाज में अभी आप सुन रहे थे चित्तचोर फिल्म का गीत, और इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां

0: देखते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 10:30 और इसी के साथ प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित राजेंद्र प्रसन्ना का राग मारवा में बांसुरी वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंडित राजेंद्र प्रसन्ना का राग मारवा में बांसुरी वादन। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत में तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात्रि के 11:45।

मिनट और 25 सेकेंड। हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।